ये ठंडी हवा और खुली फिजा जैसे हमें याद दिलाती है कि जीवन को बोझ नहीं एक खूबसूरत सफर की तरह जीना चाहिए। हर सांस में प्रकृति का शुक्रिया और हर कदम में आगे बढ़ने का विश्वास हो तो जीवन थोड़ा सा सरल हो जाता है।

जोश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है। मत होश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है। कर ले

जब नींद से जागती हुई बाहर चारों ओर रंग भरती है तो मन भी कह उठता है, उठो कुछ नया करो। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को सुंदर बनाने की कोशिश ही जीवन को सार्थक बनाती है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड

चिंतन। जो लोग आलोचनाओं से बचना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र तरीका है कुछ भी काम नहीं करना। अगर हम कुछ करेंगे तो आलोचना तो होगी, इसलिए आलोचनाओं से डरे बिना आगे बढ़ना चाहिए। ये कथन अरस्तु का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

देशगान के साथ ही वंदनवार अब संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का

भाग 314। इसमें आप सुनेंगे लंका कांड। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं, इसका भाग 2। कलाकार गायक पंडित डॉक्टर पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। प्रस्तुति छाया गांगुली की। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 बजे। और आपको बता दें, संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह और शाम 6:45 पर। 7:30 पर हम है राही प्यार के। आज सुनिए हसरत जयपुरी के लिखे कुछ नगमे। समाचार प्रभात होगा सुबह 8 बजे। और 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर और 9:30 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार हसरत जयपुरी पर। आलेख और स्वर आकांक्षा सिंह का, प्रस्तुति रमेश गोखले। पुनः प्रसारण रात्रि 9:30। रंग तरंग दिन में 11 बजे, हिंदी में समाचार दिन में 12 बजे। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम सुनिए। सुरीला सफर तय कीजिए हमारे साथ दिन में 1 बजे। श्रोता फेसबुक कमेंट्स द्वारा हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे सुनिए दिन में 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम दिन में 3 बजे। हेलो फरमाइश, ये कार्यक्रम होगा आज दिन में 4 बजे, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर शाम 6:30 तक। और इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा, जिसमें आपको देंगे जानकारी आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। संध्या रंजन का समय होगा शाम 6:35। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। आज आप सुनेंगे तबला वादक आशीष बिस्वास से यूनुस खान की बातचीत। संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। हवा महल का समय होगा रात्रि 8 बजे। इसमें सुनिए नाटिका जमीन के लोग, लेखक वीएम आनंद, निर्देशन दीनानाथ का। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात 8:15। समाचार संध्या सुनिए रात्रि 8:45 पर और 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। छाय गीत कार्यक्रम सुनना ना भूलें रात्रि 10 बजे। आलेख और स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम होगा रात 10:30 पर और रात 11 बजे रंग तरंग।

श्रोताओं, ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 314। आज आप सुनेंगे इसमें लंका कांड।

अंगद के क्रोध में हाथ पटकने से पृथ्वी का प्रकंपन देख रावण अपने योद्धाओं को उन्हें मार डालने का आदेश देता है। कहता है, इसे मारकर सब योद्धा सभी दिशाओं में दौड़ जाओ और जहां कहीं भी वानर रीछ दिखाई पड़े उनको खा डालो। इस पृथ्वी से ही वानर और भालुओं का अस्तित्व मिटा डालो और फिर जाकर इनके स्वामी दोनों तपस्वियों को जीते जी पकड़कर यहां ले आओ। इस मूर्खतापूर्ण आदेश पर अंगद मुस्कुराए, फिर क्रोध में गरजे, अरे निर्लज, तुझे मेरे बल का आभास पाकर भी भय नहीं लगता? पर स्त्री चुराने वाले पापी मंदबुद्धि, तेरा काल आ पहुंचा है। मैं अभी तेरा वध कर देता, किंतु ऐसा करने से श्री राम के वाणों की प्यास नहीं बुझेगी। इन शब्दों के साथ अंगद ने धरती पर पैर रोप दिया। बोले, यदि तू मेरा पैर धरती से उठा दे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, श्री राम भी लौट जाएंगे। अंगद की ये चुनौती सुनकर मेघनाथ तथा सभा में उपस्थित अन्य योद्धा मन ही मन हर्षित हुए। एक एक कर वे अपना पूरा बल प्रदर्शित करते हुए अंगद का पैर उठाने की चेष्टा करते हैं, किंतु उसे उठाना तो दूर, वे उसे हिलाने में भी असमर्थ हैं। लज्जित होकर वे अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में सुनिए जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। उस्ताद अमान अली खान साहब अमर भिंडी बाजार वालों ने अनेक बंदिशें बनाई हैं। मध्यलय में एक ताल में निबद्ध भिंडी बाजार वाले उस्ताद अमान अली खान अमर की बंदिश अमीर खान साहब गाया करते थे, तो वही बंदिश राग हंसध्वनि में मैं गाकर सुना रहा हूँ।

यह बंदिश मुझे बेहद पसंद है जो अमीर खान साहब का खुद का बनाया हुआ है। वह राग हंसक ध्वनि का तराना मैं आपको सुना रहा हूँ।

भिंडी बाजार वाले उस्ताद अमान अली खान साहब अमर बहुत ही अच्छे साहित्यिक रचनाकार थे। उनकी बंदिशों में यह एक हंसध्वनि की बंदिश बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे आज कई लोग गाया करते हैं। तो अमान अली खान अमर की वह खूबसूरत बंदिश हंसध्वनि में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अब मैं आपके सामने बहुत बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा हूँ जो आमिर खान साहब ने झनक झनक पायल बाजे में प्रस्तुत की है।

0: संगीत सरिता में आज आपने गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सुनी, ख्याल और तराने की विशेषताएं। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने इनकी संगत की थी। इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी आप कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनेंगे।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: नमस्कार, यह है आकाशवाणी उज्जैन। समय हुआ है सुबह 7 बजे का और हम आपके लिए लेकर आए हैं राजाधिराज बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित हमारी विशेष प्रस्तुति महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की इस पावन धरा पर आज की सुबह बहुत ही मंगलकारी है। आइए अपने दिन की शुरुआत उस परमपिता के चरणों में ध्यान लगाकर करें जो कालों के काल हैं और समस्त जगत के आधार हैं।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दें।

हस्त संवाद अमृत घट पर से एपिसोड 12 आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। सुबह 10:15 पर फोन इन प्रोग्राम होगा कुछ बातें कुछ गीत। मुंबई से रंग तरंग कार्यक्रम होता है सुबह 11 बजे। दिन में 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे सुनिए सुरीला सफर। 2 बजे सुनिए फिल्म संगीत। 2:30 नगमे पेश किए जाते हैं दोपहर 2:30 पर। सखियों का अपना प्रोग्राम सखी सहेली सुनिएगा 3 बजे। 4 बजे आप सुनेंगे हेलो फरमाइश। आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे सुनिए युवा श्रोताओं की अपनी पसंद का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल। दिल्ली से समाचार आप सुनेंगे शाम 7 बजे। भोपाल से 7:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। 7:21 पर अपने उज्जैन केंद्र से लेकर आएंगे आपके लिए मालवी की तारी गूंज। रात 8 बजे सुनिएगा स्पेशल प्रोग्राम चीयर फॉर भारत 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026। रात 8:30 पर सुनिए सुर्खियों में। उर्दू समाचार सुनिए रात 9:15 पर। रात को 9:30 पर प्रोग्राम होगा आपकी फरमाइश, जबकि रात के 10 बजे सुनिए गीतों का गुलदस्ता। रात के 10:30 पर प्रोग्राम होगा राग रजनी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: उज्जैन से भव्य दीपोत्सव के साथ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में चीता परियोजना के आज 4 वर्ष पूरे, कूनों में रोशन होंगे हजारों दीप और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल कहा कि पाकिस्तान को भारत के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट और लगातार एक जैसा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को स्वीकार नहीं करता क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे और हमेशा रहेंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। 17 अक्टूबर तक पूरे एक महीने के तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान में राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा संगठन द्वारा इस अभियान के तहत जनसेवा, जनकल्याण और सामाजिक सहभागिता से जुड़े कई प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन आज उज्जैन में भव्य दीपोत्सव के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। इस अवसर पर उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश की जनता से सेवा संकल्प अभियान से जुड़ने की अपील की है।
1: जरूर जलाए। आज पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 वर्ष को याद कर रहा है। सेवा और संकल्प की इस यात्रा ने भारत को नई दिशा, नई गति, नया आत्मविश्वास दिया है। प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने मध्य प्रदेश के हित में केंद्र सरकार निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। मैं मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से आह्वान करता हूं कि 17 सितंबर की शाम अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में एक आशीर्वाद का दीपक जरूर जरूर जलाएं।
0: वहीं इंदौर में सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर इंदौर में 27 स्थानों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश के साथ साथ धार, खंडवा, मंदसौर, अशोकनगर, पन्ना और डिंडौरी तथा सभी जिलों में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य विश्वकर्माओं को संस्थागत सहायता, आधुनिक उपकरण, वित्त तक पहुंच, कौशल उन्नयन और बाजार संपर्क प्रदान करके उनके पारंपरिक कौशल को मजबूत करना है। यह उन्हें उत्पादकता, आय और उद्यमशीलता क्षमता बढ़ाने में भी सक्षम बनाती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि भारत के नवोदय, नवचेतना और नवसंकल्प के प्रतीक प्रधानमंत्री श्री मोदी का जन्मदिवस हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और विश्व में प्रभावशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश की धरती पर वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में 4 साल पहले आज ही के दिन एक नया अध्याय शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को देश की धरती पर बसाकर अंतर महाद्वीपीय चीता परियोजना का 17 सितंबर 2022 को शुभारंभ किया था। इस परियोजना के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज कूनो के टिकटोली गेट पर वन विभाग के तत्वावधान में हजारों दीप रोशन किए जाएंगे। यह आयोजन सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। यह दीपोत्सव उस संकल्प और उपलब्धि का प्रतीक होगा जिसके माध्यम से भारत में विलुप्त हो चुके चीते फिर अपनी धरती पर विचरण कर रहे हैं। भोपाल के राजा भोज विमानतल पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए आज से विशेष यात्री सेवा अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा। 24 दिन के इस अभियान में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी समस्याओं और शिकायतों के जल्द निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बारे में भोपाल के विमानपत्तन निदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि
3: 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हम यात्री सेवा अभियान शुरू कर रहे हैं। एक में हम यात्रियों के प्रति हर दिन एक नया अभियान की सेवा है या उनकी ये वाईफाई है, ट्रॉलीज हैं, सिक्योरिटी मैटर्स हैं, तो उन सबको लेके प्रतिदिन एक नई एक्टिविटी करेंगे। इस अभियान के दौरान व्यक्तिगत रूप से जाकर फीडबैक लें अपने सुधार के लिए और जो भी और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम यहाँ पर कर सकें। तो
0: मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित को पुनर्गठित कर अब मध्य प्रदेश वाटर एंड सैनिटेशन कॉरपोरेशन बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मुख्यमंत्री निवास में मध्य प्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की 26वीं बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद भेजने की मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश जल निगम अब अपने नए नाम एमपी वास्को और नई जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश में जल विकास एवं स्वच्छता प्रबंधन में नए लक्ष्यों और अतिरिक्त संसाधनों के साथ काम करेगा। प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उन्नत तकनीकी सुविधाएं, बेहतर कौशल और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। श्री परमार कल भोपाल स्थित मंत्रालय में जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय की शासी निकाय की 29वीं बैठक और साधारण सभा की 15वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे। मंत्री परमार की अध्यक्षता में इस बैठक में महाविद्यालय के शैक्षणिक और संस्थागत उन्नयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, चंबल और जबलपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आज प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल समेत आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भोज उद्यान में दोपहर 1 बजे जैविक खेती हाट बाजार का शुभारंभ किया जाएगा। खंडवा जिले में कलेक्टर ने आगामी गणेश उत्सव और नवदुर्गा पर्व की सुरक्षा को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। मंदसौर जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 156 तीर्थयात्री कल विशेष ट्रेन के द्वारा हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए रवाना हुए। सतना जिले की कृषि उपज मंडी प्रांगण में 19 सितंबर को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले में स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में युवा संगम कार्यक्रम के तहत आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में विधायक शैलेंद्र जैन ने 70वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। झाबुआ जिले में रेडक्रॉस शाखा निर्वाचन के लिए मतदाता सूची पर 28 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। शाजापुर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जघन्य अपराधों तथा नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कल सम्पन्न हुई। और छतरपुर में वडनगर से वाराणसी सेवा यात्रा के तहत 22 से 24 सितंबर के बीच 10 टोलियां प्रवास करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। उज्जैन से भव्य दीपोत्सव के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में चीता परियोजना के आज 4 वर्ष पूरे। कूनों में रोशन होंगे हजारों दीप। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को किया खारिज।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

बाबा महाकाल की पावन अलौकिक और अवंतिका नगरी से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। गुरुवार की ये पावन और ऊर्जावान सुबह आपके जीवन में नया उत्साह, प्रगति और अपार प्रसन्नता लेकर आए। श्रोताओं, आज 17 सितंबर का दिन इतिहास, आध्यात्म और राष्ट्रीय चेतना तीनों ही दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जहाँ एक और हम मना रहे हैं विश्वकर्मा जयंती, सृजन, शिल्प और निर्माण के देवता देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा का पूजन पर्व, वहीं दूसरी ओर आज भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ हैदराबाद मुक्ति दिवस भी है। तो चलिए, बाबा महाकाल और देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में वंदन करते हुए करते हैं आज के इस खूबसूरत और ज्ञानमयी सफर की शुरुआत इस मधुर शिव भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से का। आइए उज्जैन और आसपास की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज से सेवा संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी दिन उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोगों से आशीर्वाद का दीपक जलाने की अपील की है। अभियान के तहत विभिन्न सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में आज 25 लाख से अधिक दीपों का दीपोत्सव। इसी सेवा संकल्प अभियान के तहत उज्जैन में आज शाम 7 बजे शिप्रा तट पर भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। महाकाल मंदिर, रामघाट और शिप्रा के अन्य घाटों पर एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। एक साथ बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। आयोजन में पहला दीप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रज्वलित किया जाएगा। दीपोत्सव के दौरान करीब 7 लाख दीपों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति बनाने की भी तैयारी है। आयोजन की तैयारियां अंतिम दौर में है और हर ब्लॉक में 225 दीप जलाए जाएंगे। दीपोत्सव के लिए ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था में बदलाव। 25 लाख से अधिक दीपों के इस भव्य आयोजन को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धालु और आम नागरिक 16 अलग अलग मार्गों से घाटों तक पहुंच सकेंगे। भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए शहर के 3 प्रमुख मार्गों पर दोपहर 12 बजे के बाद वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस बार पहली बार दीपोत्सव के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए करीब 450 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुलिसकर्मी प्रमुख मार्गों, चौराहों और घाटों के आसपास यातायात व्यवस्था संभालेंगे। वहीं शिप्रा के 6 प्रमुख घाटों पर पहुंचने के लिए अलग अलग रंग के पास निर्धारित किए गए हैं। पास के रंग के आधार पर श्रद्धालुओं को संबंधित घाट तक पहुंचने की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित मार्ग और यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। दीपोत्सव और वीआईपी दौरों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। उज्जैन में आज और कल होने वाले वीआईपी दौरों तथा 25 लाख दीपों के दीपोत्सव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। शहर के प्रमुख रास्तों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कार्यक्रम स्थल और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उज्जैन में आज से 3 दिवसीय युवा धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। देवास रोड स्थित गीता भवन में 17 से 19 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में करीब 24 से 25 राज्यों से लगभग 1700 छात्र छात्राओं के शामिल होने की जानकारी है। इसके अलावा करीब 300 शिक्षक, शोधकर्ता और धर्माचार्य भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 3 दिनों तक युवाओं के बीच धर्म, संस्कृति और विभिन्न समकालीन विषयों को लेकर संवाद और विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 156 यात्री रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुधवार सुबह उज्जैन से 156 यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया। सभी यात्री विशेष ट्रेन से तीर्थ यात्रा पर गए हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। विक्रम उद्योगपुरी में स्थापित होगा बड़ा ट्रांसफॉर्मर निर्माण संयंत्र। उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में मध्य प्रदेश का पहला बड़ा ट्रांसफार्मर निर्माण संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए कंपनी को 60 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। जर्मनी की सीमेंस के साथ हुए एग्रीमेंट के तहत कंपनी विक्रम उद्योगपुरी में करीब 2,053 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना से उज्जैन के औद्योगिक क्षेत्र को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अंडर 14 कुश्ती में उज्जैन की समृद्धि और प्रांजल ने जीता स्वर्ण पदक। खेल जगत से उज्जैन के लिए भी अच्छी खबर है। 17वीं राज्य स्तरीय शालेय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में उज्जैन की समृद्धि और प्रांजल ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं युग और सुधनक ने द्वितीय स्थान जबकि विनय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। युवा खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से उज्जैन के खेल जगत में उत्साह का माहौल है।
विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और राजभाषा से राष्ट्रभाषा विषय पर विमर्श। विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा राजभाषा से राष्ट्रभाषा विषय पर विमर्श आयोजित किया गया। वहीं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ में हिंदी हस्ताक्षर प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। श्रोताओं, तो ये थी आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित उज्जैन की महत्वपूर्ण खबरें। इन्हीं खबरों के साथ समाचार पत्रों से मैं फिलहाल इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। श्रोताओं, सुप्रभात। उज्जैन में आप सभी का पुनः स्वागत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम वास्तुकार और इंजीनियर माने जाते हैं। सतयुग से लेकर द्वापर तक दिव्य नगरियों की रचना देवशिल्पी ने ही की। हम शिल्प और वास्तुकला की बात करते हैं तो हमारी उज्जैनी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। अवंतिका के परमारकालीन मंदिर, शिप्रा तट के ऐतिहासिक घाट और भैरवगढ़ की विश्व प्रसिद्ध बटिक प्रिंट कला मालवा के कारीगरों और शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज का दिन हमारे शहर के उन सभी श्रमिकों, कारीगरों, इंजीनियर्स और मेहनतकश भाइयों और

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। श्रोताओं, आज 17 सितंबर का दिन भारतीय अखंडता के इतिहास में अमर है। आज ही के दिन यानी 17 सितंबर 1948 को ऐतिहासिक ऑपरेशन पोलो के सफल होने के बाद हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय हुआ था। केंद्र सरकार ने इस गौरवशाली घटना की याद में 17 सितंबर को आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का जो महान कार्य लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसमें उज्जैन और मालवा का भी हमेशा से अटूट योगदान रहा है। देश की अखंडता और संप्रभुता को समर्पित आइए सुनते हैं ये सुंदर गीत।

साथियों, FM 102.5 MHz पर बातों और सुरों का सफ़र लगातार जारी है। आज का ये दिन हमें दो बड़ी सीख देता है। एक तरफ भगवान विश्वकर्मा से हमें अपने काम में निपुणता, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की प्रेरणा मिलती है, तो दूसरी तरफ हैदराबाद मुक्ति दिवस हमें देश की एकता और राष्ट्रीय चेतना की याद दिलाता है। आज हमारी उज्जैनी भी आधुनिक स्टार्टअप्स के माध्यम से औद्योगिक और तकनीकी प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। जब मेहनत और देश प्रेम एक साथ मिलते हैं तो प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए इसी सांस्कृतिक और तकनीकी चेतना के नाम सुनते हैं ये ऊर्जावान गीत।

श्रोताओं सुप्रभात। उज्जैन में आज हमने जाना कि कैसे सृजन, राष्ट्र चेतना और कठोर परिश्रम से किसी समाज और देश का निर्माण होता है। सच्चा नागरिक वही है जो अपने शहर और की संस्कृति और सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहे। आइए आज इस पावन अवसर पर हम उज्जैनवासी भी संकल्प लें कि हम अपने शहर उज्जैन को और अधिक स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और समृद्ध बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और श्रेष्ठता ही राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा होगी। आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक गीत।

श्रोताओं, FM 102.5 MHz पर उद्घोषिका हिमानी आपके साथ है सुप्रभात उज्जैन में। श्रोताओं, बदलाव कोई दूसरा आकर नहीं करेगा, शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। थोड़ा सा समय अपने शहर को साफ रखने में दें, एक पौधा लगाएं और दूसरों की मदद करें, यही तो आज के स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल यूथ की पहचान है। और हाँ दोस्तों, आज 17 सितंबर का ये दिन हमारी उज्जैनी के लिए एक बेहद खास और अलौकिक होने जा रहा है। कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह जी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज शाम के आयोजनों की खास जानकारी साझा की है। आज शाम ठीक 7 बजे रामघाट, दत्तखाड़ा और श्री महाकाल कॉरिडोर में 25 लाख से अधिक दीपों का एक भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही माँ शिप्रा की महाआरती, श्री शैलेश लोढ़ा जी का कथा वाचन, भाविन शास्त्री जी की सुमधुर भजन गायन, द ग्रेट महाकाल की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और शानदार आतिशबाजी भी होगी। तो आज शाम रामघाट पर इस अलौकिक दृश्य का साक्षी बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए मिलकर वादा करें कि हम अपनी उज्जैनी को सबसे सुंदर, स्वच्छ और नंबर 1 शहर बनाएंगे। चलिए इसी मोटिवेशनल सफर को आगे बढ़ाते हैं ऑल टाइम फेवरेट यूथ एंथम के साथ।

साथियों, इसी के साथ सुप्रभात उज्जैन का आज का ये विशेष अंक यहीं संपन्न होता है। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं आपकी उद्घोषिका हिमानी आपसे लेती हूँ विदा। कल सुबह ठीक 7:20 पर फिर होगी मुलाकात आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में, सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। आप हमें न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने उज्जैन को स्वच्छ और गौरवशाली बनाइए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया, कहा पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करनालोट पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज, सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

0: पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
2: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
1: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। PM विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि पंडित हरिभाव उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 24 मार्च। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जमशेदपुर झारखंड से सुमित कुमार मिश्रा और रिंकी राय। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

कुछ आवाजें केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं होती, वो भीतर उतरती हैं और मन के किसी शांत कोने में दीपक की तरह जलती रहती हैं। कुछ स्वर केवल संगीत नहीं होते, वो प्रार्थना बनकर उठते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। कर्नाटक संगीत के आकाश में गूंजते एक ऐसे ही स्वर का नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। एक ऐसा स्वर जिसमें भक्ति की निर्मलता थी, शास्त्रीय संगीत की गहराई थी और भारतीय संस्कृति की आत्मा का स्पंदन था। जैसे भोर की पहली किरण मंदिर के शिखर को छूकर वातावरण में पवित्र उजास भर देती है, वैसे ही MS सुब्बुलक्ष्मी के कंठ से निकले स्वर सुनने वालों के अंतर मन को पवित्र और प्रकाशित कर देते हैं। उनके लिए राग केवल सुरों का अनुशासन नहीं था, वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग था। और गायन केवल कला नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति। कर्नाटक संगीत की इस महान साधिका ने अपनी आवाज के माध्यम से देश की सीमाओं को पार किया और भारतीय संगीत की गरिमा को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। वो केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत, संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवतावादी चेतना की सजीव प्रतीक थी। उन्होंने ईश्वर प्रदत्त अपनी गंधर्व वाणी को कभी व्यावसायिक लिप्सा का साधन नहीं बनने दिया। उन्होंने संगीत को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, समाज कल्याण के माध्यम और विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को स्थापित करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया।

मिस सुबुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर सन 1916 को तमिलनाडु के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर मदुरई में हुआ। उनकी माताजी का नाम षणमुखा वदिवु था। वो एक प्रतिष्ठित और निपुण वीणा वादक थीं। इस तरह सुबुलक्ष्मी का पूरा नाम मदुरई षणमुखा वदिवु सुबुलक्ष्मी हुआ। उनके पिता सुब्रमण्य अय्यर एक वकील थे। एमएस सुबुलक्ष्मी के व्यक्तित्व और कलात्मक विकास पर उनकी माताजी और मदुरई के संगीतमय वातावरण की अमिट छाप पड़ी। उनका बचपन मीनाक्षी मंदिर की गलियों में नादस्वरम की धुनों, मंदिरों के भजनों और उनकी माताजी द्वारा बजाई जाने वाली वीणा की झनकार के मध्य व्यतीत हुआ। संगीत उन्हें किसी औपचारिक कक्षा से अधिक अपनी पारिवारिक परंपरा और घर के वातावरण से संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। उनकी माताजी ने बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था और बहुत कम उम्र में उन्हें वीणा और कर्नाटक गायकी का कठोर अभ्यास कराना आरंभ कर दिया था। उन्होंने संगीत के पितामह कहे जाने वाले सीमंगुडी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक गायकी के गूढ़ तत्वों को ग्रहण किया। संगीत के प्रति उनकी लगन इतनी अधिक थी कि उन्होंने केवल कर्नाटक संगीत तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि पंडित नारायण राव व्यास से उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बारीकियां भी सीखीं तथा भारत के संगीत जगत में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह स्थापित हो गईं।

मिसेस सुबोलक्ष्मी ने बहुत कम उम्र में ही मंचीय प्रस्तुतियां आरंभ कर दी थीं और शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ और आम श्रोता सभी उनकी प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी विशेषता थी कि वो स्वर, ताल और लय की पूर्ण शुद्धता के साथ कठिन रागों को गाया करती थीं। यही कारण है कि सुनने वालों को ये अंदाजा हो चुका था कि एक महान गायिका का उदय हो चुका है। इस तरह उनकी रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतियों का सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने मलयाली से लेकर पंजाबी तक भारत की अनेक भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए। सन 1940 में उनका विवाह प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राष्ट्रवादी पत्रकार और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के निकट सहयोगी के सदाशिवम के साथ संपन्न हुआ। सदाशिवम के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद एमएस सुबोलक्ष्मी के जीवन को एक नया वातावरण मिला। सदाशिवम केवल उनके जीवन साथी नहीं थे बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अभियानों के मुख्य मार्गदर्शक भी थे। इस विवाह ने एमएस सुबोलक्ष्मी को सीधे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, महात्मा गांधी के विचारों और तत्कालीन नेताओं के संपर्क में लाकर खड़ा कर दिया। उनका घर स्वतंत्रता संग्राम के रणनीतिकारों और शीर्ष कलाकारों की आवाजाही का केंद्र बन गया। एक कलाकार के रूप में एमएस सुबोलक्ष्मी की सबसे बड़ी विशेषता थी श्रुति शुद्धम, यानी स्वर की निरपेक्ष शुद्धता, और साहित्य भाव यानी शब्दों के भाव की अंतरात्मा से अभिव्यक्ति। उनके गायन में अलौकिक तन्मयता थी। वो सीधे सुनने वालों के हृदय में प्रवेश कर जाती थीं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की कठिन रचनाओं को क्लिष्टता के बंधन से मुक्त कर उसे आम जनमानस के लिए भक्ति का सुगम मार्ग बना दिया।

एमएस सुबुलक्ष्मी के दिव्य स्वर ने भक्ति संगीत को व्यापक तौर पर लोकप्रिय बनाया। उन्होंने दक्षिण भारत के संत कवि अलवार और नायनार के संकीर्तन से लेकर उत्तर भारत के संत कवियों की रचनाओं को देश भर में घर घर तक पहुंचाया। एमएस सुबुलक्ष्मी ने फिल्मों में भी अभिनय किया। इनमें सबसे यादगार है सन 1945 में आई फिल्म मीरा। इसमें उन्होंने मीरा की भूमिका निभाई तथा कई मधुर मीरा के पद गाए। उनके स्वर माधुर्य ने पूरे देश को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस तरह उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उनके गाए भक्ति संगीत की सूची में ऐसी कई रचनाएं हैं जो कालजयी हैं। उनके द्वारा किया गया विष्णु सहस्रनाम का सस्वर पाठ केवल एक संगीतमय प्रस्तुति नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति है। उनकी आवाज में वेंकटेश सुप्रभातम भी एक अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है।

एमएस सुबुलक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश के महान संत कवि अन्नमाचार्य की रचनाओं को गाकर उसे व्यापक लोकप्रियता दिलाई और जब जगतगुरु आदि शंकराचार्य रचित वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण स्रोत भज गोविंदम को एमएस सुबुलक्ष्मी ने स्वर और भाव प्रदान किया तो जैसे हर मन इस ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो उठा।

एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने कई वैश्विक मंचों पर भारत के समृद्ध शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराई और पश्चिमी दुनिया को भारतीय संगीत के आध्यात्मिक और शास्त्रीय वैविध्य से परिचित करवाया। उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में सबसे ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण 23 अक्टूबर सन 1966 का था, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी दिव्य प्रस्तुति दी। इस सभा में गाने वाली वो पहली भारतीय कलाकार थीं। ये वो दौर था जब पूरा विश्व शीत युद्ध के तनाव से गुजर रहा था। इस कार्यक्रम में अपनी तमाम प्रस्तुतियों के बाद उन्होंने

विशेष प्रार्थना गाई, मैं त्रिम भजता। ये केवल एक गीत नहीं था, ये पूरे विश्व के लिए भारत का शाश्वत शांति संदेश था, जिसमें सबके हृदय को जीतने वाले मैत्री भाव की स्थापना का आह्वान था।

एमएस सुबुलक्ष्मी का नाम उन चुनिंदा कलाकारों की सूची में शामिल है जिन्होंने अपनी कला से अर्जित अधिकांश धन समाज कल्याण के लिए दान कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 200 चैरिटी कॉन्सर्ट किए। वो एक विलक्षण कलाकार थीं। यही कारण है कि उनके समय के दिग्गज कलाकारों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने उन्हें सुस्वर लक्ष्मी कहा। किशोरी अमोनकर ने उन्हें संगीत का 8वां सुर कहा और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा। महात्मा गांधी भी उनके बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी के 78वें जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। गांधी जी ने अपनी इच्छा जताई कि वो इस दिन एमएस सुब्बुलक्ष्मी के स्वर में मीराबाई का भजन हरि तुम हरो जन की भीड़ सुनना चाहते हैं। जब ये संदेश चेन्नई पहुंचा तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने विनम्रतापूर्वक संदेश भिजवाया कि उन्हें ये भजन पूरी तरह याद नहीं है और इतनी जल्दी इसे गाकर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगी। गांधी जी को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि यदि वो इसे केवल बोल भी दें तो भी वो मुझे किसी अन्य के गायन से अधिक शांति और आनंद देगा। गांधी जी के इन शब्दों को सुनकर एमएस सुब्बुलक्ष्मी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तुरंत ये भजन सीखा और रिकॉर्ड किया और 2 अक्टूबर की सुबह ये भजन दिल्ली पहुंचाया गया और प्रार्थना सभा में बजा। लेकिन ये भी कैसा संयोग था कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। उस समय ऑल इंडिया रेडियो ने इस दुखद समाचार की सूचना देने के तुरंत बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया गया यही भजन प्रसारित किया।

एमएस सुबुलक्ष्मी एक विलक्षण कलाकार थीं। यही कारण है कि उन्हें अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान संगीत कलानिधि प्राप्त करने वाली वो पहली महिला कलाकार हैं। वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ हैं। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली वो पहली संगीतज्ञ हैं। संगीत जगत को अपने अनगिनत गीतों की अनमोल विरासत सौंपकर 11 दिसंबर सन 2004 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण स्वर साधिका को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: नमस्कार उज्जैन, वेरी वेरी फ्रेश एनर्जेटिक और सुपर कूल वाली गुड मॉर्निंग। FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर बज चुके हैं सुबह के ठीक 9 और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे हिमानी, लेकर आपका अपना ऑल टाइम फेवरेट प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। दोस्तों, आज 17 सितंबर का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक रिमाइंड करने का मौका है कि हम यूथ मिलकर अपने शहर में क्या क्या धमाल मचा सकते हैं। स्वच्छता, एनवायरमेंट और सोशल वर्क, ये सब बोरिंग शब्द नहीं है, ये आज के यूथ का असली स्वैग है। तो चलिए उठाइए अपनी चाय का कप और ऑन कीजिए अपनी यूथफुल वाइब्स इज सुपर चैट ट्रैक के साथ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: FM 102.5 MHz पर बैक टू बैक एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है आरजे हिमानी। दोस्तों, आज 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, जिन्हें हम सब उनके डिसिप्लिन, विजन और अनस्टॉपेबल यूथफुल एनर्जी के लिए जानते हैं। आज का दिन हम सबको यही सिखाता है कि अगर आप में देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों, क्या कहते हो, आज अपने इस यूथ पावर का सही इस्तेमाल करके अपने शहर को चमकाएं। आइए इसी जज्बे

क्या गणपति बप्पा आपके लिए सिर्फ आराध्य हैं या उनसे जुड़ी है कुछ खास यादें और भावनाएं? तो आइए साझा कीजिए गणपति बप्पा से आपका रिश्ता, अपनी बातें और गीत। सुनिए कुछ बातें और गीत आज प्रातः 10:15 से सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन 102.5 MHz पर। श्रोता संपर्क करें 0734-4054-191 पर 0734-404-191 पर। दोस्तों अब वापस आते हैं उज्जैनी आरजे में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन 102.5 MHz। अब बात करते हैं हमारी अपनी बाबा महाकाल की प्यारी नगरी उज्जैनी की। सोचिए जब हम अपने कमरे या अपनी बाइक को इतना चमका कर रखते हैं तो अपनी गलियों और सड़कों को गंदा क्यों रहने दें। कभी भी कचरा फेंकने की आदत को कहना है बाय बाय और स्वच्छता को बनाना है अपना लाइफस्टाइल गोल। जब हमारी उज्जैनी चमकेगी तो पूरे देश में हमारा ही स्वैग होगा। चलिए इसी फ्रेश और कूल वाइब में डूब जाते हैं और सुनते हैं सुपरहिट गाना।

FM 102.5 MHz पर हिमानी आपके साथ हैं। श्रोताओं, जब हम अपने बर्थडे पर दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं तो अपनी धरती माँ को एक छोटा सा पौधा गिफ्ट क्यों नहीं कर सकते। एक पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना आज के समय में सबसे कूल और ट्रेंडिंग चीज़ है। सोचिए, जब पूरे उज्जैन का यूथ मिलकर पौधारोपण करेगा तो हमारी अवंतिका नगरी कितनी हरी भरी और ऑक्सीजन से भरपूर हो जाएगी। आइए पर्यावरण को हरा भरा बनाने का ये प्रॉमिस करते हैं इस एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग गाने के साथ।

दोस्तों बातें करते करते समय का तो पता ही नहीं चलता। अब बात उस चीज़ की जो आपको बिना कैप पहने असली सुपर हीरो बना सकती है, और वो है ब्लड डोनेशन। दोस्तों रक्तदान करना सिर्फ किसी की जान नहीं बचाता, बल्कि ये दिखाता है कि हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। तो अगर आप 18+ हैं और फिट हैं तो आज ही ब्लड डोनेशन का संकल्प लें और किसी की लाइफ का रियल हीरो बने। आइए इसी जज्बे के साथ सुनते हैं ये रॉक सॉलिड ट्रैक।

दोस्तों, बदलाव कोई दूसरा आकर नहीं करेगा, शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। थोड़ा सा समय अपने शहर को साफ रखने में दें, एक पौधा लगाएं और दूसरों की मदद करें, यही तो आज के स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल यूथ की पहचान है। आज 17 सितंबर के दिन आइए मिलकर वादा करें कि हम अपने उज्जैन को सबसे सुंदर, स्वच्छ और नंबर वन शहर बनाएंगे। चलिए इसी मोटिवेशनल सफर को आगे बढ़ाते हैं ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग के साथ।

दोस्तों, हम खड़ी कह रही है कि उज्जैनी आरजे का आज का ये 30 मिनट का धमाकेदार सफ़र यहीं ख़त्म करने का टाइम आ गया है। उम्मीद है कि आज की बातों और इन रॉकिंग मोटिवेशनल गानों ने आपके गुरुवार को जोश और नई एनर्जी से भर दिया होगा। अब अपनी दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन 102.5 MHz। कूल रहिए, शहर को साफ रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजे हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स। आज 17 सितंबर है और गुरुवार की इस खूबसूरत और ताज़ा सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हफ्ते के बीच का ये दिन और साथ में बॉलीवुड के ऑल टाइम फेवरेट सुरीले और एनर्जेटिक गाने मिल जाएं तो दिन का मिजाज एकदम सेट हो जाता है। अगले आधे घंटे तक हम बॉलीवुड के ऐसे सदाबहार और जोशीले गानों का मजा लेंगे जो आपकी सुबह को मिठास और एनर्जी से भर देंगे। तो बस अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए और इंजॉय कीजिए। शुरुआत करते हैं इस बेहद लोकप्रिय और धमाकेदार ट्रैक के साथ।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स। दोस्तों, गानों का ये सुहाना सफ़र आगे बढ़ रहा है। फिल्म वांटेड का ये बेहद खास गाना श्रेया घोषाल और शान की रूहानी आवाज़ में सुनिए, जो आपकी सुबह को एक अलग ही मिठास और लय दे देगा।

श्रोताओं, अब गानों की इस प्लेलिस्ट में थोड़ा सा सूफी रंग जोड़ते हैं। फिल्म तनु वेड्स मनु का ये गाना अपनी सुरीली बीट्स के लिए बेहद पसंद किया जाता है। सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

क्या गणपति बप्पा आपके लिए सिर्फ आराध्य हैं या उनसे जुड़ी है कुछ खास यादें और भावनाएं? तो आइए साझा कीजिए गणपति बप्पा से आपका रिश्ता। सुनिए कुछ बातें कुछ गीत आज प्रातः 10:15 पर सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। श्रोता संपर्क करें 0734405419 पर। FM 102.5 MHz पर गानों का ये सुहाना कारवां यूं ही आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अब बारी है अपनी प्लेलिस्ट में थोड़ा सा सुकून, प्यार और रूहानी एहसास खोलने की। फिल्म जन्नत 2 का ये सुपर डुपर हिट गाना राहत फतेह अली खान की मखमली आवाज़ में सीधे दिल को छू जाता है। सुनिए ये खूबसूरत गाना।

श्रोताओं, हमारा ये सुहाना प्रोग्राम अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन समापन तो एकदम जादुई और दिलकश होना चाहिए। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का ये आइकॉनिक गाना और प्रीतम का संगीत आपकी सुबह को यादगार बना देगा। आतिफ असलम की रूहानी आवाज में सुनिए ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, क्या शानदार और सुरीला समापन था। आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर गुरुवार का ये आधा घंटा आपके साथ इन खूबसूरत गानों के बीच कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है बॉलीवुड बीट्स ने आपकी सुबह को एकदम तरोताज़ा और ख़ास बना दिया होगा। अब अपनी दोस्त आरजे हिमयानी को दीजिए इजाज़त। अपने दिन को मुस्कुराते हुए इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। समय हुआ है सुबह 10 बजे का और अब आप सुनेंगे सिंहस्थ संवाद अमृत घटबर से एपिसोड 12, आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति।

प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की 12वीं कड़ी। लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना अनवार अहमद खान की।

नमस्कार। आस्था के विराट पर्व सिंहस्थ के पुनीत अवसर पर हम विचरण कर रहे हैं उज्जैनी के अतीत में। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की महान ज्योतिर्विद वराह मिहिर की। आज हम महाकवि कालिदास के साहित्य में उज्जैनी के महात्म्य को खोजने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने इस नगरी को स्वर्ग के कांतिमान खंड की संज्ञा दी है।

अर्थात हे मेघ, अवंती देश पहुंचकर तुम विशाल श्री वाली उस विशाल नगरी में प्रवेश करना, जहां गांव के बड़े बूढ़े उदयन की कथा सुनाया करते हैं।

0: वो नगरी ऐसी लगती है मानो स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोगने वाले पुण्य समाप्त होने के पूर्व ही अपने बचे हुए पुण्य के साथ स्वर्ग का एक चमकीला खंड धरती पर उतार लाए हों। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सिंधिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान में संस्कृत विषय के निदेशक डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा,
1: स्वर्ग का ऐसा कांतिमत खंड, ऐसा चमकीला टुकड़ा उज्जैनी है। स्वर्ग का अभिप्राय क्या है? स्वर्ग को नाक भी कहा गया है। नाक का मतलब है न अक, मतलब जहां दुख नहीं होता।

जो दुख रहित भूमि है वही स्वर्ग है। तो यदि हमें भूखंड पर किसी विशिष्ट स्थान पर निवास करने से दुखों से निवृत्ति प्राप्त हो जाए और एक अलौकिक अद्वितीय आनंद का अनुभव हो तो वह भूमि स्वर्ग का टुकड़ा ही तो कहलाएगी। और मुझे लगता है कि महाकवि कालिदास ने इसी अर्थ में उज्जयिनी को स्वर्ग का टुकड़ा कहा है।

0: महाकवि कालिदास ने उज्जैनी का ये वर्णन अपने महाकाव्य मेघदूत में किया है। मेघदूत दूत काव्य है जिसमें मेघ के माध्यम से संदेश भेजने की कल्पना की गई है। इसका नायक अलकापुरी का एक यक्ष है। एक बार अपने स्वामी कुबेर के लिए पूजा के फूल पहुंचाने में वो देर कर देता है। कुबेर रुष्ट हो जाते हैं और यक्ष को एक वर्ष के लिए अलकापुरी से निर्वासित कर देते हैं। यक्ष रामगिरी नामक पर्वत पर अकेला रहने लगता है। 8 माह बीत जाने पर जब वर्षा ऋतु आती है तो वो अपनी पत्नी यक्षिणी के वियोग में बेचैन हो जाता है। विरह की इस घड़ी में यक्ष मेघ से यक्षिणी को अपना संदेश पहुंचाने का निवेदन करता है। रामगिरी से अलकापुरी की राह में उज्जैनी नहीं आती, किंतु उज्जैनी के प्रति अपने अनुराग के कारण महाकवि कालिदास यक्ष के मुख से मेघ को उज्जैनी के रास्ते जाने को कहते हैं। संस्कृत की व्याख्याता रही अजिता त्रिवेदी।
1: वक्र पंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम सौदोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जैन्याः।
0: अर्थात हे मेघ, तुम्हें उज्जैनी का मार्ग कुछ टेढ़ा अवश्य पड़ेगा, फिर भी उज्जैनी की ऊंची ऊंची अटारियों को अवश्य ही देखने जाना।
1: जालोद्गीर्णैरुपजित वपुः केश संस्कार धूपैः बंधु प्रीत्या भवन शिखिभिः दत्तनुत्तोपहारः हर्मेश्वस्याः कुसुम सुरभिषु अध्वघेदं नयेथाः लक्ष्मीं पश्यन् ललित वनिता पादरागांकितेषु।
0: अर्थात उज्जैनी में स्त्रियों के केशों को सुगंधित करने वाली धूप की गंध तुम्हें पुष्ट करेगी और घरों के पालतू मोर तुम्हें देखकर नाचने लगेंगे। फूलों से सुरभित महलों में सुंदर स्त्रियों के पैरों में लगा महावर उनके चरणों की छाप बनाएगा। उन्हें देखकर तुम अपने मार्ग की थकान मिटाना।
1: भर्तु कंठ छविरिति गणैः सादरं वीक्षमाणः।
0: अर्थात अपने स्वामी के नीलकंठ से मिलती हुई शोभा के कारण शिव के गण तुम्हें आदर के साथ देखेंगे। वहां त्रिभुवन पति के पवित्र धाम में जाना, उसके उपवन में कमल पराग और जल क्रीड़ा करती युवतियों के स्नान द्रव्यों से सुगंधित हवाएं चल रही होंगी।

0: मेघदूत में महाकवि कालिदास ने उज्जैनी को विशाला कहकर संबोधित किया है। अवंतिका, प्रतिकल्पा, अमरावती आदि नामों के साथ ही उज्जैनी का एक नाम विशाला भी है, क्योंकि प्राचीन काल में ये नगरी अत्यंत भव्य और विशाल थी। उन्होंने विशालम विशालम दो बार कहकर इस नगरी की भव्यता का आभास करवाया है। मेघदूत में कालिदास ने महाकाल मंदिर की संध्या आरती का भी भव्य वर्णन किया है।
1: वे कहते हैं कि भले ही बादल तुम अन्य समय पर उज्जैनी में पहुंचो, लेकिन संध्या के समय तक तुम उज्जैनी में अवश्य रुकना। वे कहते हैं, अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकाल मासाद्य काले स्थातव्यं ते नयन विषयं यावदत्येति भानुः कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयां आमन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानां। हे मेघ, यदि तुम किसी अन्य समय भी उज्जैनी में पहुँचो तो संध्या काल तक, अर्थात जब तक सूर्य तुम्हारी दृष्टि से ओझल न हो जाए तब तक वहाँ अवश्य रुकना। महाकाल के मंदिर में संध्या के समय जो आरती होती है, उस आरती में विभिन्न प्रकार के वाद्यों की सुमधुर ध्वनि वहाँ पर गूंजती है। उस वाद्य वृंद के साथ तुम अपने धीर गंभीर गर्जन को मिला देना। तुम्हारे उस गर्जन से, जो कि नगाड़ों की ध्वनि के समान होगा, वह आरती और अधिक भव्य हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, और तुम भी अपने उन धीर गंभीर गर्जनों का पुण्य अविकल फल प्राप्त कर लोगे।

0: उपस्थित हैं।
1: वहां राजकुमारी की एक सखी स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय प्रदान करती है। वहां पर अवंतीनाथ नाम का भी राजा उपस्थित है, अवंतीनाथो यमुदग्रबाहुः। और वह सखी राजकुमारी से कहती है, असौ महाकाल निकेतनस्य वसन अदूरे किल चंद्रमौलेः तमिश्र पक्षेपि सह प्रियाभिः ज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान्। वो ये कह रही है कि यह जो उज्जैनी का राजा है, यह महाकाल मंदिर के अत्यधिक निकट ही निवास करता है, और वहाँ का वैशिष्ट यह है कि कृष्ण पक्ष की रात्रि में भी वहाँ चांदनी छाई रहती है। चांदनी से भरी हुई रात्रियों में यह वहाँ पर विहार करता है। अभिप्राय यह है कि स्वयं भगवान महाकाल महादेव जिस नगरी में विराजमान हों, उनके मस्तक पर चंद्रकला की अवस्थिति तो रहेगी ही, और जब सदैव चंद्रकला भगवान महाकाल के मस्तक पर विराजमान है तो उज्जैनी में कभी भी कृष्ण पक्ष होता ही नहीं, अंधकार होता ही नहीं, ऐसा कालिदास का संकेत है।
0: कालिदास ने क्षिप्रा के वेगवान प्रवाह और इसकी जल राशि का भी अत्यंत सुंदर वर्णन किया है।
2: दीर्घे कुर्वन् पटु मदकलं कोजितं सारसानां प्रत्युषेषु स्फुटित कमला मोद मैत्री कषायः।

0: यदि संस्कृत साहित्य में उज्जैनी के वर्णन की बात करें तो ये प्रसंग महाकवि बाण भट्ट के बिना अधूरा है। उन्होंने अपनी अमर कृति कादंबरी में उज्जैनी का जो विशद वर्णन किया है उससे हमें तत्कालीन समाज के संबंध में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं।
1: गद्य कवियों की परंपरा में महाकवि बाण भट्ट का स्थान अद्वितीय है। महाकवि बाण भट्ट की दो ही रचनाएं विख्यात हैं। एक है हर्षचरित जो आख्यायिका है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का जिसमें वर्णन है, और दूसरी कादंबरी नामक एक कथा महाकवि बाण भट्ट ने लिखी है। यह जो कादंबरी कथा है, इस कथा का नायक, इस कथा की भूमि उज्जैनी है। कादंबरी का आरंभ उज्जैनी वर्णना से होता है। महाकवि बाण भट्ट कह रहे हैं, अस्ति सकल त्रिभुवन ललाम भूता प्रसव भूमिरिव कृतयुगस्य आत्मनिवासोचिता भगवता महाकालाभिधानेन अपरेव पृथ्वी समुत्पादिता। बहुत लंबा संदर्भ है। वे ये कह रहे हैं कि यह जो उज्जैनी है यह सकल त्रिभुवन ललाम भूता है, अर्थात तीनों लोकों में इससे सुंदर कोई भूमि नहीं है। और वे ये कह रहे हैं कि प्रसव भूमिरिव कृतयुगस्य, जैसे सतयुग का जन्म यहाँ हुआ है, अर्थात निष्पाप निष्कलुष और पवित्रतम आचरण करने वाले लोगों की यह निवास भूमि है।
0: सिंहस्थ के पुनीत अवसर पर आइए सतयुग की प्रसव भूमि का इतिहास उसे दोबारा लौटाएं, एक निष्पाप और निष्कलुष समाज की रचना करें। मानवता के महापर्व सिंहस्थ की मूल भावना भी यही है।

0: संगीत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की 12वीं कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान की।
1: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे सेहत संवाद अमृत घट बरसे, आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सुन रहे हैं हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस उनका नाम लेते ही मन में एक भरोसा जाग जाता है। और गणपति बप्पा से जुड़ा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। किसी के लिए वे घर के सबसे प्यारे सदस्य हैं, किसी के लिए हर नई शुरुआत का शुभ संकेत, तो किसी के लिए मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा। तो आज कुछ बातें कुछ बीत में होंगी हमारे साथ गणपति बप्पा की बातें और आपके बप्पा से जुड़े रिश्ते की। हम जानेंगे कि आपके घर में बप्पा के स्वागत की क्या परंपरा है, बचपन से जुड़ी कौन सी याद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है, और जब जिंदगी में कोई विघ्न आता है तो क्या आप भी अपने बप्पा को याद करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ अपनी बात साझा करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 0734-4054-191 पर। तो चलिए आज की इन खूबसूरत बातों की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा के चरणों में इस मधुर गीत के साथ।

0: श्रोताओं, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है जी आपका?
1: जी योगेश जांगड़े, तो मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आपका आपसे एक सवाल है, आपके लिए गणपति बप्पा कौन है? अगर आपको अपने शब्दों में बताना हो कि मेरे लिए बप्पा ये है, तो आप क्या कहेंगे?
1: अब देखिए, गणपति जी तो विघ्न हरता है, हर कष्ट को हरने वाला है, तो उस हिसाब से कहें तो हम अपने माँ बाप को ही कहेंगे।
0: क्या बात कही है?
1: क्योंकि देखिए, उनसे बेहतर हमारी जरूरतों को, हमारी परेशानियों को कोई और दूसरा नहीं समझ सकता।
0: जी बिल्कुल सही बात है
1: जी।
0: तो आपकी आस्था बचपन से ही बप्पा के प्रति ऐसी है?
1: हाँ जी, बप्पा के प्रति है, और भी जो हमारी इष्ट देव वगैरह है, सभी के प्रति।
0: जी आपने बताया कि आप छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, तो हमें बताइए क्या धूम है गणेशोत्सव की छत्तीसगढ़ में?
1: बहुत है, यहाँ भी जगह जगह गणेश जी विराजमान हैं, और रोज बढ़िया पूजा अर्चना का काम होता है, झांकी वगैरह, सांस्कृतिक आयोजन वगैरह
0: जी,
1: और मार्केट वगैरह भी बढ़िया सस्ता है
0: जी। तो योगेश जी, आपका आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला गीत।

0: श्रोताओं, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार, जय श्री महाकाल।
0: नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला।
0: राकेश जी, आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद आपका।
0: तो राकेश जी, जैसा कि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो आप हमें बताइए कि हिमाचल शिमला में क्या धूम है गणपति उत्सव की, कैसे आप मनाते हैं, क्या तैयारियां करते हैं?
1: जी, तो सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस, गणपति विसर्जन की भी हार्दिक शुभकामनाएं, गणेश उत्सव की भी शुभकामनाएं। और जैसे कि उज्जैन जो है माँ के माँ कालेश्वर की क्या बोलते धरती है, तो यहाँ तो गणेश उत्सव तो मनाया जाता होगा खूब धूमधाम से।
0: जी बिल्कुल, अवंतिका में यहाँ पे गणेश जी को अवंतिका के युवराज कहा जाता है।
1: जी जी जी जी, तो हमारे हिमाचल में, जैसे कि हमारे गांव में तो नहीं, लेकिन हाँ कई क्षेत्र में मनाया जाता है। जब हमारे यहाँ, जब हिमाचल में जब गणेश उत्सव मनाया जाता, तो आखिरी में जो है जितने भी जो है सरकारी जो है और जो है उन मूर्ति को जो है विसर्जन किया जाता है नदियों में। और इस समय जो है कई बड़े शहरों में कहीं कहीं जो है यहाँ भी जो है गणपत का जो है उत्सव मनाया जा रहा है
0: जी।
1: और इस पूरे देश में जो है मनाया जा रहा है, तो इस हिमाचल में भी मनाते हैं। और हमारे तो हिमाचल तो ऐसे भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ जो है इस अलग अलग जो है त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे गणेश उत्सव हो, दिवाली हो या कुछ हो। जैसे कि आज पीएम विश्वकर्मा जयंती भी है, तो वो भी पूरे उस उल्लास से मनाए जाते हैं। तो और बहुत सारे जो है ये जो है त्योहारों का जो सीजन चल रहा है, तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है।
0: जी
1: जी जी जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए।
1: जी जी, धन्यवाद आपका भी।
0: अब अगले कॉलर से जुड़ने से पहले सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: श्रोताओं, अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं राजकुमार कछवाहा बोल रहा हूं मैडम, चंद्रावतीगंज से।
0: जी राजकुमार जी, आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है। तो राकेश जी, राजकुमार जी, बताइए कि गणपति उत्सव की क्या धूम है?
1: गणपति बप्पा की तो धूम मैडम पूरे भारत में है और भारत के अलावा भी विदेशों में भी है
0: जी,
1: और तो हर घर घर में है ये गणपति बप्पा की धूम तो, और ये तो मेरे आराध्य देव है तो इनको तो हम बहुत बढ़ चढ़ के मनाते हैं
0: जी। इस बार क्या स्पेशल कर रहे हैं आप गणेश उत्सव में?
1: गणेश उत्सव में तो मैडम मतलब ये पंडालों में तो नहीं जा पाते हैं, काम काज में काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर में काफी धूम है। गणेश जी की बड़ी झांकी बनाई है हमारे घर के बच्चों ने, और सुबह शाम दोनों टाइम भगवान पप्पा की गणेश जी की आरती होती है, हर रोज एक नया प्रसाद होता है जो अद्भुत होता है
0: जी।
1: और मेरे मैं आपके जो गणेश जी के चिंतामन गणेश उज्जैन में
0: जी जी,
1: हमारे नगर चंद्रावतीगंज से 19 किलोमीटर पड़ता है और मैं करीबन 13 वर्ष हर बुधवार को पैदल ही दर्शन करने गया हूँ वहाँ पे, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों।
0: वाह क्या बात है,
1: आज जो कृपा है भगवान की वो उन्हीं की कृपा से सब कुछ है, हमारा काम काज है, मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है
0: जी।
1: और सब गणेश जी की चिंतामन गणेश जी की कृपा से ही सब संभव हुआ है।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने
1: जी
0: जी। आपका आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी।
1: जी
0: श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला गाना।

0: श्रोताओं, FM 102.5 MHz पर कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम में बातें हो रही हैं गणेशोत्सव की, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर।
1: हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ, आज से खंडिया गेट कॉलोनी, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश से।
0: अमरजीत जी, आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैडम, और जानना चाहूँगा आप लोग कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल, हम भी बहुत बढ़िया है। और अमरजीत जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम कुछ बातें कुछ गीत में बात कर रहे हैं गणेशोत्सव के बारे में। तो आप बताइए, रामपुर उत्तर प्रदेश में जहाँ से आप हैं, वहाँ गणेशोत्सव किस तरह मनाया जाता है, क्या धूम रहती है गणेशोत्सव की?
2: मैडम हमारे तरफ तो एक सब गांव बस्ती के लोग होते हैं, सभी लोग गणेश जी को गीत और डीजे के साथ मजा लेते हैं और काफी अच्छा बनाते हैं हमारी तरफ तो।
0: जी, गांवों में उत्सवों की और ज्यादा आत्मीयता देखने को मिलती है।
2: जी जी, क्योंकि उसमें सारे परिवार वाले होते हैं और गांव के व्यक्ति रहते हैं और सभी लोग पूजा करते हैं, नाचते हैं, गाने पे में काफी अच्छा लगता है।
0: पूरे 10 दिनों तक यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता होगा।
2: जी, और इस समय तो मैं अपने रामपुर में तो नहीं मैडम, मैं इंदौर में हूँ, MP में।
0: इंदौर में खासकर ये त्यौहार और भी बड़े स्तर पे मनाया जाता है।
2: जी जी जी, काफी दिनों मतलब 10 दिन मूर्ति को रख के पूजा करते हैं और भजन चलाते हैं मैडम, काफी अच्छा रहता है इधर का माहौल और भी खास है।
0: जी, आपको कई बड़े बड़े पंडाल मिलेंगे इंदौर उज्जैन में दर्शन करने के लिए।
2: जी,
0: आपका आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: श्रोताओं, अगले कॉलर से जुड़ने से पहले सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: श्रोताओं हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी थैंक यू सो मच, कैसे हैं आप?
0: जी बिल्कुल हम ठीक हैं। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम गणेश उत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताइए आपके यहाँ किस प्रकार से गणेश उत्सव की तैयारियाँ की जाती हैं, किस प्रकार ये उत्सव मनाया जाता है?
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे कॉलोनी में भी गणेश जी की स्थापना होती है और साथ में हमने अपने घर से भी मिट्टी के बनाकर गणेश जी की स्थापना की है और पूरे मतलब 10 दिन तक ऐसा मतलब भक्तिभाव का माहौल रहता है और श्री गणेश जी की पूजा मतलब हर सुबह शाम लोग करते हैं।
0: जी
1: जी, और इसमें आरती का मतलब विशेष महत्व होता है और हर अलग अलग दिन आरती के बाद में लोग अपने अपने अलग अलग मतलब भजन की कोई प्रस्तुति देते हैं, कोई डांस की प्रस्तुति देते हैं, ऐसे मतलब इस उत्सव को मनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: प्रेम जी एक खास अगर संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे गणेश उत्सव के दौरान तो आप क्या देना चाहेंगे?
1: जी सबसे पहले तो यही कहेंगे कि एक दूसरे से मतलब आदर प्रेम के साथ में रहे, उत्सव मनाए और एक दूसरे का मतलब साथ दे और ऐसे मतलब कोई भी मतलब भ्रांतियां न फैलाए ताकि अपने धर्म के नाम पे मतलब ऐसे कोई गलत संदेश

0: सूचना पहुंचाएं और सभी से मतलब प्रेम से रहे।
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: और आपने जो मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं, तो आप पर्यावरण से रिलेटेड भी कोई संदेश देना चाहते हैं?
0: हाँ जी, पर्यावरण से रिलेटेड यही संदेश है कि जब हम गणेश जी को विसर्जन करते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी उन्हें मतलब ऐसे कम पानी में या फिर जहाँ पर ऐसे थोड़ा होता है साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और इको फ्रेंडली सबसे गणेश जी का लाया जाए घर से, तो मतलब पर्यावरण के लिए काफी अच्छा
1: जी,
0: रहता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सोच
0: जी।
1: बहुत
0: धन्यवाद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अगले कॉलर से जुड़ने से पहले सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।
2: लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, परे थम, जवान पीछे से गाना गाएगा।

0: श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी मैम, गुड मॉर्निंग। महाकाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं महाकालेश्वर की।
0: जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं आप?
1: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश। ये भी मेरा पांचवा नंबर का कॉल है। और एक बात और बताऊँ मैम, कि मैं महाकालेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आज मेरा कॉल लगना ही चाहिए, तो मैंने ऐसा हाथ उठाया और तुरंत कॉल कनेक्ट हो गया। आप बताओ।
0: बहुत ही बढ़िया बात है ये तो।
1: मैं एक हाथ से फोन लगा रहा हूँ, एक हाथ से उठा रहा हूँ, तो गणेश भगवान ने भी और महाकालेश्वर ने दोनों ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जी जी, मुझे बहुत खुशी होती है उज्जैन में फोन लगाने के लिए। उज्जैन आकाशवाणी में मेरा ये पांचवा कॉल है मैम। जब से मैं जुड़ा हूँ तो मैं बहुत खुशी होती है जब उज्जैन आकाशवाणी।
0: आप जैसे श्रोताओं का उत्साह देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है।
1: जी जी जी जी, जी।
0: उमा शंकर जी, जैसा कि आज हम गणेश उत्सव की बात कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि आपके शहर, आपके यहाँ किस तरह से गणेश उत्सव मनाया जाता है, क्या तैयारियाँ आप करते हैं, किस प्रकार से पूजन किया जाता है?
1: जी जी, वैसे तो मैं भोपाल में रह रहा हूँ और वहीं

0: आकाशवाणी सुन रहा हूँ। तो यहाँ भोपाल की बात बताऊँ तो यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे उत्सव इतना फेमस है मैम कि वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, तो जिससे बच्चे चढ़ के मतलब अपनी उत्साह से बहुत भाग लेते हैं और बच्चों को जो पुरानी संस्कृति है उसके बारे में बताया जाता है, बच्चों को स्पोर्ट वगैरह खेल कूद के बारे में कुछ ऐसा ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो भगवान में भी जुड़े रहते हैं और खेलों में भी बहुत रुचि बढ़ती है उनकी। तो ये ग्राउंड है वहाँ पे गणेश जी के पे ही ये प्रोग्राम होते हैं ज्यादातर, तो उसमें भाग लेते हैं बच्चे गतिविधि जी तो उसमें बच्चों को भी बहुत मजा आता है, बच्चे भी भगवान से कनेक्ट होते हैं और खेल कूद में भी उनको वो चीजों में भी कनेक्ट होते हैं। हमें देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि ये चीजें होना चाहिए गणेश जी के अवसर पे या काली जी के अवसर पे। तो काली जी जब रखी जाती तब तो चेहरा होता है, और गणेश उत्सव में भी ये चीजें इसमें कनेक्ट होना चाहिए हर जगह।
1: जी आप कोई अच्छा सा संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को गणेश उत्सव के दौरान?
0: गणेश उत्सव के दौरान मैम ये ऐसा संदेश है कि मैम अब जब विसर्जन हुए तो उनको इधर उधर ना ऐसा डाला जाए, थोड़ा व्यवस्थित जगह पे ही उनको विसर्जन किया जाए, जिस अपन को कहीं की ऐसी तस्वीर ना मिले जिससे अपन मन आहत होए दुख होए कि हमने इतने दिन प्रार्थना करी गणेश जी की और उनको इधर उधर तस्वीरें आती हैं, तो मैम ये बुरा लगता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश आपका, और आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी।
0: जी जी मैम, वेलकम। ओके मैम, ओके जी।
1: श्रोताओं, अगले कॉलर से जुड़ने से पहले हम सुनते हैं ये सुंदर भक्ति गीत।

तो श्रोताओं, आज के कुछ बातें कुछ गीत की इस मुलाकात में हमने जाना कि हर किसी का अपने गणपति बप्पा से रिश्ता थोड़ा अलग है, लेकिन उस रिश्ते में विश्वास और अपनापन सबके लिए एक जैसा है। आपने हमारे साथ अपनी यादें और अपनी भावनाएं साझा की, इसके लिए दिल से धन्यवाद। इसी के साथ मुझे अपनी उद्घोषिका हिमानी को दीजिए अनुमति। फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातें और कुछ नए गीतों के साथ, आकाशवाणी उज्जैन 102.5 MHz पर। नमस्कार।

भजन सुमन इस एल्बम से आपको सुनवा रहे थे ये भजन, जिसे पंडित रामानंद शर्मा के पंडित रामानंद शर्मा ने इसे एक अपने ढंग में ढाला है। गोपाल, सुखदेव, कौशेंद्र, राघवेंद्र शर्मा की आवाजें आपने सुनी, शर्मा बंधु का संगीत इस भजन में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर। आइए आपको सुनवाते हैं

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बज़्म ख्याल। इस एल्बम से आप सुन रहे थे गजल दिलराज कौर की आवाज में। सईद राही ने इसे लिखा, उत्तम सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में इब्राहिम अश्क का ये कलाम।

अली मोरे अंगना। इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे शुभा मुद्गल और साथियों की आवाजें शहाब अलाहाबादी के बोल और जवाहर वट्टल का संकेत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए सुनते हैं अमर अकबर एंथनी फिल्म से ये कव्वाली जिसे गाया मोहम्मद रफी और साथियों ने। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संकेत।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

जवाहर वट्टल का संगीत आप सुन रहे थे, बोलो तारारा। इस एल्बम के गीत में आवाज दलेर मेहंदी और साथियों की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं नाजिया हसन और जोहेब हसन की आवाजों में इंदिवर के बोल। बिद्दू का संगीत एल्बम बूम बूम से सुनिए ये गीत।

Acha. Now we come to run things on the road. See?

नाजिया हसन और जोहेब हसन की आवाजों में इंदिवर के बोल आप सुन रहे थे। बिदू का संगीत बूम बूम एल्बम से ये गीत आपने सुना। रंग तरंग कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सपना अवस्थी और अनु मलिक की आवाजें, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत इस गीत में जिसे हमने लिया है चाइना गेट फिल्म से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 में ये बात कही।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: इस अवसर पर श्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि निर्माण और आत्मनिर्भरता हमारी परंपरा में शामिल रहा है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन के 6 स्तंभों के बारे में जानकारी दी।
2: सेमिकॉन 2.0 विल बिल्ड द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवर 6 पिलर्स। पिलर नंबर 1 इज डिजाइन, द पिलर नंबर 2 इज मशीन्स एंड मटेरियल्स, पिलर 3 विल बी मोर डिस्प्ले मेमोरी सिलिकॉन कंपाउंड एंड लॉजिक फैब्स, पिलर 4 विल बी मोर एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट्स, पिलर 5 विल बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द पिलर 6 इज अबाउट टैलेंट।
0: 3 दिन का यह सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक, इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: मन्ना डे की आवाज में आनंद फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे। योगेश ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसलिए हमने कुछ ऐसे गीत यादों की महफिल कार्यक्रम में चुने हैं जिन फिल्मों में डॉक्टर्स हमें नजर आते हैं। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म से गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: मुकेश की आवाज में डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, इसलिए कुछ ऐसी फिल्मों के गीत हमने चुने हैं जिनमें डॉक्टर और मरीज नजर आते हैं।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे सफर फिल्म के इस गीत में। इंदिवर ने से लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गुलशन बावरा के बोल आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में परिवार फिल्म के इस गीत में संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, परिवार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर।

0: बेमिसाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसलिए हमने कुछ ऐसी फिल्मों के गीत लिए हैं जिनमें डॉक्टर्स नजर आते हैं।

आ गले लग जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में खामोशी फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है तो ऐसी फिल्मों से गीत लाए हैं जिनमें डॉक्टर्स नजर।

मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शान की आवाज में। अब्बास टायरवाला ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिन फिल्मों में डॉक्टर के रूप में नजर आते हैं कलाकार। कबीर सिंह फिल्म का ये गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, सचेत परंपरा का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर में आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट या इबारत पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, और उस पर ही छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे। और आज की इबारत और टेक्स्ट जो है वो हम आपको बता देते हैं। इस दुनिया में हम अकेले ही आते हैं, लेकिन आते ही हमें मिल जाता है पूरा परिवार। फिर भी कभी हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें, तो कभी चाहते हैं यार दोस्तों का साथ। यारों की तो बात निराली है, उनके साथ हर गम की शाम भी बन जाती दिवाली है। लेकिन हम सफर के आते ही हम भूल जाते हैं सारा जहान। दोस्त यार भी देते हैं लानत और करते हैं प्यार से तौबा, लेकिन किसी अजनबी हसीना से मुलाकात होते ही वो भी हो जाते हैं प्यार के शिकार। तो आपका इस बारे में क्या है विचार? क्या आप हैं यारों के यार, या आप भी हैं प्यार के शिकार? ये हमारी आज की इबारत है, और इसमें से बहुत से शब्द हमारे साथियों ने चुन भी लिए हैं, गीत भी हमें बता दिए हैं। तो कौन कौन से गीत आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट में से मैच होने वाले हैं, ये तो आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे ही। साथ ही आज यारों दोस्तों की बातें होंगी, हम सफर जीवन साथी की बातें भी होंगी। और क्या दोस्तों ने कभी आपको ताने उल्हाने दिए हैं, और दिए हैं तो क्यों दिए हैं, ये आप हमें बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि दोस्तों के दोस्त आप हैं या हैं आप सिर्फ अपने ही दोस्त? और स्कूल के दोस्तों से संपर्क है, कॉलेज के दोस्तों से संपर्क है, या हर बार आप नए दोस्त बनाते चलते हैं? तो ये सारी बातें करते हुए चलेंगे आज के इस कार्यक्रम में आगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि दुनिया में इंसान अकेला आता है, लेकिन परिवार, यार और दोस्त उसके जीवन को रिश्तों और अपनेपन से भर देते हैं। दोस्ती में गम भी हल्का हो जाता है और हर पल खुशनुमा बन जाता है। वहीं हमसफर की मुलाकात जीवन में प्यार और मोहब्बत के नए रंग भर देती है। अजनबी से हुई एक मुलाकात कब दिल को प्यार का शिकार बना दे, पता ही नहीं चलता। यही दोस्ती, यारी, मुलाकात और मोहब्बत के खूबसूरत एहसास आज के इस कार्यक्रम में भावनाओं से भर देंगे। और हमारे साथी कह रहे हैं, प्यार और यार बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं अपितु मार्मिक, सहज और सरल विषय है जिससे सभी अनुस्यूत हैं, लेकिन समुचित निर्णय तक पहुंचते पहुंचते रह जा रहे हैं। क्योंकि प्यार जहां प्रकृति और पुरुष के बीच अनुस्यूत होते हुए भी अपने सृजनशीलता में सच्चिदानंद युक्त है, वहीं यार अपने यारानेपन से इस योजना को चरितार्थ करते रहने की भावना है। तो अक्सर लोग सृजन को समझ नहीं पाते और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप सृजनता को ही अपना मानकर मोहपाश में बनते हैं, फिर वो विनाश के प्रति अग्रसर होते हैं। तभी तो कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। प्यार में आकर्षण तो है, किंतु आकर्षण यार के रूप लावण्य पर स्वयं के निछावर कर त्याग और समर्पण की मिसाल बनने में ही निहित है, फिर ये परिस्थिति किसी प्रेयसी के प्रति हो या मित्रता के प्रति, ऐसा इन्होंने कहा है। तो चलिए कार्यक्रम में और बातें पढ़ें और कमेंट्स आपके पढ़ें। उससे पहले कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और क्या ये गीत आपके लिस्ट में शामिल है।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आपने सुना और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बता रहे हैं अलग अलग बातें। हमारे एक साथी कहती हैं कि आज की भारत रिश्तों के बदलते रंगों की कहानी है। इंसान परिवार के बीच पलता है, दोस्तों की महफिल में खुशियां बांटता है और जब प्यार दस्तक देता है तो वही दिल किसी खास हमसफर का हो जाता है। दोस्ती में बेफिक्री है, प्यार में अपनापन और परिवार में सुरक्षा। जिंदगी की खूबसूरती इन्हीं रिश्तों के सुरों से मिलकर बनती है। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि इंसान बुनियादी तौर पर यारों का यार भी बना रहता है और वक्त आने पर खुशी खुशी प्यार का शिकार भी हो जाता है। जिंदगी का असली मजा यही है कि यार महफिल को जिंदा रखें और हम सफर खामोशियों को भी हसीन बना दे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अकेले आना हमारी मजबूरी है पर अकेले रह ना पाना हमारी खूबसूरती है। परिवार हमें पहचान देता है तो यार हमें उस पहचान पर हंसना सिखाते हैं। उनके साथ चाय की प्याली भी महफिल बन जाती है और गम की शाम भी दिवाली। और वो अजनबी हसीना वाला जादू भी कुछ अलग से नहीं होता, दिल अगर जिंदा है तो किसी ना किसी का शिकार तो होता ही है। इसलिए मेरा विचार है कि मैं यारों का यार रहकर ही प्यार का सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि यारी हमें इंसान बनाती है और प्यार हमें किसी एक पर स्वयं को समर्पित रहना सिखाता है। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी। और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको, जैसे इस गीत में कहा गया था कि बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं, तो आपको किस तरह से दोस्त मिले? क्या काफी मुश्किलें हुई या बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं दोस्ती? ये तो हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बता सकते हैं।

बात एक रात की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सवाल का सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती वो रिश्ता है जहां बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे का होना ही दिल को सुकून दे जाता है। और जब दोस्ती में प्यार की मिठास घुल जाए तो रिश्ता और भी अपना सा लगने लगता है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं दिल से बनते और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने कही, दोस्ती का रिश्ता कुछ इसी तरह का होता है। हमारे एक साथी और हैं, वो कह रही हैं, दुनिया में हम अकेले आते हैं, परिवार मिलता है, फिर नाते रिश्तेदार मिलते हैं, दोस्ती यारी बनती है, मिलने वाले कुछ अजनबी हमारे सबसे करीबी और परिवार जैसे बन जाते हैं। सच्चा दोस्त सुख दुख में साथ निभाता है और जीवन को खुशियों से भर देता है। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए हम सफर बन जाते हैं तो कुछ प्रेम और स्मृतियों के रूप में हमेशा दिल में रहते हैं। बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती के बारे में कह रहे हैं कि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो तन्हाई और महफिल के बीच ताउम्र झूलता रहता है। जन्म के साथ जो परिवार मिलता है वो बुनियाद बनता है, लेकिन इंसान की असली पहचान और आजादी उसके दोस्तों के बीच खुलकर सामने आती है। दोस्त वाकई हर गम की शाम को दिवाली बनाने का हुनर रखते हैं। वहां औपचारिकताएं नहीं, बेतकल्लुफी और सच्चा सहारा होता है। लेकिन दोस्त अगर आपको छेड़ने पर आ जाए या उलाहने देने लगे तो कुछ अलग ही हाल होता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें बताइए, क्या कभी आपको दोस्तों से ऐसे ताने उलाहने मिले हैं? कौन सी फिल्म का गीत है ये भी बताइएगा।

0: से तौबा।
1: फिर सुबह होगी, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इस तरह के ताने उलाने क्या आपको आपके दोस्त देते हैं? कभी मिला है ऐसा ताना, हमें भी बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मानव जीवन की यात्रा एक कोरे कागज की तरह शुरू होती है। हर इंसान इस दुनिया में अकेले आता है, नितांत निश्चल और शांत। जन्म लेते ही परिवार मिलता है, जहां निस्वार्थ और सुरक्षात्मक प्रेम मिलता है। वो प्रेम की ऐसी बुनियाद है जो इस विश्वास को परिभाषित करती है कि इस अजनबी दुनिया में हम अकेले नहीं है। वक्त आगे बढ़ता है, बचपन से युवावस्था में कदम रखते ही यारी दोस्ती से जुड़कर प्रेम की पहचान होती है। फिर आजादी का दौर, अल्हड़पन रहता है। यहाँ जिंदगी के सफर में कभी कभी हम अकेलेपन की जरूरत भी होती है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि स्वयं से प्रेम को समझने के लिए आवश्यक है। और जब हम थोड़े थोड़े परिपक्व होते हैं, तो जिंदगी में हम सफर का आना, प्रेम और जिंदगी को नए रिश्तों से जोड़ना एक ऐसी भावना को जागृत कर देता है, जिससे जिंदगी करीब करीब मुकम्मल हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वास्तविकता तो यही है कि आदमी दुनिया में अकेला आता है और रिश्तों में रहता है, फिर सच्चाई समझ लेता है। उसके बाद देखा है अकेले में जो सुकून है या यारों के साथ जो सुकून है, कुछ भी ऐसा ही, और अंत में अकेला चला जाता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि ना हम किसी प्यार के शिकार हैं, ना किसी राह में लाचार हैं, हम तो बस दिलदार तरानों और खूबसूरत नगमों के यार हैं। जिंदगी के हर मोड़ को मुस्कुराहट से जीना और गीतों की महफिल से खुशियां बांटना ही अपना अंदाज है। शिकारी हो या शिकार, हम तो बस दोस्ती और मोहब्बत के इस हसीन सफर के हमराही हैं। क्या कहने आपकी बात के। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि आज जीवन के सफर में रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, हर मोड़ पर बदलते हैं। इस इबारत में भी बदलते रिश्तों की ओर इशारा है। शुरू में परिवार से जुड़ते हैं, फिर यार दोस्त हमारे साथी बन जाते हैं, फिर कभी कभी हमारा मन अकेले रहने की जिद करता है, कोई हसीना अचानक हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है और हम रिश्तेदार दोस्त सबको भूल कर उस हसीना के दीवाने हो जाते हैं, दुनियादारी तक भूल जाते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। हमारे और एक साथी कह रहे हैं कि बात ऐसी है कि दोस्त अपनी जगह होती है, दोस्ती और प्यार अपनी जगह होता है और परिवार एक तरफ होता है, लेकिन आज के दौर में अपने प्यार को ज्यादा अहमियत देते हैं, ऐसा इनका कहना है। वही हमारे एक और साथी का कहना है क्या, ये हम बताते हैं आपको। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत है सच्चाई, परिवार सबसे बड़ी दौलत और सच्चाई है परिवार। एक खुशहाल जीवन और जीवन में कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सब रिश्ते अपनी अहमियत रखते हैं, अकेले आने के बाद हर रिश्ता हमारे जीवन में अपने आप ही बनने लगता है। बात महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और विश्वास से निभाया जाए, न कि झूठ, धोखा, लालच, बेईमानी से निभाते जाए, क्योंकि इसका परिणाम ही जिंदगी में जहर घोलने लगता है और जिंदगी को नरक कर देता है, ऐसा इनका कहना है। तो बड़े ही गंभीर भी बातें आ रही है, थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी हो जाए तो हमें बताइए कुछ कि क्या आप और आपके दोस्त जब मिलते हैं तो कुछ ताने उलाने का दौर चलता है या नहीं, और दोस्ती पर कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें ये बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आपके हमसफर के आने के बाद आप वाकई दोस्तों से दूर हो गए या ऐसा सिर्फ कहा जाता है। ये सारी बातें तो आप बताएंगे ही, साथ ही हमें ये भी बताइए कि जो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है, संगीत किसका है।

दोस्ताना फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इस गीत में था और यही हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने भी सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं रोज फेसबुक पेज पर टेक्स्ट पढ़ने आता हूं और सोचता हूं कि आज यूनुस जी आएंगे, मगर अफसोस मैं निराश हो जाता हूं। ऐसा नहीं कि आप सब लोग कार्यक्रम अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार इंतजार बहुत लंबा हो गया है। भाई आपकी ये इंतजार जो है जल्द ही खत्म होगा ऐसे हमारा मानना है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दोस्ती में आदमी बेतकल्लुफ रहता है, हर बंधन से मुक्त, जिसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब की दीवार नहीं होती, होता है तो बस आपसी प्यार और इतना सा लिहाज कि जब दोस्त ये दोस्त कभी रूठ ना जाए। पुरुष के मामले में यही दोस्त हम सफर की एडिटिंग का शिकार हो जाते हैं, ये बहुत फोन करता है इसे और काम नहीं क्या, ये तुम्हारे ऑफिस में है क्या, वगैरह वगैरह। इतने पर भी अच्छे दोस्त बुरा नहीं मानते और दोस्ती बनी रहती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संसार के सफर पर मानव आने के बाद पहली बार परिवार से मिलता है, फिर सहपाठी, स्कूल कॉलेज के दोस्त होते हैं अच्छे, हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं, जीवन भर याद रहते हैं, जिंदा दिली से जीते हैं, फिर अचानक जीवन में अजनबी के आने से उनके साथ फिर एक नया परिवार बना लेते हैं। परिवार और दोस्तों दोनों का साथ सामाजिक दायित्व निभाने के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों का साथ हमें कुछ पलों के लिए खिलखिलाने और मुस्कुराने का अवसर प्रदान करता है। परिवार दोस्तों के साथ मिलकर भरपूर जिएं और खूबसूरत पल बिताएं, तनाव मुक्त रहें। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत यारी दोस्ती की ज्यादा बातें करती नजर आ रही है, कभी समुंदर तो कभी आसमान है दोस्ती, जैसे आजाद परिंदों की जान है दोस्ती, कभी मुसीबत में फंसे दोस्त को भी बचा लेती है दोस्ती, खुशियों का पिटारा है दोस्ती, प्यार भरे रिश्तों का नाम है दोस्ती। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रिश्तों की दुनिया में दोस्ती और प्यार दोनों ही जिंदगी के खूबसूरत रंग है। यारों के साथ हंसी बेफिक्री होती है और प्यार के साथ दिल कुछ ज्यादा ही खामोश होकर धड़कने लगता है। दोस्त चाहे जितना छेड़ें, हम सफर आए तो दुनिया सिमट जाती है और कभी किसी अजनबी की एक मुस्कान उस सिमटी दुनिया में फिर से हलचल मचा देती है। शायद जिंदगी भी इसी उलझन का नाम है, कभी यारी के नाम, कभी प्यार के नाम। तो बस इस बात पर एक गीत याद आ गया जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। ये बताइएगा कि ये गीत किसकी आवाज में है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजें। बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे साथियों ने, और हमारे साथी बहुत सी बातें तो लिख रहे हैं। उदित जी, अनुराधा जी, हमारे एक और साथी ने ये जवाब दिया, हमारे साथी ने ये भी बताया कि अनु मलिक का संगीत इस फिल्म के गीत में। हमारे एक साथी का कहना है कि दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत तो सुरीला सफर है, यहाँ हम सभी कभी नहीं मिले, फिर एक दूसरे के विचारों को लाइक करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि नमक और दाल की दोस्ती अटूट, शक्कर और चाय की दोस्ती अटूट, नमक और दाल की दोस्ती अटूट, सुख और पानीपुरी की दोस्ती अटूट, सुखर गानों की दोस्ती भी अटूट, सुख का हजारों लाखों से दोस्ती अटूट, सोचो अगर सुख दोस्ती नहीं करे तो क्या होगा। ये भी सोचने की बात है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आते हैं अकेले, अकेले ही छोड़ जाते हैं संसार, बीच सफर में मिलता है परिवार और यार दोस्तों का प्यार, फिर बनते हैं किसी मन चाहे हम सफर के प्यार के शिकार, देखते रहते हैं रिश्तों के बदलते रंगों का आकार, उलझनों में ही चलती रहती है ये जिंदगी निराकार। क्या बात कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम हैं यारों के यार, करते हैं धर्म पत्नी से प्यार, शिकार करते हैं अनीति का, निज धर्म पर चलना सिखलाते अपने माता पिता के संस्कार, इस दुनिया में हम अकेले ही आते हैं लेकिन अपने अच्छे संस्कारों से बनाते हैं हम अपना अच्छा परिवार, हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें तो कभी चाहते हैं यार दोस्तों का साथ, तो यारों दोस्तों के लिए मेरे दोस्तों दीजिए उन्हें भाई जैसा प्यार। हाँ, प्यार से तौबा मत करना, प्यार बढ़ाता भाईचारा, लेकिन किसी ने सच कहा है प्यार दिलों का मेला है, ऐसा इन्होंने गीतों के साथ और आगे अपनी बात कही है। तो जब बात यारों दोस्तों के साथ प्यार पर आ गई है तो एक गीत आपको सुनवा ही देते हैं, और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज तो आप पहचान ही लेंगे, हमें ये बताइए लिखा किसने है।

यहीं पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अजनबी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें आज बात हो रही है अकेलेपन की भी, साथ में यारी दोस्तों की भी और हम सफर की भी। हमारे साथी कहने की कल रात ही उन्होंने अपनी पत्नी को बताया अपने उन 3 दोस्तों के बारे में जो नॉन स्टॉप बातें किया करते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल के दिनों में ही सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हुए, परंतु हायर एजुकेशन कॉलेज के समय मुझे स्वयं मेहनत करके कमाना और पढ़ाई के खर्चे निकालना पड़ा और इस वजह से समय के अभाव के कारण दोस्तों से मिलना नहीं होता था। फिर मेडिकल प्रमोशन ऑफिसर जॉब लगा, फिर शादी की और बच्चों की जिम्मेदारी में व्यस्त रहा और अभी भी हूँ। हाँ, मेरे स्कूल के समय से आज तक और आगे भी मेरा सच्चा प्यारा दोस्त और साथी रहा है रेडियो और विविध भारती, विविध भारती परिवार और इन दिनों फेसबुक के विविध भारती के श्रोता साथी भी। हमारे एक और साथी ने भी कहा है कि उनके जो विविध भारती के जो श्रोता साथी हैं उनके दोस्त हैं और एक अलग तरह की दोस्ती पेज में हमें नजर भी आती है आप सभी के कमेंट्स के जरिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दोस्ती फिल्म उनकी दोस्ती पर आधारित जो फिल्में हैं उनमें सबसे पसंदीदा फिल्म है। ऐसे बहुत से लोगों ने दोस्ती फिल्म को ही चुना। हमारे एक साथी दोस्ताना फिल्म का नाम भी लिखते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि हम सीनियर लेडीज का एक ग्रुप है और हम रोज शाम को मिलते हैं 1 घंटे आधे घंटे के लिए और बहुत सारे जो भी उत्सव त्योहार जो भी होते हैं वो सब हम आपस में मिलके मनाते हैं और कभी कभी नाश्ते वगैरह के लिए भी वो बाहर जाते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं। लेकिन कोविड आने के बाद से ये दौर थोड़ा खत्म हो गया उनका और वो उस वक्त को अब भी मिस करती हैं। हमारे और साथी हैं वो कह रहे कि दोस्ती पर आधारित सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्ती उन्हें अच्छी लगी, खुदगर्ज याराना और दोस्ती का नाम भी हमारे एक साथी ने लिखा। वही हमारे एक साथी कह रहे कि व्हाट्सएप में मेरे स्कूल के फ्रेंड्स का एक कॉलेज फ्रेंड का भी ग्रुप है, समय समय पर छोटी छोटी टूर्स भी हम करते रहते हैं, साथ में मिलते रहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिए जलते हैं तो अंधेरों में उजाला भर जाता है, मन में उम्मीद और जीवन में नई रोशनी आती। एक छोटा सा दीपक भी हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए। एक साथी कह रही है कि प्रेम ही ऐसी चीज है जो दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग थलग कर देता है। हम योजना तो बहुत बनाते हैं मगर अंत में वही होता है जो ईश्वर की मर्जी होती है। जन्म लेते ही हमें मिलता है प्यारा परिवार, फिर यार दोस्त, फिर एक प्यारा सा हमसफर। ये जीवन के क्रय हैं। एक दिन आपको समझ आ जाता है कि हम जो भी पात्र जी रहे हैं वो भी एक कहानी है और कहानी के लेखक है ईश्वर। तो इस जिंदगी में जो रिश्ता मिले उसका शुक्राना कीजिए और जो ना मिला उसके लिए उदास मत होइए। जो हो रहा है एक पटकथा का हिस्सा है और आप एक छोटे से रोल में हैं, तो बस उस रोल को निभाते रहिए और खुश रहिए। नमक हराम फिल्म का जो गीत हमने सुनाया, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बहुत से साथियों ने कहा कि उनकी लिस्ट में वो गीत शामिल था। और भी हमारे साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके लिस्ट के 90 नंबर का जो गीत था वो चल चुका है। एक और साथी कह रहे हैं कि प्यार यार और परिवार में छुपा है सारे संसार का सार। संबंधों की सामंजस्यता के अभाव में इंसान एकाकी और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। अभिरुचि के समानांतर भाव की तलाश में इंसान कभी यार कभी प्यार तो कभी परिवार में जीवन गुजार देता है। अंततो गत्वा उत्तरार्ध में परिवार से ही संपूर्ण संतुष्टि मिलती है। ये हमारे साथी का कहना है। और एक साथी कह रहे हैं कि स्कूल टाइम से आज तक दोस्ती चल रही है, 60 साल से मोबाइल पर लगातार हम बातें कर रहे हैं। भाई इतना समय तो शायद मोबाइल को आए हुए भी नहीं हुआ, लेकिन इनकी दोस्ती बरकरार है, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय संजोग और स्थल के बदलाव से नए दोस्त तो बनने स्वाभाविक हैं और उनमें से कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। पर मैं पुराने और संयोगों के कारण छूटे पुराने दोस्तों को भूला नहीं हूँ। कल की मन में और कभी कभी सपनों में भी याद आते हैं। कुछ इस दुनिया से चले गए पर मेरे सपनों में तो कभी कभी आते जाते रहते हैं। ये आपका लगाव ही है अपने दोस्तों के साथ, जो आपको वो नजर आते रहते हैं। और इस तरह की दोस्ती तो बिल्कुल बनी रहे तो अच्छा है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कुछ बात, लेकिन ये बात हम आपको बताएंगे एक गीत के बाद। तो ये गीत हमने चुना है एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम आपको हमें बताना है, और ये भी बताइएगा कि इस गीत को लिखा किसने।

चलते चलते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत। हमारे साथियों ने कुछ जवाब दिया हो तो हम तक पहुंचा नहीं अब तक। हमारे एक साथी कह रहे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कॉकटेल, कॉकटेल 2, इन फिल्मों में मौज मस्ती, फ्रेंडशिप, लव सब कुछ है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती तो बड़ी अच्छी है और उनके जो गेट टुगेदर होते हैं उसके बारे में बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है कि 100 से 150 लोग मिलते हैं, 1978 का उनका बैच है और बड़ा ही आनंद उन्हें आता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संसार में यदि आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होती है, हर दुख सुख में वो बिना बुलाए हाजिर रहेगा, बस एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। लेकिन हमारे एक साथी का कहना है कि यारों के साथ दिमाग फ्रेश होता है और प्यार के साथ दिमाग का दही होता है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल आसानी से मित्रता हो गई मेरी सबसे अच्छी मित्र से, बस कक्षा में आते ही हम दोनों तुरंत ही बातें करने लगी, यूं तो आगे पीछे की सीट थी फिर भी दिन भर बातें करती थी, अगली कक्षा में हम दोनों एक ही सीट पर बैठने लगे, फिर हम अलग हो गए क्योंकि हम नए घर में आ गए। तो अब भी आपकी उनसे बातें होती हैं या नहीं ये हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज भी एक कॉलेज मित्र के यहाँ हम चार मित्र जा रहे हैं, वो उद्योगपति है और विश्वकर्मा पूजा पर हमें आमंत्रित किया है, तो यारी दोस्ती का मूल्य उत्तरार्ध में ही महसूस होता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि प्रेम सिर्फ इंसान से नहीं पशु पक्षी से करो, वो आपको दोगुना देंगे, यानी कि दोगुना प्रेम देंगे। हमारे एक और साथी कहने कि दोस्त कम बनाते हैं पर जिसे बना लेते हैं उसे कभी नहीं भूलते, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, बात सबसे करते हैं पर दोस्ती सबसे नहीं, पर जो दोस्त हैं वो बड़े ही प्यारे हैं, इतने कि अभी जब हमारे घर का काम चल रहा था तो उन्होंने कई बार हमारे लिए खाना भी बनाया और साथ आकर भी खाया। हम बहुत किस्मत वाले हैं जिसे परिवार के साथ इतने अच्छे और सच्चे दोस्त मिले हैं, और तो और स्कूल के भी कुछ दोस्त फिर से मिल गए हैं, पर हाँ बस दुख उस बात का है कि जिसका सबसे ज्यादा जरूरी वही साथ छोड़कर चले गए, ये तो खुद नहीं भगवान ने बुला लिया, शायद उन्हें कुछ अच्छे इंसानों की जरूरत होती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये भाई अब जीवन की रीत है यही हम कह सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं कितनी अच्छी बातें हैं। वही हमारे साथी ने जो अपनी दोस्त से पहली पहली मुलाकात याद की उस पर एक गीत आपको सुनवाते हैं, आपको बताना है कि इस गीत में संगीत किसका, फिल्म का नाम भी।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं, मैं कभी अकेली नहीं रह पाई, पैदा होने के बाद हमेशा बहुत बड़े परिवार में रही, माता पिता दोनों का परिवार बड़ा और संयुक्त था, शादी भी बड़े घर में हुई, 3 बच्चे उनके शादी के बाद परिवार, अकेले रहने का मौका ही नहीं मिला। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी तौबा तुम्हारे ये इशारे, इस गीत में से कौन सा शब्द इबारत में है कृपया बताएं। तो हम आपको बता दें कि तौबा शब्द ही हमने इबारत में शामिल किया हुआ है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अकेले हैं तो क्या गम है, ये गीत उन्होंने बताया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अकेले आए हैं तो अकेले जाएंगे तय है, मगर मोबाइल ने तो हमें अभी से अकेला कर दिया। वही हमने एक साथी को कहा था, जो वो कह रही थी कि 60 साल से वो बातें कर रही हैं फोन पर, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल पर बातें होती हैं, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल नहीं आया था, और उन्होंने कहा कि वे लैंडलाइन तो आ गया था। तो बिल्कुल सही बात, हम अपनी बात लेते हैं वापस, और अच्छा है आप अपने दोस्तों से इसी तरह से जुड़े रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए दोस्तों का जीवन में आना एक नई ताजगी और नए दृष्टिकोण लेकर आता है, लेकिन पुराने दोस्तों के साथ जो दिल का जुड़ाव होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नए रिश्ते जहां जिंदगी को नया रंग देते हैं, पुराने रिश्ते हमारी जड़ों और पहचान को संभाले रखते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि अगर सच्ची भावना तो कभी भी दोस्ती टूटती नहीं है न रिश्ते, तो इसलिए मन में कभी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे सारे दोस्त स्कूल कॉलेज के मोबाइल नहीं थे, इसलिए आज वो दोस्त गुम हैं। हजारों बार फोन फेसबुक पर तलाश करते पर निराशा हाथ लगती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में बिछड़े हुए दोस्त से मिलना यादगार होता है, ऐसा इनके साथ हुआ। 8वीं में सांची में थे, पिता का ट्रांसफर भोपाल हो गया, लेकिन 2025 में जब सांची गए तो कई दोस्तों को ढूंढने का प्रयास किया, उसमें से एक मिला और पुरानी बातें हुई, बड़ा आनंद आया। और अब आपको आनंद आएगा जब हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले जो हम आपको गीत सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम है गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्य कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म कब तक चुप रहूंगी से, और आवाज है मोहम्मद अजीज और साथियों की, समीर ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, 2:30 पर आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और भगवान विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से प्रधानमंत्री श्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में देश का मान विश्व पटल पर बढ़ता जा रहा है। इस खास मौके पर इंदौर में स्वामित्व योजना के तहत निःशुल्क रजिस्ट्री अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में एक

0: इसके बाद वे उज्जैन में रामघाट पर मां क्षिप्रा की आरती में शामिल होकर सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दिया प्रज्वलित करेंगे। श्री नवीन आज भजन संध्या में भी शामिल होंगे और कल महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने के बाद इंदौर से पंजाब के लिए रवाना होंगे। उज्जैन में आज से 3 दिवसीय युवा धर्म संसद 2026 अवंतिका शुरू होगी। देवास रोड स्थित गीता भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 24 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1600 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत करेंगे और वे इस दौरान युवाओं को संबोधित भी करेंगे। धर्म संसद में 3 दिनों के 8 सत्रों में धर्म, भारतीय संस्कृति, चरित्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व और समकालीन विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में करीब 300 विद्वान, शिक्षाविद, धर्माचार्य और विशेषज्ञ युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को समापन सत्र में शामिल होंगे। प्रदेश का बालाघाट जिला कभी नक्सली गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र रहा है। अब सुरक्षा अभियानों, आत्मसमर्पण और पुनर्वास के प्रयासों के बाद बालाघाट में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। अधिक जानकारी दे रहे हैं बालाघाट से हमारे संवाददाता।
1: स्टार्ट कर सके
2: आकाशवाणी समाचार के लिए बालाघाट से मैं। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, जो कभी नक्सली दहशत का केंद्र माना जाता था, अब शांति और सुरक्षा की नई इबारत लिख रहा है। वर्ष 1990 में शुरू हुए इस खूनी संघर्ष में 3 दशकों तक पुलिस और जनता ने भारी नुकसान झेला, लेकिन हाल ही के वर्षों में सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं ने नक्सलियों की कमर तोड़ कर रख दी और अब प्रदेश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा।
1: जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लाएंगे, तो उसके तहत एक बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पे काम हुआ। जो मध्य प्रदेश की रिहेबिलिटेशन, सरेंडर एंड रीइंटीग्रेशन नीति है, उसके तहत कई प्रावधान है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो भी आत्मसमर्पित नक्सली है उसको एक वित्तीय सहायता दी जाएगी। जितना भी उस पे इनाम है या 5 लाख रुपए, उसमें से जो भी अधिक वैल्यू होगा वो उसको दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने जीवन को फिर से स्टार्ट कर सके।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी।
0: और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कटनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में के जन्मदिवस पर सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और सतना में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित 7744 परिवारों के लिए प्रशासन ने 3,74,40,300 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: Responsible for September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।

0: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
0: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमीकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
0: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
1: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खावो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
0: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
3: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
4: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक

0: दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
1: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
2: Draining the swamp that provided an
3: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में पतिता फिल्म का गीत आपने सुना, शंकर जयकिशन का संगीत और बोल हसरत जयपुरी के। आज गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम उनकी कलम से निकले गीतों से सजा है। कार्यक्रम में मुकेश की हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।

0: बस के अच्छे छोटे भी है।
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की।

0: भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म।
1: शेखर, मेरे पास गर्मी फूल बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
2: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक में। हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर उनकी कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं।

हसरत जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में हावड़ा ब्रिज फिल्म के गीत में ओपी नैयर का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी की ये रचना मोहम्मद रफी की आवाज में, झुक गया आसमान फिल्म के गीत में संगीत शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: ठीक नहीं।
1: राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आज गीतकार हसरत जयपुरी की कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में चोरी चोरी फिल्म का ये गीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी की कलम, शंकर जयकिशन का संगीत।

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज पगला कहीं का फिल्म से ये गीत सुनिए, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत। इस गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारी सारी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार बिल्कुल, मतलब ये कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं,
2: हेल्दी और है, चाहती और हैं जी चाहते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, ये जो हमारे सखी सहेली का परिवार है और साथ में विविध भारती का परिवार, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छा खूब ध्यान रखे,
1: हेल्दी रहे। उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत थोड़े बहुत उपाय भी तो करना चाहिए
2: जी।
1: ये कहा जाता है कि रोग आए उससे पहले आप उसका इंतजाम कर लो ताकि आपको बीमारी ना आए, क्योंकि एक बार बीमारी लग जाती है तो आप ना हक दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, डॉक्टर के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए ये अपना एहतियात इस तरह से बरते कि आपके ऊपर रोग आक्रमण ही न कर पाए।
2: बिल्कुल, 5 मिनट का है से ही शुरुआत कर सकते हैं हम। ममता जी छोटे में बताते हैं कि 5 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। सैर कर लीजिए, घर से निकल जाइए बिल्कुल बाहर, और न संभव है तो घर में भी हम कदम ताल के तरफ तौर पर चल सकते हैं, हल्का फुल्का सा प्राणायाम भी कर सकते हैं। और आप देखिएगा, ये सच में ऐसा होता है कि 5 मिनट के लिए हम शुरुआत करते हैं और वो कब 15-20 मिनट में तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता।
1: और एक बार आदत पड़ जाती है ना कि एक्सरसाइज करना, अपना ख्याल रखना, तो फिर जब आपका ये सब छूटता है तो आपको लगता है कि हाँ कुछ छूटा हुआ है और आप उसे नियमित दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अगर छूट जाता है कई दिनों तक तो फिर छूटता चला जाता है, तो इसलिए लंबा गैप नहीं देना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है इसलिए हम आपका खास ख्याल रख रहे हैं और अपनी वो साझा कर सकते हैं।

0: ने लिखा है, सखी सहेली की महफिल सजी ममता जी और दीपा जी के साथ, ज्ञान संवेदना और मुस्कान लेकर बढ़ते जीवन के साथ। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का संदेश हमें समझाता है, हर रोगी की सुरक्षा और सम्मान सबसे पहले आता है।
1: क्या बात है भाई,
0: पद्मश्री रोशन कुमारी की कथक कला की सुंदर कहानी, नृत्य की हर थिरकन में बसी मेहनत और प्रतिभा पुरानी। सोशल मीडिया भी जीवन का अब अहम हिस्सा बन गया है, सोच समझकर व्यवहार करें, यही संदेश मन में रह गया है। त्योहार की खुशियां में पर्यावरण का भी रखें ध्यान, कम कचरा स्वस्थ वातावरण, यही हो उत्सव की पहचान।
1: क्या बात है भाई, इन्होंने तो
0: आखिरी में दो लाइन और बस कि ममता जी की बातों में अपनापन, दीपा जी की आवाज में मिठास, सखी सहेली यूं ही सजाते रहें हर दिन जीवन में खुशियों की आस।
1: क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस तुकबंदी के लिए और कविता के रूप में ढालने के लिए हमारे बताए गए विषयों को। और सबसे जो अहम मुद्दा है वो है सोशल मीडिया और हमारा व्यवहार कैसा हो। भाई सोशल मीडिया पर हम गाहे बगाहे चर्चा तो करते ही रहते हैं लेकिन फिर भी कम पड़ता है, लगता है कि इसके बारे में और क्या क्या बोल दें कि सोशल मीडिया को एक जरूरी तौर पर उसका उपयोग किया जाए,
0: वो ऐसा होता है ना
1: लत के रूप में
0: कि एक चैप्टर का रिवीजन कर लेना चाहिए बस, उस तरह की कुछ बात हो जाती है कि भाई दोबारा याद कर लें तो अच्छा रहता है।
1: तो सोशल मीडिया को का प्रकोप इतना ज्यादा ना हो कि वो कलह का कारण बन जाए घर में।

0: हैं हम, उसके बाद जिस तरह से जो दृश्य देखने मिलता है वो हम देख भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, हम अपने ही घर में थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो हर जगह समाज और देश का भला हो सकेगा।
1: बिल्कुल। और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत रोशन कुमारी जो कथक नृत्यांगना है इनके बारे में हम जानकारी देंगे। और अब सुनेंगे ये गाना श्रोताओं के साथ।

0: जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर प्रसन्नता हमेशा होती है, और जब प्रसन्नता रहती है मैडम तो ममता जी तो मन कहीं कुछ ऐसा थिरकने को लगता है ना, नहीं भी आता हो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को नृत्य करना है, लेकिन पैर की थिरकन एक अपने आप चल
1: थिरकने से कहा जाता है कि डांस एक स्ट्रेस बस्टर होता है
0: जी।
1: आपके बहुत सारे तनाव मन के घुल जाते हैं कहीं, तो अगर आपको नृत्य आता है किसी भी प्रकार का तो आप हमें लगता है कि बहुत खुशहाल प्राणी कहलाएंगे
0: जी,
1: क्योंकि जरा भी मन उदास होता है, दुखी होता है, तो आप नृत्य करने लगे, देखिए आप सब कुछ भूल जाते हैं,
0: बात बिल्कुल सही
1: या है। फिर गाना गाने लगे, तो संगीत में ताकत है, लेकिन नृत्य तो ऐसा

0: था। उनका परिवार कला से गहराई से जुड़ा था। पिता चौधरी फकीर मोहम्मद और वे थे प्रसिद्ध तबला और पखावज के वादक और उनकी माता जी थी जोहराबाई अंबाले वाली। 1940 का जो दशक था उस वक्त ये प्रसिद्ध शास्त्रीय और पार्श्व गायिका रही हैं।
1: और उनकी माँ चाहती थी कि वे एक गायिका बने, लेकिन रोशन का मन नृत्य में लगा रहता था तो वो अपने पिता के बेहद करीब थी। पिता पखावज बजाते और वो घंटों अपने पैरों में घुंघरू बांध कर रियाज करती। उन्होंने 5 बरस की उम्र से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था
0: जी। और जो शुरुआती नृत्य शिक्षा जो उन्होंने ली है वो ली है के एस मोरे जी से। 40-50 के दशक में फिल्मों में डांस डायरेक्टर थे वे। उनके प्रमुख गुरु सुंदर प्रसाद जी लखनऊ घराने के दिग्गज बिंदादीन महाराज के शिष्य थे। बाद में उन्होंने उस्ताद गुलाम हुसैन खान और गुरु हनुमान प्रसाद जी से जयपुर घराने की नृत्य की बारीकियां सीखी। गोविंद राज पिल्लई और महालिंगम पिल्लई से उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा। वो कभी स्कूल नहीं गई, घर पर ही ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई करती थी।
1: और उन्हें हमारे देश के और विदेश के नेताओं के सामने भी नृत्य प्रस्तुति का अवसर मिला। 1971 में उन्होंने मुंबई में नृत्य कला केंद्र की स्थापना की। इस नृत्य संस्था से उन्होंने अपने कई शिष्य तैयार किए। उनके प्रमुख शिष्याओं में मुक्ता जोशी, अदिति भागवत, नंदिता पुरी, अनुना गुहा, ये बहुत सारे नाम शामिल हैं
0: जी। और रोशन कुमारी ने फिल्मों में भी कथक को जीवित रखा। एक अभिनेत्री के रूप में बिमल रॉय की फिल्म परिणीता, फिर सोहराब मोदी की मिर्जा गालिब, बसंत बहार जो बंगाली फिल्म बनी थी उसमें, और सत्यजीत रे की जलसागर।
1: और उनके उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन और नृत्य कला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें बहुत सारे सम्मानित पुरस्कार से भी सम्मानित करवाया। 1963 में उन्हें मिला नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1977 में नृत्य विलास सम्मान उन्हें मिला, 1984 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, 2005 में अखिल भारतीय भूलिका पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया
0: जी। और रोशन कुमारी की नृत्य शैली की यह विशेषता थी कि इसमें जयपुर घराने की तेज लयकारी, चक्कर पखवाज की थाप के साथ भरतनाट्यम जैसे अभिनय की गहराई का संगम, ये दोनों दिखते हैं। उस दौर में उनका कृष्ण लीला पर नृत्य करना लोगों को अटपटा सा लगता था ममता जी, लेकिन उसके बावजूद तब उनके पिता ने हर रूढ़ी को तोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया।
1: और उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि कला में पहचान केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, प्रतिभा को साधना, अनुशासन और समर्पण से निखारना पड़ता है। जब घुंघरुओं की आवाज के साथ ताल मिलती है, जब एक कदम से लय जन्म लेती है और एक भाव पूरी कहानी कह देता है, तब समझ में आता है कि कथक सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की धड़कन है। तो ये थी कथक नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में जानकारी। हमारे बहुत सारे श्रोता भी टिप्पणी में कुछ लिख रहे हैं, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं जिसमें नृत्य का ही एक स्वरूप देखने को हमें मिलेगा, उसके बाद उनकी टिप्पणियां भी शामिल करते हैं
0: जी। बिल्कुल

0: दीपा जी, ये लेकिन फिल्म का गाना था आशा भोसले की आवाज में और बहुत ही खूबसूरती से हेमा मालिनी नृत्य करती नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में, जानकारी दी थी इस गाने से पहले और उन्हीं के बातचीत के बाद खास तौर से हमने ये गाना चुना था। और गुलजार साहब के बोल थे, सत्यशील देश पांडे का इसमें संगीत था और हेमा मालिनी ने ये नृत्य किया। और ये तो सभी को पता ही होगा कि हेमा मालिनी तो नृत्य में कितनी पारंगत हैं और कितने तरह के नृत्य उन्हें आते हैं और कुशलता से पर्दे पर वो दिखाती हैं और अलग से वो क्लासेस भी लेती रही हैं
1: जी।
0: और बहुत सारी जानकारियां उनके बारे में हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल
1: अब हम चलेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर। और एक बात और कहना चाहेंगे बस यहाँ पे कि अगर नृत्य करते रहेंगे तो हमें शायद इस तरह के रोग से मुक्ति बहुत बहुत हमें मिलती रहेगी। फिलहाल ये बात
0: क्योंकि एक तरह की एक्सरसाइज भी हो जाती है नृत्य से।
1: जी, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू एच ओ ने 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव के तहत शुरू किया था। इसका मुख्य सिद्धांत था फर्स्ट डू नो हार्म, यानी चिकित्सा का पहला नियम है कोई नुकसान न पहुंचाना। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में हर 10 में से एक मरीज को स्वास्थ्य सेवा के दौरान किसी न किसी तरीके का जो भी नुकसान होता है उसमें से लगभग 50% नुकसान को रोका जा सकता है। और इस दिन का उद्देश्य है कि रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सरकारों में डॉक्टर नर्सों और अस्पताल और मरीजों को एक साथ लाना और स्वास्थ्य प्रणाली में गलतियों को कम करना। इस साल यानी 2026 में इस दिन की थीम रखी गई है सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और स्लोगन दिया है सेफ केयर फॉर लाइफ, यानी जीवन भर के लिए सुरक्षित देखभाल। गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज या सांस फूलने वाले कोई पुराने रोग होते हैं, दुनिया में करीब 74% जो मृत्यु है इन्हीं बीमारियों से होती है।
0: WHO ने इस थीम को इसलिए भी चुना है क्योंकि मरीजों को सालों साल लगातार इलाज, दवाइयां और जांच की जरूरत पड़ती है और बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनमें नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे कि कई बार गलत निदान या फिर देर से निदान होना, इलाज करवाना और दवाइयों में कई बार चूक हो जाती है, अस्पताल में जो संक्रमण की संभावना होती है वो बढ़ जाती है, कई बीमारियां एक साथ होने से इलाज में दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं।
1: जी,
0: तो इस वर्ष आज के दिन के मुख्य लक्ष्य को रखा गया है कि मरीजों को सिर्फ मरीज नहीं बल्कि साझेदार बनाना है ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा में हिस्सा ले सकें। और सरकार भी स्वास्थ्य नीतियों में रोगी सुरक्षा के तहत शामिल किया है अपनी नीतियों को और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित निदान और सुरक्षित दवा उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है, ये आज इसका उद्देश्य है।
1: जी, और देश में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर ये भी जरूरी है कि डॉक्टर का पर्चा साफ साफ समझना सीखना चाहिए।

0: दवा का नाम, खुराक, एक्सपायरी ये सब देखना बिल्कुल ना भूलें और अपनी बीमारी का पूरा इतिहास डॉक्टर को बताना जरूरी है, तभी सही इलाज संभव है। और इलाज के बाद फॉलोअप को कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ममता जी सिर्फ डॉक्टरों का दिन नहीं है बल्कि ये सब हम सबका दिन है, क्योंकि सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली तभी बनेगी जब मरीज जागरूक होंगे और स्वास्थ्य कर्मी भी समर्थ होंगे।
1: बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और जोड़ना है कि फॉलोअप के लिए तो सजगता जरूरी है ही, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो पुराने प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, कई बार एक बार आपकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी और उसको आपने रख लिया, प्रिजर्व कर लिया अपने पास, और जब वापस मान लीजिए खांसी बुखार और ये सब सिम्टम हो रहा है, वही दवा आप रिपीट कर लेते हैं। जरा सोचिए कि साल भर पहले जो बीमारी जिस वजह से आपको फीवर बुखार आया था, जरूरी नहीं है कि इस बार भी वही कारण हो, कुछ और कारण हो सकता है। उसमें बहुत सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया और दुनिया भर की जो बीमारियां फैली हुई है, वो डेंगू जैसी बीमारी, तो पता चला वही दवा आप रिपीट कर रहे हैं, खा रहे हैं, बुखार की दवा खाए जा रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, डॉक्टर से संपर्क कर लें पहले। और फिलहाल हम ये गाना सुनवा दें,
0: चलिए सुनते हैं।

0: तो देखिए स्वास्थ्य का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे रामा रामा हम ये गीत के तौर पे गाएं तो ठीक है, ऐसा नहीं हो कि तबीयत के कारण या किसी और वजह से हम इस तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ये हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। दरअसल अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना बस इतना ही है कि हम तो यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से टहलना अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, नियमित रूप से कसरत को शामिल कर लीजिए, और राजनीति की बातें की थोड़ा बहुत मूवमेंट, कुछ आजकल तो इस तरह की एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं जिसमें नृत्य की भावभंगिमाएं शामिल हैं, जिसमें पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ की, पैर की, आंखों की और चेहरे की, बाकायदा ट्रेनर आपको सिखा देते हैं। और एक नया चलन ये भी चला है, हालांकि ये पुराना है लेकिन आजकल ज्यादा चलन में वो है कि जिम जाना नियमित रूप से। तो आप जिम जाके भी अपने को फिट फट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल हम एक संदेश सुनवा रहे हैं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गड्डी ले,
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और दीपा जी, कहाँ सोशल मीडिया में उलझी हुई है ना?
1: सोशल मीडिया में उलझे नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं हमारे सभी श्रोताओं के संदेश।
0: तो ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इसे में मिलता है सब।
1: देखिए, हर चीज के लिए ममता जी ये बुरा नहीं है, कुछ कुछ काम की बातें भी तो होती है ना। देखिए, और अपने जो श्रोताओं से है ये जुड़ने का, बिल्कुल जो सखी सहेली के वक्त जुड़ने का, एकदम उस वक्त लगता है कि हम फोन न हटाएं, अपने पास रखें, ज्यादा से ज्यादा संदेश हम तक।
0: सोशल मीडिया वाले ज्ञान के कौन कौन से मोती हैं जरा देख लेते हैं हम भी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, ये हमें लोगों से जोड़ने और विचारों के आदान प्रदान का अवसर देता है, लेकिन इसके कारण हमारे व्यवहार में भी बदलाव आया है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग संयम, शिष्टाचार और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी, अफवाह या गलत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। सही संतुलन के साथ सोशल मीडिया हमारे ज्ञान, संवाद और सकारात्मक सोच का माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखिए कि बदला तो है, दिनचर्या देखिए बदली तो है, कि हमारी सुबह केवल सूरज की पहली किरण के साथ नहीं होती, हम मोबाइल की स्क्रीन से भी होती है। और आंख खुलते ही फोन देखना, संदेश पढ़ना, सोशल मीडिया पे आए नए पोस्ट देखना और फिर दिन भर थोड़ी देर में फोन की तरफ लौटना, जैसे हमारी ये जिंदगी की रोजमर्रा की आदत नहीं बन गई, आपको नहीं लगता ममता जी?
0: बिल्कुल लगता है। एक और बदलाव हमारे व्यवहार में आ चुका है कि किसी ने अपनी पोस्ट डाली है तो ये देखना कि वो लाइक मिले कि नहीं, कमेंट लिखे कि नहीं लिखे। आमने सामने शायद हम जिस बात को बड़ी ही शालीनता से कहें, वही स्क्रीन के पीछे बैठकर बहुत ही कठोर शब्दों में कह जाते हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हम जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हैं तो कई बार बहुत सरलता से कोई बात लिखी जाती है, लेकिन पता चलता है कि उस बात का गलत मतलब निकाल लिया गया
1: और फिर उस पर बड़ी लंबी सी बातचीत होने लग जाती है। कोई एक सोशल मीडिया का फ्रेंड कुछ एक बात लिखता है, उस पर फिर जवाब आते हैं और वो बात बहुत लंबे आगे तक खींच के चली जाती है। लेकिन पहले देखिए ये है कि क्या हम सोशल मीडिया पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों, ये धीरे धीरे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगा है?
0: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि हम फोन उठाते हैं, सोचते हैं कि बस 5 मिनट फोन देखेंगे। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी ओर से बोल रही हूँ।
1: चलिए किसी के भी ओर से हो भाई, एक बात उठना चाहिए।
0: हम तो श्रोताओं की ओर से भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि सभी की ये लत है कि फोन उठाया और एक वीडियो देखा, एक फोटो देखा, उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और अगर मोबाइल की गैलरी में चले गए तब तो तस्वीरें, तस्वीरों से जुड़ी हुई बातें, जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो 5 मिनट कब आधे घंटे में तब्दील हो गया।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हम ख्याल रखते हैं क्योंकि हमें तो बिल्कुल समय के हिसाब से चलना होता है और समय का मिलान करते हैं हमारे श्रोता। लेकिन श्रोता बताएं कि वो कितना ख्याल रखते हैं, क्या वो कभी ऐसा करते हैं कि 5 मिनट के लिए बैठे और आधे घंटे बीत गए और कहीं जाना था और बैठे रह गए कि पता चला घर में बहन, पत्नी या माँ ने कहा कि जरा सब्जी दूध ले आना और आप मोबाइल के स्क्रीन पे ही बैठे रह गए। या फिर उल्टा भी कर लीजिए इसको कि पति ने पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा या कोई और काम आपस में बंटवारा हुआ कि हम ये करना और बैठे रह गए। तो ये कोई एक वर्ग नहीं है, ये बच्चे, बुजुर्ग, घर में पति, पत्नी, भाई बहन, सब लोग इसी में लगे हुए हैं,
1: सब शामिल हैं। और देखिए ना, ये चमकती सी जो दुनिया है इसमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसको भी जवाब दे दे, हम इन्हें भी जवाब दे दे, अरे हमारे इस मित्र का ये संदेश आया था हम उसे भी जवाब दे दे, या हमने जो डाला था पोस्ट उस पे कितने लाइक्स आए वो देख लें, और अब बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए हैं तो उसका जवाब अभी के अभी देना बहुत जरूरी है, फिर झगड़े हो जाते हैं।
0: और अभी आप जब सोशल मीडिया पे देख रही थी संदेश, तो मैंने 2-3 बार आपको आवाज दी यहीं बैठे बैठे, तो आप डूबी हुई थी, लेकिन ठीक है, वो अच्छी बात है कि श्रोताओं की टिप्पणियों में आप डूबी हुई थी।
1: जी बिल्कुल, उसमें डूबे हुए थे।
0: कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सोशल मीडिया में आप उलझ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है उसमें बहुत कुछ है, आपके मोबाइल के यंत्र में, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बहुत कुछ है, जानकारियां भी बहुत सारी है, किताबें हैं, बहुत सारे पन्ने हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, कहानी कविताएं भी पढ़ सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन सिर्फ बैठ के एक दूसरे को जवाब देते रहे, चैट करते रहे, हंसते रहे, इमोजी भेजते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। कई बार आप ऐसा होता है कि कोई जरूरी काम भूल जाते हैं। आपको बताऊं दीपा
1: जी
0: कि अभी कल ही एक जो फिल्म है हनुमान अंश, उसके उस फिल्म के डायरेक्टर आए थे और विशाल चतुर्वेदी
1: जी।
0: तो उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि वो कागज और कलम से लिखते हैं, तो मैंने ये सवाल पूछा कि आज डिजिटल युग में आप कागज कलम से ये इतनी बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डाली, ऐसा उनके बारे में सुना था
1: जी।
0: तो उन्होंने बताया कि दरअसल हुआ ये कि मोबाइल साथ में रहता था और कंप्यूटर साथ में है, तो कितना भी हम मोबाइल को म्यूट कर लें लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे स्क्रीन पर कुछ न कुछ चमक

0: रहता है, कोई ना कोई संदेश भी लगता है कि ये जरूरी तो नहीं होगा, मोबाइल उठा के देखते रहना। तो मैंने क्या किया, मतलब ये उन्होंने कहा विशाल जी ने कि मैंने क्या किया कि मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, बंद करके पैक करके रख दिया। और एक हमारा हमारे स्टूडियो में गुफानुमा एक बना हुआ है कमरा जैसा, वहां पे मैं चला गया और कागज कलम लेके, तो 15 दिन तक मैं स्क्रिप्ट लिखता रहा और 15 दिन तक मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, मतलब मोबाइल से
1: जी।
0: तो ये बड़ी अचरज की बात है, आज के युग में आप 15 दिन तक, लोग 15 घंटे नहीं रह सकते, मुझे तो लगता है 15 मिनट भी नहीं रह सकते बिना मोबाइल के।
1: बिल्कुल। और आज के युग में अगर 15 दिन तक कोई दिखे नहीं, अगर कोई जैसे ये मीडिया से जुड़े कोई व्यक्तित्व है, अगर वो ना दिखाई दे और कुछ जवाब ना दे या कुछ प्रतिक्रिया ना दे, तो ऐसा लगता है इन्हें क्या हो गया या क्या बात है भाई, या तो ऐसा लगने लग जाता है अहंकार तो नहीं आ गया, या यूं लगता है हमसे नाराजगी तो नहीं है, और फिर वो पर्सनल मैसेज पे जाकर ऐसा क्यों ऐसा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कई बार कुछ अच्छी सी पोस्ट लिखते हैं ना, तो या उन्हें लगता है कि हमने बहुत अच्छी सी बात लिखी है, तो
0: जवाब नहीं दिया
1: मैसेज पर्सनल डालते हैं कि जवाब नहीं दिया, उस पे जवाब दो। देखो हमें ना कोई फला, मतलब किसी तीसरे को हमें कुछ ये बताना है या सुनाना है, इसलिए तुम यहाँ पर जवाब दो, तो इस तरह की भी बातें होने लग जाती।
0: और तो और फेसबुक पर और इंस्टा पर कुछ लोग पोस्ट डालते हैं और टैग कर देते हैं, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर पर्सनल मैसेज भेजते हैं, कह रहे मैंने तो ये लिखा, अच्छा उसका फिर लिंक भेजते हैं, लिंक पर भी आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर मैसेज करते हैं, मैसेज भी नहीं देखा तो फोन करते हैं, कह रहे मैंने ये पोस्ट डाली थी आपने तो देखी ही नहीं।
1: तो इस तरह के व्यवहारों में हम बहुत सारे अंतर देखते हैं। अभी हम क्या देखें या सुने,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: मोरे ताल मिले नदी के जल में, अब आजकल तो शब्द मिले भाषा, भाषा मिले जाके मोबाइल के स्क्रीन पर, ये हाल हो रहा है। और हम बात कर रहे थे यही
1: जी,
0: मतलब सोशल मीडिया,
1: सोशल मीडिया तो ये इस्तेमाल करने के वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ममता जी। जैसे कि दूसरी तरफ भी एक इंसान ही बैठा हुआ है, तो उसकी भावनाएं और उसकी संवेदनाएं भी हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, या उन्होंने क्या किस तात्पर्य में ये बात कही है, ये भी हमें समझ के ही अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे देनी चाहिए।
0: दीपा जी, हम अभी तक तो सोशल मीडिया की नकारात्मक बातें ही कर रहे थे, कुछ इसके सकारात्मक पहलू भी हैं
1: जी।
0: कि एक समय था जब ये माध्यम नहीं था, तो बहुत सारी जानकारियों से हम अनभिज्ञ रह जाते थे, पता नहीं होता था। जैसे किसी फिल्म की चर्चा सिर्फ अखबार में हम पढ़ पाते थे। एक समय तो ऐसा था कि रिक्शे पर, आपको याद होगा, वो भोपू लगा के प्रचार होता था रिक्शे पर बैठ के, फिर अखबार में आने लगा, तो हम अखबार के पन्ने पे ढूंढते थे कि कौन सी फिल्म लगी है कहाँ पर, किस टॉकीज में
1: जी।
0: फिर अब इतना आसान हो गया है कि आपको फिल्मों की जानकारी मिल जाती है, थिएटर नाटकों की जानकारी मिल जाती है, किताबें जो आती हैं, हम पहले किताबें सिर्फ नाम से ही जानते थे कि फला साहित्यकार, फला लेखक कवि, उनकी कोई किताब आई है, तो जब हम प्रकाशक से जुड़े होते थे तो हम वो किताबें मंगवा लेते थे
1: जी।
0: तो या फिर अखबार या पत्रिकाओं में उनका नाम, मतलब जो नए लेखक, उभरते हुए लेखक होते थे अनजान, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। अब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम नवोदित कवियों को, नवोदित लेखकों को जान पाते हैं, उनकी किताबों की जानकारी मिलती है और उनकी किताबों की चर्चा होती है
1: जी।
0: और ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है जहां पर किताबों के बारे में चर्चा हो जाती है, फिल्मों के बारे में लोग चर्चाएं कर लेते हैं, और बहुत सारे माध्यम, विज्ञान है, मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती है, लेकिन उसके एवज में इतना सारा वक्त खा लेता है सोशल मीडिया, वो बहुत दुखद है।
1: वो हमें हमेशा एक अपने आप पर ही, ये यूं कहना चाहिए कि थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण चाहिए कि हमें कितनी देर बैठना है। अगर या तो समय हम इसके करने कि हाँ भाई आज हम आधा घंटा का वक्त है, या एक घंटे का वक्त है, या दोपहर में आराम का वक्त है खासतौर पे महिलाओं के लिए, या जब सारे घर का काम हो जाता है, या आपका दफ्तर से अगर लौट रहे हैं या व्यापार से वापस आ रहे हैं, तो चलिए ठीक है, आपने थोड़ी सी देर आधा घंटा देख लिया वहां तक ठीक है, लेकिन हम उसी में डूबे रहे ऐसा ना हो। ज्ञान भी बेशक ये अच्छी बात है कि आज हमारे हाथों में ही है, हम चाहे जितना ज्ञान बटोर सकते हैं और चाहे तो वो कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर रहता है।
0: गानों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है इंस्टाग्राम पर, जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है इंस्टाग्राम पर रीलें बनने लगती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो बहुत सारे गाने, नए गाने हम नहीं जान पाते हैं, तो वो देख के भी पता चल जाता
1: जी,
0: है। एक तो माध्यम है रेडियो और विविध भारती से तो हर तरह के गाने प्रसारित ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया से भी मिल जाती है
1: जी। ये एक संदेश आया है ममता जी, कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार हमेशा सोशल मीडिया पर शिष्ट, जिम्मेदार और सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी खबर या पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि हम गलत जानकारी ना फैला सकें। और साथ में ये भी लिखते हैं कि हमेशा ये अपमानजनक बात या कुछ ऐसी पोस्ट जिसमें एक घृणा बढ़े, इस तरह की बात बिल्कुल ना करें, या किसी की व्यक्तिगत जानकारी, तस्वीरें या वीडियो उसके अनुमति के बिना हमें साझा नहीं करनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से भी बचना चाहिए, और इसे अपने वास्तविक जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
0: बिल्कुल, कई बार लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं और किसी की तस्वीर लेकर अपनी प्रोफाइल पे लगा लेते
1: हैं,
0: तो आप देखो तो पता चलता है कि, और उसे जब भी कोई संदेश कहीं भेजा तो पता चला कि तस्वीर तो आपकी है और वो व्यक्ति कोई अनजान है
1: जी।
0: तो ये भी गलत है, ये सब गलत आदतें हैं और इनसे बचना चाहिए। और जिंदगी उन पलों का नाम नहीं जिन्हें हम सिर्फ कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिंदगी तो उन पलों का भी नाम है जिन्हें हम बिना कैमरे के, बिना पोस्ट किए, बिना लाइक किए, उम्मीद के जीते रहते हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि आपके घर की हर बात सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाए, कुछ बातें निजी भी रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक संदेश ये कह रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया आज के युग में कई फायदे हमें दे रहा है, जैसे इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजनेस हो या प्रसारण, परंतु कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि हर अच्छी चीज को बुराई में परिवर्तित कर देते हैं, ये उन्हें गलत लगता है। एक और संदेश ये कहता है कि सोशल मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक मंच, इस मंच का उपयोग करते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जो हर वक्त एक उपभोक्ता की फर्ज बनता है कि इस मंच पर ऐसी कोई पोस्ट न डालें जो समाज के लिए हानिकारक हो। 100 बार सोच विचार कर सत्यता की जांच के बाद ही हमें पोस्ट करना चाहिए।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि बस थोड़ा देखते हैं और इतनी देर तक उसमें सोशल मीडिया में खो जाते हैं, पर लाइक नहीं देखते, बस कुछ अच्छी बातें ही देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर सोशल मीडिया के साथ तो उसकी व्यवहार कुशलता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ हम अपने हिडन आई की निगाह में काम कर रहे होते हैं, जिसे हम नहीं जानते। यही नहीं बल्कि हमारा व्यवहार भी छुप जाता है कि हम क्या कर रहे हैं।
1: एक चीज और थी जो कि हमें अब जरूर बात करनी चाहिए, जैसे हम लिख देते हैं सोशल मीडिया पर कि जो इंग्लिश में लिखा जा लिख दिया जाता है ना, गोइंग फॉर अ वेकेशन, और हम उसमें तारीखें भी डाल देते हैं ममता जी कि हम इतने दिन से इतने दिन तक कहीं हम बाहर जा रहे हैं। अब अगर किसी का ध्येय ही कुछ अलग है, गलत है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप इतने तारीख से इतने तारीख तक घर में नहीं है, तो शायद आपके अनुपस्थिति का वो फायदा
0: सुरक्षा की दृष्टि
1: और सुरक्षा की दृष्टि से
0: ठीक नहीं है।
1: ये ठीक नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने तारीख को जा रहे हैं, इस तरह की बात हमें कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर हम रोज न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ बिल्कुल अनजान। हमारी एक छोटी सी टिप्पणी, एक प्यारा सा शब्द, किसी का हौसला बढ़ाती बात उसके दिन को खूबसूरत बना सकती है। इसलिए यहाँ भी कोशिश करें कि हमारे शब्दों में सम्मान हो, बातों में मिठास हो और दिल में किसी के लिए बुरे भाव ना हो। बिल्कुल सही बात है कि ये जरूर है कि कोई उदास है, दुखी है, तो आपकी एक टिप्पणी, आपका एक संदेश उसके दिल को, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होठों पर ला सकता है।
1: जी। और एक हमारी सखी लिख रही हैं कि ये वरदान तो बन सकता है, लेकिन इसका जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल शायद हमें ये मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी के हिसाब से भारी हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी। और अब एक सुनते हैं गाना।
1: जी।

0: देखिए त्योहारों का जो वक्त ये चल रहा है इन दिनों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। और ये लोगों ने कई सारे संदेश भी भेजे हैं ममता जी, ये पहला संदेश कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आजकल गणेश उत्सव हर गांव हर शहर में मनाया जा रहा है। गणेश जी की मूर्ति पीओपी के बजाय मिट्टी से बननी चाहिए। विसर्जन के वक्त नदी तालाब जैसे खुले जल स्रोत की बजाय घर के बनाए कृत्रिम कुंड या टंकी में करें। होली के दिनों में रासायनिक रंगों की बजाय प्राकृतिक हर्बल रंगों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिवाली पर बहुत प्रदूषण वाले फैलाने वाले फटाके से बचना चाहिए। रोशनी के लिए तेल के दिए या मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने ये बात लिखी है कि हम में से कितनों को ध्यान रहता है कि पूजा पंडाल में मिलने वाला प्लास्टिक की प्लेट में प्रसाद हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है। एक एक प्लेट करके कितने लाख प्लेट हो जाते हैं, इसका अंदाजा लगाया है किसी ने? होली के एक दिन पहले पेड़ों को काटकर अग्निदाह करना कितना उचित है? गणेश जी के आगमन के बाद और दुर्गा उत्सव में कितने पंडाल में मिट्टी की मूर्ति बैठी है, इसका तो अनुमान लगाना ही बहुत कठिन है। काश इंसान सोच पाते, जब एक पेड़ कटता है तब सिर्फ एक लकड़ी का लट्ठा नहीं गिरता, तब छिन जाता है पक्षियों से उनके घोंसले और हरे पत्ते की ताजगी भी। कहा जाता है कि हमें तो याद है कि बचपन में नानी दादी कहती थी कि जो पेड़ कटता है तो पेड़ कटते वक्त छाल से जो लिक्विड निकलता है ना, रसायन निकलता है, जिसको कि बचपन में इसी नानी दादी यही भाषा बोलती थी, वो देखो दूध निकल रहा है, ये दूध नहीं उसके आंसू हैं, पेड़ के आंसू
0: जी।
1: तो ये अब कहां तक ये ठीक है, एक मिथ के रूप में हम मानते हैं जो भी वैज्ञानिक कारण है, लेकिन पेड़ को जब काटते हुए हम देखते हैं तो सचमुच बहुत तकलीफ होती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और एक और ये संदेश कहता है कि हमें पटाखों प्लास्टिक और अत्यधिक कचरे से बचते हुए प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने चाहिए। स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए त्योहारों को पर्यावरण से रक्षित इस तरह से बनाया जाए और हमारी खुशियों को और सार्थक इसी तरह से बन सकते हैं। एक और संदेश ये कह रहा है कि आजकल घरों पंडालों में प्लास्टिक के फूल और तरह तरह के सजावट के सामानों से अपने घर की और पूजा पंडालों की सजावट हम करते हैं और यह कचरा पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा है कि सजावट भी आप प्राकृतिक फूलों से करें, प्राकृतिक चीजों से करें, जैसे कि आम के या अशोक के पत्ते, प्राकृतिक बंधनवार, वो ही उसका ही इस्तेमाल करें। और लाइटों की जगह छोटी छोटी मोमबत्तियां और दियो से हम घर को सजा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और जो पूजा सामग्री होती है, फूल माला जैसी जैविक सामग्री से खाद बनाई जा सकती है और बाकी सामग्री को अलग करके उचित तरीके से उसे निस्तारित कर लें। त्योहारों में जो कचरा होता है उसे कम करें और खुशी का मंत्र ज्यादा अपनाएं, तो ये आपके लिए त्योहार उत्सव बना रहेगा, वरना फिर आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको दुख देने लगेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: और अब बोलिए कि हमारे श्रोताओं को क्या खुशी दे सकता है
0: एक गीत। बिल्कुल।

0: ममता जी देखिए, सोशल मीडिया का एक फायदा भी है, हम यहाँ पर बातें करते हैं और तुरंत हमारे जो श्रोता हैं
1: प्रतिक्रिया
0: देते हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, हमें भी पेड़ों को काटना बहुत

0: प्रियंका नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आज पहले नंबर पर हमारे कौन श्रोता हैं जो बात करना चाह रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने आज गणेशोत्सव पर बात की है, कुछ श्रोताओं ने अभियंता दिवस के बारे में अपनी जानकारी दी है, अपनी बात साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का। ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, बुल्ढाना महाराष्ट्र का।
0: जी बताइए दीपक जी, अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए। और बुल्ढाना कहाँ पर महाराष्ट्र के किस इलाके में पड़ता है?
1: जी बुल्ढाना विदर्भ में पड़ता है मैडम, अकोला बुल्ढाना जालना जिला के बाजू में।
0: जी जी, तो अपने उस गांव की कुछ खासियत बताइए ना।
1: जी हमारा खेड़ा गांव है मैडम, छोटा सा, खेती किसानी करते हैं हम। साल किसान के बहुत हाल चल रहे, बारिश नहीं, इधर फसल आने के पहले बारिश गई है।
0: ओ, बारिश नहीं हो रही है और बहुत जगह पे तो बहुत ज्यादा असंतुलित बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है।
1: जी हमारे इधर नहीं मैडम, बारिश फसल नुकसान में इस साल।
0: ओ, तो कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ?
1: या सोयाबीन होती है, मक्का, कपास होती है।
0: ओ, तो सबके लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है ना?
1: सबके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, साल पानी बहुत कम गिरा।
0: जी जी,
1: इस साल परेशान है बहुत हम किसान।
0: हम शुभकामनाएं कर सकते हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपके तरफ क्या पूरे देश में संतुलित बारिश हो जाए ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचे। और क्या करते हैं फिर, खेती किसानी करते हैं, तो अभी बाग वाग भी है आपके यहाँ?
1: नहीं, बाग नहीं लगाते मैडम, हम यही पारंपरिक पीक लगाते हैं, सोयाबीन, कपास।
0: अच्छा,
1: बाद में गेहूं हरभरा लगाते हैं।
0: जी जी, तो वैसे हर साल कैसे पैदावार होती है? हर साल अच्छी पैदावार हो जाती है?
1: दो दो फसल आ जाती है हर साल, जो भी आता है वो पहले सोयाबीन भी आती है।
0: जी जी,
1: 19 से अच्छी बारिश रही इस साल तक।
0: तो बारिश अगर नहीं हुई है तो ट्यूबवेल वगैरह जो आधुनिक तकनीक है उससे पानी की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो है वो सब तकनीक आपका?
1: ट्यूबवेल है मैडम, कुएं भी है हमारी तरफ, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसमें पानी आ रहा है।
0: बिल्कुल, उतना इफरात में पानी तो नहीं मिल पाएगा।
1: हमसे बढ़कर देवा गणपति देवा।
0: जी जी, तो महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की बड़ी धूम होती है, तो आपके घर में भी गणपति आते हैं या आपके घर के आसपास?
1: आते।
0: अच्छा,
1: नहीं आते, हमारे गांव में घर पर तो होता है गणपति, हर एक घर में होता है।
0: और इसी के बहाने लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल, बिल्कुल
0: जी। तो चलिए फिर, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूँ मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था आज।
1: नहीं, और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी जी जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने अभी गेहूं, मक्का और सोयाबीन लगा है और धान भी लगाई हुई है।
0: तो फसल अच्छी है?
1: जी जी बढ़िया है मैम, अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
0: जी जी, तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोकनगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल दीजिए।
1: हमारे अशोकनगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है, जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में मैम 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
1: ठीक है मैम, वो मेले तो बहुत लगते हैं, लेकिन जो राय नृत्य का मेला होता है ना, वो हमारे अशोकनगर में लगता है, जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बढ़ एक लगते हैं, लेकिन जो राय नृत्य के लिए जाना जाता है ना, वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोकनगर एमपी में ही लगता है।
0: जी जी, तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल जोल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं?
1: हाँ जी मैम, हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं, लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेन जो अपन पूड़ी निकालते हैं ना, कढ़ाई होती है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है हमें।
0: अच्छा ओके, और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा, और क्या क्या चीजें मिलती हैं? भाई हमारे जो बचपन का मेला था ना, उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे, और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, जिसको गुलाबी रंग का होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे। तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
1: मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो किसी को टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है।
0: तो टिक्की चाट
1: बचपन किया था।
0: हाँ, टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को भी खिलाते हैं?
1: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलकर एक साथ में खाते हैं, तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है मैम। ऐसे जब साथ में खाते हैं ना, तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
0: जी जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है, परभनी से। सतीश सागर मेरा नाम है और दोस्त का नाम पांडुरंग मोरे।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है लावारिस।
0: जी जी,
2: तो ऐसे वैसे।
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी। अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए। कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच
1: हमारी
0: पटपट नहीं होती है?
1: हमारी पक्की है।
0: पक्की है?
1: हाँ।
0: अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
1: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा,
2: ये भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
0: जी जी, अच्छा।
2: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
0: जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें फोन
2: किया। पापा की शुभकामनाएं आपको, सबको, जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
0: जी जी, आपको भी।
2: विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते हैं।
0: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपने भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए, है ना?
2: ये बारिश तो नहीं गई गई लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, गणपति के साथ में ले जाओ मत, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
0: जी जी बिल्कुल, और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: धन्यवाद धन्यवाद।

0: लगाना पड़ता है मैडम जी। आज जब से दोबारा हैदर में स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
1: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
0: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
1: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
0: सेंट्रल कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा गांव सूफी शायर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और अच्छी बात है कि ये सेंटर कश्मीर श्रीनगर से मुलाल चौक जो हमारे कैपिटल है वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर है।
1: जी,
0: और
1: अच्छा।
0: बड़गाम इस बड़गाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बड़े बड़े गांव है, इसलिए इसका नाम बड़गाम रखा था।
1: अच्छा, क्या बात है भाई। तो वहाँ पहाड़ों के बारे में बताइए, कैसी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वगैरह गिरती है क्या?
0: बिल्कुल गिरती है। जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ, दूध पथरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहते हैं। जंगल के किनारे है, बड़े बड़े पहाड़ है और बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
1: जी जी, आप क्या करते हैं वहाँ पर?
0: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट वेंट लगाते हैं, सीपी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में 2-4 शॉप है हमारे पास, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं इस बात के लिए।
0: क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बचपन के शौक है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
0: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं होते, लेकिन आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया तो बहुत अच्छा, इसमें हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि जो आजकल जो नशीली दवा होते हैं, ड्रग्स वग्स होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं।
1: जी, और दूसरी बात ये कि यहाँ आपके इलाके में तो खुली वादियां हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी?
0: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
1: तो कभी बर्फ गिरी हो और आप क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
0: बचपन में हमने खेला है, तो 2-4 बार हमने खेला है।
1: बारिश हो रही है,
0: बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया, यहाँ बर्फ जमती है, बहुत ज्यादा जमती है, और उस पर पिच लगाना बहुत आसान होते हैं। फिर हम टेनिस बॉल उससे सबसे ज्यादा खेलते हैं उस बर्फ पे। बस उसमें क्या करते हैं, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते हैं और एक दूसरे पर
1: फेंकते
0: हैं, बहुत ज्यादा होती है।
1: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं। जो टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ का गोले बना के एक दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, मैंने देखा है 2-4 बार।
1: और अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी ये किया जाता है, खेले जाए ना खेले लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, गाने के बोले पंची स्वर में गाते हैं, बावरे गुनगुनाते हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैडम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नहीं है, मैं देखिए मैं सेंटर कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सुनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सुनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए आप जहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैम, यहाँ तो मतलब अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
0: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
1: हाँ हाँ, मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, इसको प्रोसेस रहता है मैम चाय पत्ती बनाने का।
0: जी जी,
1: उसमें मशीनें डाला जाता है।
0: हाँ,
1: फिर इसके बाद इसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बन के रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है,
0: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं। और
1: जी जी मैम,
0: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
1: यहाँ तो बिहू। हाँ मैम, बिहू यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
0: जी, तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
1: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
0: जी जी, तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन आज कॉल लगा है तो बहुत खुशी हो रही है।
0: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना। चोरी

0: हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं वहाँ पर? क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है, तो
1: जी, अच्छा
0: पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहां के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते
1: अच्छा
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं,
1: जी,
0: लेकिन
1: तो
0: आनंद भी बहुत आता है। जी
1: छाया दिखती होगी और वो जो एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है लेकिन पता चला कि
0: जी
1: वहां
0: जी
1: से एक रास्ता खुल जाता है। तो जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं।
0: जी
1: एक वहां सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहां से
0: बहुत
1: जंगल?
0: दूर है हमारे यहाँ से। हाँ
1: अच्छा, सतपुड़ा के घने
0: जी
1: जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है जो बिल्कुल
0: जी
1: वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। याद है आपको ये
0: जी
1: कविता?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
1: आगे की पंक्तियां कुछ
0: जी
1: याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के? झाड़
0: नहीं
1: ऊंचे,
0: वैसे तो याद
1: इस
0: नहीं
1: तरह से
0: होगी।
1: कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख भींचे, घास चुप है, काश
0: जी
1: चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो
0: बिल्कुल
1: मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में
0: बिल्कुल
1: बताना
0: बिल्कुल
1: चाहिए, जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर, जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना? एक बात और कहनी थी कि ये जो जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए
0: हाँ
1: रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए जंगल तो हमारे राष्ट्रीय संपत्ति है और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप
0: बिल्कुल
1: दादा ने
0: बिल्कुल
1: जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए हैं, बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं। नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, है ना?
0: बचपन बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे
1: जी
0: और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं लगभग 20 से 25 साल के।
1: जी बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहें तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
0: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
1: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहां पर?
0: अभी तो धान बहुत आयत है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
1: बिल्कुल। और वहां के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट
0: जी जी
1: और मिठास होती है उनमें। कौन कौन
0: जी
1: से चावल पैदा होते हैं?
0: बासमती ये जो मिठास की अब बात की है वो है और हमारे इलाके में सरना और महमाया ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
1: जी, तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
0: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
1: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप
1: जी
0: कौन बोल
1: बहुत,
0: रही।
1: मैं नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: जी बताइए
1: और
0: नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी
1: विविध
0: जी
1: भारती में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए, आप छतरपुर से बोल रही ना?
1: जी जी जी जी छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से,
0: जी
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है। और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा? आप चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे?
1: जी हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
0: जी जी,
1: श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: जी जी,
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहें, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
0: नेहा जी हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे? कुछ
1: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है। इसी तरह से तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
0: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है? मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
1: जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देने शुरू की थी, तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी, जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है, और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
0: जी बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: जी मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
0: क्या बात है,
1: थिंकिंग इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी, बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दशाश्वमेध घाट पर हमारे कनमदे आरती कनमदे होता है 7 बजे से।
0: हाँ
1: ओ आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और देखने के लिए तो हम लोग जगह करते हैं मैम, और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
0: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं। आपने देखा है कभी?
1: जी नहीं कन्नम ने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात नहीं है समय से। तो
0: हाँ
1: सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं, जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए, और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर त्यौहार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गए, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
0: सही बात है। बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है। अब हम ही सब बता देंगे, आपो कुछ बताएंगे।
1: जी बनारस के तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी जी, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
0: और वहां की गलियां पतली पतली सकरी सकरी गलियां।
1: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां हैं, जैसे कि कचौड़ी गली में है, और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोआ मंडी में जैसे एक अजीब सा महक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया,
0: अच्छा
1: चलो
0: कचौड़ी
1: कचौड़ी।
0: गली का नाम लिए, सुनिए कचौड़ी गली का नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
1: मैडम
0: हाँ
1: जी जी जी
0: याद है
1: जी
0: तो सुनाइए जरा।
1: जी नहीं हम गा सकते,
0: नहीं गा सकते?
1: नहीं, गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि गाना आ गया है तो हमने सुना नहीं है दीदी, देखिए बात जो हकीकत है
0: हाँ
1: तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये है का नाम है, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली, हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाऊ जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कर कचौड़ी हुआ मशहूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनमरे जय संकट मोचन का, भगवान श्री राम जी का जो भी है, सचमुच है कि कचौड़ी वैसा नहीं बन
0: कहीं
1: पाता
0: नहीं मिल
1: है।
0: पाता वो स्वाद, नहीं मिल पाता। और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो
1: हाँ
0: मनोयोग से बनाते होंगे, वो एक अलग तरह का स्वाद होता है और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है। तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है। और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। किसी
1: हाँ
0: व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहां के मशहूर हैं?
1: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट, इतना घाटे से सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि

0: ये घाट तो हमने 10 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले, फिर 20 मीटर, सब घाट ही घाट, घाट ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है।
1: जी जी,
0: 180 घाट सब जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल। अच्छा बताइए, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी, हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं, दो हारमोनियम बजाते हैं, ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है?
1: मैं जन गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात
1: है। जी, हमारे गुरुजी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी, बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है कीर्तन वाला, तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा,
1: और हर मंगलवार और ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर, जो भजन गाते
1: ज्यादातर
0: हैं?
1: तो हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन, और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी, प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा आपने अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी।

0: तारे तू। जी ममता जी,
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे, भाई जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: कौन
0: ममता
1: सा
0: जी, और बताना चाहूंगा मैं, हाँ। उससे पहले बताना चाहूंगा, मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना, उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म का नाम है इतिहास, और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466। मुंबई का STD कोड है 022। और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का STD कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सौरभ घारो, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा। पिटारा
2: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 5 बजने को हैं। अब आपके लिए पेश है युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से आपका अपना प्रिय कार्यक्रम युवाणी, और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता।
1: और मैं हूं रचना।
0: वैसे रचना, आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ और हमारी सोसाइटी से सीधे जुड़े हैं। आज के शो में हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान के बारे में। साथ ही बात होगी नेशनल प्रोफेशनल हाउस क्लीनिंग डे की, यानी वो हाउस हेल्प्स और क्लीनर्स जो हमारे घरों और ऑफिस को हर दिन साफ रखते हैं।
1: बिल्कुल अंकिता, इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे भी आज हमारे डिस्कशन का हिस्सा है। और हाँ, सेवा संकल्प अभियान के तहत उज्जैन में होने वाले ग्रैंड दीपोत्सव के साथ ही जानेंगे गणेश जी के स्वरूप से मिलने वाले लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स को।
0: जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एक खास एपिसोड, और इसकी शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत फिल्म अंधाधुन से, जिसके गायक और संगीतकार थे अमित त्रिवेदी, गीतकार थे जयदीप साहनी।
1: तो रचना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक खास भेंट वार्ता के साथ। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आदित्य त्रिवेदी, जो हमसे डिजिटल युग में कानून के बारे में चर्चा करेंगे, और उनसे बातचीत कर रहे हैं सौरभ अवस्थी।
2: आज की इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही समसामयिक विषय, डिजिटल युग में कानून पर। साथियों, आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सूचनाओं का आदान प्रदान पहले से कहीं अधिक तेज हो गया है, लेकिन इसके साथ ही फेक न्यूज, ऑनलाइन मानहानि, साइबर अपराध और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य त्रिवेदी जी। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आदित्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो डिजिटल युग है, इसमें कानून की भूमिका पहले की तुलना में कैसे बदली है?
3: देखिए, जब कानून बनता है समाज के लिए, हम पुरातन काल से देखते आए हैं कि कानून किसी समय तो सिर्फ किसी कागज़ पर लिखा होता होगा। आज हमारे पास संविधान है और अलग अलग कानून अलग अलग विषयों पर बनते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ के लिए क्रिमिनल लॉ है, IPC है, BNS है, BNSS है, बहुत सारे ऐसे तरह के कानून हैं। जब हम डिजिटल युग की बात करते हैं तो पहले तो जब हम 2000 के पहले या मेरे जन्म के पहले की भी बात करें तो डिजिटल तो बहुत कम था। तो जब जो भी कानून लगता था उस सभी को एक पारंपरिक इकोसिस्टम में, एक ट्रेडिशनल इकोसिस्टम में ही उनका उपयोग होता था। पर धीरे धीरे जैसा हमने देखा इंटरनेट युग आया, अब तो AI युग है, तो कानून जो पुराने कानून हैं उनको भी एडजस्ट होना पड़ता है नए फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, और नए कानून भी बनाए जाते हैं
2: जी।
3: जैसे डेटा प्राइवेसी बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया और वो अब एक्ट बना है, या फिर हम आगे जाके देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट है, उसमें भी कई सारे चेंजेस होंगे, या डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट आएगा, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ये सारे जो चेंजेस है, संशोधन है, इनकी ज़रूरत भी पड़ रही है, क्योंकि इंटरनेट युग है, AI युग है। आज के समय में हमें डीप फेक्स, आज के समय में हमें AI से जनरेटेड इमेजेस, उनके कॉपीराइट, उनके ट्रेडमार्क और उनके बहुत सारे तरह तरह के जो कानूनी अधिकार जो उन प्रोड्यूसर्स के जिन्होंने बनाए हैं, या जो लेखक है, या जो उसके कॉपीराइट होल्डर है, या जो व्यवसायी है जो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, या एक्टर्स है, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनेट युग, AI युग में तो कानून का बदलना भी ज़रूरी है, बदल भी रहा है, और कानून भी भाषा की तरह बदलता है और ढल जाता है।
2: आपसे जानना चाहेंगे आगे कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या टिप्पणी करते समय नागरिकों को किन किन कानूनी बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: देखिए, जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं, जो कि मेरे भी कई केसेस मानहानि से जुड़े हैं
2: जी,
3: तो लोग जब कुछ भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एक्स या ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, या व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हैं, तो वो ये ध्यान नहीं रखते कि मैं किन कानूनों का उल्लंघन कर रहा हूँ। अब उसमें मानहानि भी हो सकती है कि वो किसी भी एक्टर के बारे में, किसी भी धर्म प्रचारक के बारे में, किसी भी नेता राजनेता के बारे में, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी मानहानि हो सकती है, उसके बारे में वो कुछ भी इंस्टाग्राम पर कमेंट करेंगे, या स्टोरी लगाएंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक स्टोरी लगाएंगे, पोस्ट लगाएंगे, वो हर चीज़ मानहानि में आएगी। और बाद में जाकर अगर जो व्यक्ति विशेष है वो चाहे और मानहानि का अगर दावा हुआ, तो वो फिर मानहानि का दावा होगा, और फिर उसके लिए जितना भी वो मुकदमा करना चाहे वो कर सकता है। तो जो आम व्यक्ति है जो सोशल मीडिया यूज़ करता है
2: जी,
3: उसे सोशल मीडिया को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसको एक विजडम के साथ यूज़ करना चाहिए, उसको अपना दिमाग लगाकर यूज़ करना चाहिए कि कैसे वो सोशल मीडिया के कंटेंट को देखे और उसमें पॉजिटिव टिप्पणियाँ दे। कई बार लोग वीडियोस बना देते हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, कई लोग सुन भी रहे होंगे, और वो वीडियो बिना लीगल सलाह के बना देते हैं, और बाद में फिर उन पर मुकदमा हो जाता है, FIR भी हो जाती है। सिर्फ मानहानि की बात नहीं है, क्योंकि क्या उससे किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंच रही है, क्या उससे समाज की पब्लिक मोरालिटी अफेक्ट हो रही है, क्या उससे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अफेक्ट हो रही है, हम लोकतंत्र के अलग अलग हिस्सों पर, लोकतंत्र के अलग अलग अंग पर बहुत सारे कमेंट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है। व्यक्तिगत आज़ादी इस देश में दुनिया में सभी के पास है, पर उसकी एक मर्यादा होना चाहिए।
2: जी, मान लीजिए कि कोई एक तथ्य है, जैसे कि मैं सौरभ हूँ और मैं चोरी करते पकड़ा जा चुका हूँ और मुझे माननीय न्यायालय द्वारा सजा भी मिल चुकी है। अगर इस फैक्ट के बारे में कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लिखता है तो क्या ये मानहानि के दायरे में आता है?
3: नहीं, फैक्ट्स आर एन एग्जेम्पशन टू डेफेमेशन। तो मानहानि होती है जब आप उस टिप्पणी को बहुत ही एक तरीके से व्यंगात्मक अंदाज में भी और एक नकारात्मक अंदाज में भी दिखाते हैं। कोई भी मानहानि, ऐसे तो हर पत्रकार पर मानहानि का केस लगेगा, क्योंकि वो तो रिपोर्टिंग करते हैं। किसी को कोई जेल हुई, किसी को बेल मिली, किसी पे कोई मुकदमा हुआ, तो वो रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्ट करना या एजुकेशनल मटेरियल के लिए, जैसे हर क्लास टीचर पर मानहानि लगेगा क्योंकि वो कितने सारे लोगों के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। पर एजुकेशन मटेरियल के लिए, अवेयरनेस के लिए और जो तथ्य है उनको एज इट इज़ दिखाना मानहानि नहीं है। पर उसको अगर आप मसाला लगाकर या उसको आप तथ्यों को थोड़ा सा अलग तरीके से परोसकर या उन तथ्यों को आप नकारात्मक तरीके से दिखाकर या जो केस में जानकारी है उससे ज़्यादा जानकारी देकर, ये सब मानहानि के दायरे में आएगा।
2: जी, अगर हम मान लीजिए किसी पोस्ट पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस पोस्ट को केवल फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो भी क्या हमारी कानूनी जिम्मेदारी बनती है?
3: देखिए, फॉरवर्ड करने से आपकी सीधी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, वो एक इनडायरेक्ट लाइबिलिटी होगी। पर उसको आप कौन फॉरवर्ड कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। कि अगर मान लीजिए कि शहर का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा है जिसमें 100 अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो कानूनविद ध्यान रखेंगे और जो जांच अधिकारी है वो ध्यान रखेंगे। पर कोई आम युवा है जो आपस में एक या दो दोस्त के साथ उसने कुछ शेयर कर दिया, किसी ऐसे पॉडकास्टर की या इन्फ्लुएंसर की रील शेयर कर दी जिसने किसी की मानहानि करी होगी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर कोई भी मुकदमा या मानहानि या कोई केस के दायरे में नहीं आते, पर हमें ध्यान रखना चाहिए।
2: मान लीजिए कि मेरे बारे में ही सोशल मीडिया पे कोई झूठी या कोई अपमानजनक जानकारी फैलाई जा रही है, तो फिर मेरे पास इस स्थिति में क्या क्या कानूनी विकल्प मौजूद हैं?
3: जी, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जानकारी उसने लिखी है उसमें उसको फैक्ट और फिक्शन को हम अलग अलग करें।
2: जी,
3: क्योंकि कोई भी जानकारी होगी वो किसी ना किसी तथ्य या फिर किसी तथ्य को मोड़ मरोड़ कर भी दिखाया गया है, तो उसको हम देख सकते हैं कि वो क्या है। फैक्ट और फिक्शन को हम अलग करें। सबसे पहला, उसमें फिक्शन ज़्यादा है फैक्ट कम है तो उस पर फिर लीगल नोटिस भेजना सबसे पहला एक प्रयास होगा।
2: जी,
3: कि उसको लीगल नोटिस भेजा जाएगा, उसको कुछ समय दिया जाएगा कि आप ये पोस्ट हटा लें क्योंकि इसमें ये दिक्कतें हैं।
2: जी,
3: उसको हटाने के वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद फिर एक इसमें एक सिविल प्रकरण बनता है मानहानि का।
2: जी,
3: और उसके अनुसार फिर काम होता है, उसके अनुसार फिर न्यायालय में बात जाती है और फिर आप न्यायालय को कन्विंस करते हैं कि आपकी मानहानि क्यों हुई।
2: जी,
3: क्योंकि मानहानि हर किसी की नहीं हो सकती।

0: वो गुडविल एस्टैब्लिश नहीं होगी, क्योंकि मानहानि को भी साबित करने के कानून में बहुत सारे मापदंड है,
1: जी
0: जैसे कि आप उस समाज में, उस सेक्टर में, उस शहर में कितने प्रभावी हैं, फिर आपके सोशल, आजकल ये भी है कि आपके सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स हैं, आप किस पद पर हैं, आप क्या समाज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है
1: जी
0: इस तरीके से कि हम मानहानि को सबसे पहले तो हम मान को स्थापित करें, उसके
1: जी
0: बाद फिर उसकी हानि को हम बताएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है।
1: जी जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं उनके विरुद्ध भारतीय कानून में क्या-क्या प्रावधान है?
0: देखिए, जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, अब ये देखना है कि उस फेक न्यूज़ का प्रभाव क्या हुआ।
1: जी
0: सबसे पहले तो आईटी एक्ट में उनके अंतर्गत होगा, मैं धाराएं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हर चीज़ की धारा अलग है, आईटी एक्ट के अंतर्गत होगा। फिर उसके बाद क्या उस फेक न्यूज़ को फैलाने से दंगे हुए, क्या उस फेक न्यूज़ को फैलाने से सामाजिक असमरसता हुई, क्या उसको फैलाने से समाज में दिक्कतें हुई, अगर दंगे हुए तो एफआईआर होगी, अगर किसी भी तरीके से समाज में उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो भी समाज के लोग उस पर एफआईआर के लिए संबंधित थाने को या संबंधित पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक और चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि एफआईआर आपका राइट नहीं है,
1: जी
0: आप तो एफआईआर दे रहे हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद वो केस बनता है तभी तो उस पर मुकदमा होगा। हम हमेशा, मैंने देखा है आम नागरिकों में हमेशा सोचते हैं कि हम तो पुलिस के पास गए, एफआईआर हुई, फिर कुछ हुआ नहीं केस का, क्योंकि हर केस उस दायरे में नहीं आता जिसमें कानून के दायरे या कानून के मापदंड, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, हर किसी में सबके अपने मापदंड दे रखे हैं,
1: जी
0: तो हर केस में भी एफआईआर होना मुश्किल है। पर कोई भी फेक न्यूज़ फैला रहा है तो एक तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर पनिशमेंट और एफआईआर के मुकदमे, इस तरीके से उन पर कार्रवाई हो सकती है। और टेक डाउन पोस्ट भी एक चीज़ होती है कि हम जब सोशल मीडिया कानून या कमर्शियल लॉ की बात करते हैं तो हम लीगल नोटिस के साथ टेक डाउन नोटिस भेजते हैं कि अब आपको ये पोस्ट उतार देना है, अब आपको ये पोस्ट हटा
1: हटा
0: देना
1: देना है।
0: है, ये पोस्ट 24 घंटे में हटा देना है, 48 घंटे में हटा देना है या 7 दिन में हटा देना है। तो वो टेक डाउन नोटिस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुरंत एक आपको तुरंत उसका असर आपको दिखेगा, और अगर वो व्यक्ति सामने वाले समझदार है, उन्हें मालूम है कि उन्होंने

0: आदित्य त्रिवेदी जी, आपने डिजिटल युग में कानून, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग, ऑनलाइन मानहानि, फेक न्यूज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अत्यंत ही उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, इस ज्ञानवर्धक भेंट वार्ता के बाद बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

ब्रेक के पहले आपने सुना था गाना फिल्म तनुवेट्स मनु से, जिसे गाया था लैम्बर हुसैनपुरी ने, संगीत दिया था केजे सिंह ने और गीतकार थे राज शेखर। रचना

0: बात कर रहे थे, आज जन्मदिवस है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
1: बिल्कुल अंकिता, 17 सितंबर का दिन भारत के इतिहास और राजनीति में एक बेहद खास स्थान रखता है। इस दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर की तंग गलियों से निकलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक बनने तक का उनका सफर हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा का विशाल स्रोत है।
0: बिल्कुल सही कहा। मोदी जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है अथक परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्रप्रथम की भावना। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ब्रेक से पहले आपने सुना था फिल्म मैं हूं ना का एक सुंदर गीत, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी थी के वसुंधरा ने, संगीत दिया था अनु मलिक ने और गीतकार थे जावेद अख्तर। रचना, मोदी जी के व्यक्तित्व का सबसे अनूठा पहलू ये है कि वे अपने जन्मदिन को किसी व्यक्तिगत जश्न के रूप में नहीं मनाते, बल्कि इस दिन को सेवा दिवस और सेवा पखवाड़े के रूप में देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। यही बात उन्हें एक सच्चा जननायक बनाती है ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंकिता, मोदी जी के व्यक्तित्व का सबसे अनूठा पहलू यही है और इसीलिए हमारा मध्य प्रदेश भी उनके इस सेवा भाव को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। 17 सितंबर को उनके जन्मदिन से शुरू होने वाला यह सेवा संकल्प अभियान इस बार और भी खास है। पहले जो कैंपेन 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलता था, इस साल से पूरे एक महीने के लिए बढ़ाकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।
3: और रचना, इस बार तो हमारे उज्जैन में इसका नज़ारा देखने लायक होगा। इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा हाईलाइट हमारे उज्जैन में ही होने वाला है, जहाँ शिप्रा नदी के घाटों पर एक नया इतिहास रचने की तैयारी है।
4: सच में अयोध्या में जो 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बना था, इस बार उज्जैन में उससे भी आगे निकलकर 27 लाख दीपक जलाने का टारगेट रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नाम सीधा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है।
3: जी हाँ, और इसकी प्लानिंग भी बहुत शानदार तरीके से की गई है। घाटों पर एक एक मीटर के छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं और हर ब्लॉक में पूरे 225 दिए रखे जाएंगे। सोचिए रचना, जब 27 लाख दिए एक साथ जलेंगे तो पूरे घाट का नज़ारा कितना खूबसूरत और जादुई लगेगा।
4: बिल्कुल अंकिता, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर यह पूरा महीना सफाई, सोशल वर्क और लोगों की सेवा में बीतेगा, वहीं उज्जैन से जलने वाली इन दियों की रोशनी पूरे देश में एक नई पॉजिटिविटी, एनर्जी और सेवा की भावना फैलाएगी।
3: बिल्कुल, तो श्रोताओं, आज 17 सितंबर को हमारे उज्जैन के पावन राम घाट पर यह ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, आप इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, आइए इस अद्भुत और भव्य क्षण का हिस्सा बनिए और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: फिल्म कुछ ना कहो से अभी आपने सुना था ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया था शंकर महादेवन और मधुश्री ने, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने और गीतकार थे जावेद अख्तर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिर्फ एक दिन के लिए हमारे घरों और ऑफिसों में सफाई करने वाले हमारे प्रोफेशनल भाई बहन काम पर ना आए तो क्या होगा? वैसे रचना, सच कहूँ तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। इन्हीं लोगों की मेहनत और योगदान को शुक्रिया कहने के लिए हर साल हम नेशनल प्रोफेशनल हाउस क्लीनिंग डे मनाया करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अंकिता, यह दिन सिर्फ सफाई करने वालों को याद करने का नहीं बल्कि उनके काम को सम्मान देने का दिन है। ये प्रोफेशनल क्लीनर सिर्फ हमारा घर साफ नहीं करते बल्कि बीमारियों को दूर रखकर हमारे जीवन में सुकून और शांति लाते हैं। सोचिए इसके कितने बड़े फायदे हैं। सबसे पहले बीमारियों से बचाओ, घर के कोने कोने से धूल, बैक्टीरिया और एलर्जी फैलाने वाली चीज़ों को साफ करके ये हमें सेहतमंद रखते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और दूसरी, समय की बचत। आजकल की बिजी लाइफ में जब लोगों के पास टाइम नहीं होता तब इनकी वजह से परिवारों को साथ बिताने का अच्छा वक्त मिल जाता है। इसके साथ ही मानसिक शांति रचना, क्योंकि एक साफ सुथरा और सजा हुआ घर देखकर हर किसी का स्ट्रेस कम होता है और पॉजिटिव फीलिंग आती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि समाज में ये सोच बने कि सफाई का काम करने वाले लोग हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, इसलिए वे पूरे सम्मान के हकदार हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अंकिता, यह प्रोफेशनल क्लीनर्स केमिकल्स का सही ज्ञान रखते हैं और मॉडर्न ट्रिक्स व टूल्स का इस्तेमाल करके हमारे रहने की जगह को एकदम सेफ और हाइजीनिक बनाते हैं। स्वच्छ माहौल से मन शांत रहता है और काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। और इसी सोच को बड़े लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए भारत में हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू होता है। यह खास कैंपेन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलता है, जो स्वच्छ भारत मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसमें देश का हर नागरिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है।
0: बिल्कुल, तो आज इस शो के जरिए हम उन सभी प्रोफेशनल क्लीनर्स को दिल से सलाम करते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे घरों और समाज को एकदम चमका देते हैं और हेल्दी रखते हैं। आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम उनके काम की वैल्यू समझेंगे और उनके साथ हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आएंगे। तो चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: फिल्म सुपर 30 से अभी आपने सुना एक खूबसूरत गीत जिसे अपनी आवाज़ दी थी उदित नारायण, श्रेया घोषाल ने, संगीत दिया था अजय अतुल ने और गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य। रचना स्वास्थ्य की बात चली है तो एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, 17 सितंबर को दुनिया भर में विश्व मरीज सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है।
1: बिल्कुल अंकिता, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसकी शुरुआत इसीलिए की ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि जब कोई भी इंसान बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल या डॉक्टर के पास जाता है तो इलाज के दौरान उसे किसी भी लापरवाही, गलतफहमी या मेडिकल मिस्टेक की वजह से कोई नुकसान न पहुंचे।
0: बिल्कुल, और ये बात कितनी बड़ी है इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। दुनिया भर में दवाओं की गलत खुराक, गलत डायग्नोसिस या फिर अस्पताल में मिलने वाले इन्फेक्शन की वजह से लाखों लोग परेशान होते हैं। डॉक्टर बनने की पढ़ाई में सबसे पहला नियम यही सिखाया जाता है कि फर्स्ट डू नॉट हार्म, यानी सबसे पहले किसी को नुकसान मत पहुँचाओ। ये दिन हमें इसी बेसिक नियम की याद दिलाता है।
1: सच में अंकिता, अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो पेशेंट सेफ्टी यानी मरीज की सुरक्षा के कुछ खास पिलर्स है। इसमें सबसे पहले आता है दवाइयों की सही जानकारी। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर की लिखावट समझ ना आने से या नाम एक जैसे होने से गलत दवाई मिल जाती है, इसलिए दवाई का नाम, उसकी सही मात्रा और लेने का सही समय एकदम क्लियर होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और बीमारी की सही पहचान, जब तक टेस्ट सही नहीं होंगे और बीमारी की सही और सटीक पहचान नहीं होगी तब तक इलाज सही दिशा में नहीं जा सकता। मरीज और परिवार को सवाल पूछने का हक है। मरीज सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, मरीज और उसके परिवार को पूरा हक है कि वे अपने इलाज के बारे में समझें, सवाल पूछें और अपनी दवाओं की जानकारी रखें। अस्पताल का साफ सुथरा माहौल, अस्पताल में सफाई, इंजेक्शन से बचाव और इन्फेक्शन से बचाव और सही उपकरणों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि मरीज ठीक होने आए तो कोई नया इन्फेक्शन लेकर ना जाए। और आपने बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे हैं रचना, कि कई बार लोग हिचकिचाते हैं और डॉक्टर से खुलकर सवाल नहीं पूछ पाते, लेकिन सच तो यह है कि अपनी हेल्थ और ट्रीटमेंट के बारे में जागरूक होना हर मरीज़ का हक है। जब डॉक्टर और मरीज आपस में खुलकर बात करेंगे तभी इलाज पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगा।
1: बिल्कुल सही बात कही तुमने अंकिता। यह दिन हमें यही याद दिलाता है कि स्वास्थ्य प्रणाली में मरीज सिर्फ एक बेड नंबर या संख्या नहीं है बल्कि एक अनमोल जीवन है। मरीज की सुरक्षा किसी एक इंसान की नहीं बल्कि डॉक्टर, नर्सों, अस्पताल प्रशासन और खुद मरीज की साझी जिम्मेदारी है। जब सब मिलकर सतर्क रहेंगे तभी एक सुरक्षित और सेहतमंद माहौल बन पाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और रचना, जो सोता हूँ बातों से सिलसिला जारी हमने किया था, अब हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: फिल्म कल होना हो से सुना आपने ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया था वसुंधरा के और शान ने, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने और गीतकार थे जावेद अख्तर। श्रोताओं, सेहत और सुरक्षा की इतनी ज़रूरी बातों के बाद हम अपनी बातचीत को थोड़ा भक्ति और आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ते हैं। रचना, आखिर गणेश उत्सव का ये पावन पर्व जो चल रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा अंकिता, हमारे विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता भगवान श्री गणेश का यह त्यौहार हर घर में एक नई खुशहाली, उमंग और पॉजिटिविटी लेकर आता है। हमारी यही प्रार्थना है कि गजानन आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और अच्छी सेहत लेकर आए।
0: बिल्कुल, और वैसे रचना, जब भी हम गणेश जी को देखते हैं मन में एक अजीब सा सुकून और अपनापन महसूस होता है। उनके बाल रूप की नटखट मनमोहकता हो या फिर उनका संकट मोचन वाला रूप, वे हर रूप में हमारे बेहद करीब लगते हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करनी हो, नया घर लेना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, तो हम सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं।
1: बिल्कुल, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बप्पा केवल एक पूजनीय देवता ही नहीं है, बल्कि वे ज्ञान, विवेक और कला के भी अधिष्ठाता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में आई बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और ठंडे दिमाग के साथ कैसे हल किया जा सकता है। अगर ध्यान से देखें तो प्रथम पूज्य गणपति जी का स्वरूप अपने आप में मैनेजमेंट और लाइफ लेसन का एक पूरा ग्रंथ है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने रचना, जब हम गणेश जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन अगर उनके स्वरूप और उनके हर एक अंग के पीछे छिपे मैसेज को हम समझ लें, तो हमारी डेली लाइफ, सोचने का तरीका और काम करने की स्टाइल सब कुछ एकदम बदल सकती है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने अंकिता, इसी पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे और श्रोताओं आपको बताएंगे कि बप्पा का स्वरूप हमें क्या क्या सिखाता है।
0: जी हाँ, और गणेश जी का हर अंग हमें एक विशेष दर्शन सिखाता है कि उनका जो बड़ा सिर है, जो हमें बड़ी सोच और ज्ञानार्जन के बारे में बताता है। रचना, गणेश जी का विशाल मस्तक हमें सिखाता है कि हमेशा बड़ा सोचें, संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलकर दूरदर्शी बने, जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें, अपनी सोच का दायरा जितना बड़ा हो सफलता की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है।
1: वाह, बहुत ही सुंदर बात कही तुमने अंकिता, और इसी तरह उनके बड़े कान ध्यान से सुनने का प्रतीक है। गणेश जी के सूप जैसे बड़े कान हमें ध्यान से सुनने की कला सिखाते हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और फिर निर्णय लेना ही परिपक्वता की निशानी है।
0: बिल्कुल, और छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता का प्रतीक। रचना, गणेश जी की छोटी आंखें हमें सूक्ष्म दृष्टि और गहरी एकाग्रता सिखा देती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बाहरी भटकाव से दूर रहकर केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। छोटी आंखें दूरदर्शिता और गहराई से देखने का प्रतीक है।
1: और इसी के साथ उनकी बड़ी और लचीली सूंड की सबसे बड़ी खासियत है उनकी अनुकूलशीलता। सूंड से वे भारी भरकम पेड़ का तना भी उखाड़ सकते हैं और छोटी सी घास की पत्ती भी उठा सकते हैं। यह हमें सिखाती हैं कि हमें हर माहौल में ढलना आना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां चाहे कठिन हो या सरल, हमें अपनी कार्य कुशलता बनाए रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और रचना, फिर आता है बप्पा का बड़ा पेट, पाचन क्षमता और धैर्य का प्रतीक। गणेश जी का लंबोदर हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर बात, चाहे वह प्रशंसा हो या आलोचना, खुशी हो या गम, उसे पचाना हम सीख लें। अपनी पेट में बातें पचाना एक बड़ी क्षमता है, व्यक्ति के धैर्य और सहनशीलता को दर्शाती है। इसी तरह उनका एक टूटा हुआ दांत ये दर्शाता है कि महान कार्यों को पूरा करने के लिए त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे उन्होंने महाभारत लिखने के लिए अपना दांत तोड़ दिया था, यह संकल्प शक्ति का प्रतीक है। कितना अद्भुत और व्यावहारिक दर्शन है यह रचना। अगर हम दैनिक जीवन में केवल दो बातें भी उतार ले, बड़ी सोच रखना और हर परिस्थिति में ढलना, तो हमारी आधी से ज़्यादा समझदारी अपना आप ही खत्म हो जाएगी, है ना रचना। तो रचना, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की अगले गीत की ओर।

0: फिल्म एक चतुर्नार से अभी आपने सुनाई गीत, जिसे गाया था साचेत टंडन शिल्पा राव ने, संगीत दिया था अभिजीत श्रीवास्तव ने और गीतकार थे शायरा अपूर्वा। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने कितनी सारी बातें की, देश के विकास से लेकर हमारे आसपास के सफाई वीरों के सम्मान, सेहत की सुरक्षा और गणेश जी की प्यारी सीखों तक।
1: बिल्कुल अंकिता, अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लें तो अपने आसपास एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, और उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके दिल को छू गया होगा।
1: अपनी राय और बातें हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के सफ़र में इतना ही।
0: मैं अंकिता
1: और मैं रचना लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, नमस्कार।

तो ये था आज का कार्यक्रम युव वाणी FM 102.5 MHz एवं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र. शाम के 6 बजने को हैं. अब आपके लिए पेश है कार्यक्रम भजन संध्या, जिसमें अगले 30 मिनट तक हम भक्ति, श्रद्धा और संगीत के माध्यम से जुड़ेंगे ईश्वर से. भक्ति संगीत न केवल मन को शांति देता है बल्कि हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा भी देता है. तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी से, जिनकी आराधना के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता. वे बुद्धि, विवेक और समृद्धि के देवता हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं. शुरुआत करते हैं एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण भजन से.

तो ये था बेला सुलाखे द्वारा गाया गया भजन। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की इस मंगलमय वंदना के साथ वातावरण भक्तिमय हो उठा है। भगवान गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के सुपुत्र हैं और उनके आशीर्वाद से हर कार्य शुभ होता है। अब चलिए उसी दिव्य शक्ति के स्रोत उनके पिता देवों के देव महादेव की आराधना की ओर बढ़ते हैं।

0: कविता पौडवाल और विनोद राठौर की आवाज़ में अभी आपने सुनी देवाधिदेव महादेव की स्तुति में भजन। भगवान शिव की इस अद्भुत स्तुति ने मन को गहराई और शांति से भर दिया है। शिव ही आदि हैं और अनंत भी, जिनकी भक्ति आत्मा को निर्मल कर देती है। और श्रोताओं, सेवा संकल्प में आज उज्जैन में शिप्रा के निर्मल तट पर बहुत विशेष दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो अब सुनते हैं दीपोत्सव के बारे में स्मार्ट सिटी सीईओ सुश्री नेहा जैन से हुई चर्चा।
1: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर दीपों के अद्भुत रोशनी से आलोकित होने जा रही है। शिप्रा के तट पर लाखों दीपों का सामूहिक प्रज्वलन केवल प्रकाश का उत्सव नहीं, बल्कि जनभागीदारी, सेवा व्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना का भी संदेश है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शिप्रा तट पर होने वाले इस भव्य दीपोत्सव की तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है। इस आयोजन की व्यवस्थाओं, चुनौतियों और स्मार्ट सिटी उज्जैन की भूमिका को समझने के लिए हमारे साथ है स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा जी जैन। आइए उनसे जानते हैं इस वृहद आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्न जानकारियों को। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 17 सितंबर को होने वाले इस भव्य दीपोत्सव के लिए स्मार्ट सिटी की ओर से किस प्रकार की तैयारियां की गई है और इस पूरे आयोजन में स्मार्ट सिटी की क्या मुख्य भूमिका है।
2: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी उज्जैन आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे अवसर देने के लिए। जैसा कि विदित है कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शासन के निर्देश अनुसार सेवा संकल्प अभियान के तहत अलग अलग गतिविधियां प्लान की गई हैं। इसके अंतर्गत उज्जैन शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। उज्जैन शहर में 8 सेक्टरों में 6 घाटों और महाकाल लोक कॉरिडोर एवं कार्तिक मेला ग्राउंड में कुल 8 सेक्टरों में 25 लाख से लेकर 30 लाख तक के दीयों की दीपोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का इसमें जो योगदान रहा है वो पूरे जिला प्रशासन एवं जनभागीदारी से जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं उन सभी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास रहेगा।
1: मैम, लाखों दीपों को एक निर्धारित समय पर प्रज्वलित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए किस प्रकार की तकनीकी और प्रशासनिक प्लानिंग की गई है?
2: यह बिल्कुल सही है कि क्योंकि हम 25 लाख से 30 लाख तक के दिए एक साथ प्रज्वलित करने की प्रयास कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक प्रशासनिक और तकनीकी तरह से काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सभी लोगों का एक साथ कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, और इसके लिए हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग स्तर के सभी अधिकारियों, सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं के साथ बैठकर मीटिंग्स करते हैं, जिसमें हम दिया जलाने की तकनीक से लेकर किस कतारों में लोग खड़े रहेंगे, कैसे कैसे दिए जलेंगे, इन सब की जो तैयारियां करते हैं वो सबसे जरूरी है।
1: मैम, आयोजन को सेक्टर और सब सेक्टर में विभाजित किया गया है, इससे व्यवस्था को किस प्रकार सुचारू बनाया जा रहा है?
2: जी, इस दीपोत्सव के तहत हमने 8 जो हमारे सेक्टर हैं, जिसमें हमारी प्रमुख 6 घाटें हैं, केदारेश्वर घाट, सुनहरी घाट, रामघाट डी, रामघाट ई, दत्ताखाड़ा, भूखी माता सेक्टर एवं महाकाल लोक कॉरिडोर और कार्तिक मेला ग्राउंड, इन सभी पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। इन सेक्टर्स को हम 250 से अधिक सब सेक्टर्स में विभाजित करते हैं, जिससे कि हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर दीपोत्सव के लिए एक प्रभारी अधिकारी को नियुक्त कर सकें और वो अपने अपने सब सेक्टर को जिम्मेदारी से देख भी सकें।
1: मैम, इतना बड़ा वृहद आयोजन है तो दीपोत्सव के बाद स्वच्छता एक बड़ी चुनौती होगी, कचरा प्रबंधन और घाटों की तत्काल सफाई के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है?
2: आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने वृहद स्तर का जब कार्यक्रम किया जाता है तो उसके बाद की सफाई जो है

0: वो सबसे बड़ी चुनौती रहती है। गत वर्षों की तरह ही इस बार भी जो नगर निगम की टीम है वो इस कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम के उपरांत सारे दियों को और सारे बत्ती तेल इत्यादि जितना भी मटेरियल वहाँ रहेगा उसको तुरंत हटाने का काम करती है। ऑन साइट हम एक MRF फैसिलिटी जो कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी रहती है उसको भी इस्टेब्लिश करेंगे। उसके साथ साथ जितने दिए हमारे रह जाते हैं उन दियों के साथ एक दिया वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से किया जाता है कि उसके बाद एक आकृति बनाई जाती है। जितने भी दिए जो टूट जाते हैं या बचे रहते हैं उनको चूरी के फॉर्म में भी रिप्रोसेस किया जाता है। तो अलग अलग गतिविधियों से ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को हम जीरो वेस्ट कर सकें और पर्यावरण के भी अनुकूल कर सकें।
1: मैम, जब लाखों दीप एक साथ प्रज्वलित होंगे तब इस अनुपम आयोजन का आकाशवाणी के माध्यम से आपका संदेश क्या होगा?
0: मैं आकाशवाणी उज्जैन की ओर से जितने भी उज्जैन के निवासी हैं उन सबको इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के जुड़ने के लिए निवेदन करती हूँ कि गत वर्षों की तरह भी इस वर्ष भी आप लोग अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में दिखाएं जिससे कि जिला प्रशासन और सभी सामाजिक संगठन संस्था एवं उज्जैन के सभी निवासी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम बनाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इस वृहद आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमारे श्रोताओं को अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: तो ये थी चर्चा अनामिका सोनी जी द्वारा की गई थी। अब पेश है एक सुमधुर भजन उन विष्णु अवतार का जिन्होंने धरती पर आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम।

0: पुरुषोत्तम दास जलोटा की आवाज़ में अभी आपने सुना भगवान श्री राम की स्तुति में भजन। प्रभु श्री राम के इस पावन भजन ने हमें धर्म और मर्यादा का संदेश दिया है। उनका जीवन हमें सच्चाई और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। अब पेश है विशेष कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी केंद्र भोपाल, जिसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भैया बहनों को महेश भैया की राम राम। भैया रहो, आज हम कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और विशेष रूप से आप हरों के लाने जो है हम एक बातचीत जो है स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित है वो आज सुने हैं और इसके संगे संगे मनोरंजन भी करे हैं। मनो इसे पहले भैया रहो थोड़ी सी जानकारी अपन जो है ऐसी लेते हैं ताकि जो है हमारे जो युवा हैं वो उसे लाभान्वित हो सके। भैया देखो, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, हर युवा को मोबाइल की जरूरत है, हर व्यक्ति को मोबाइल की जरूरत है और मोबाइल को सबसे ज्यादा काय की जरूरत होती है आपको पता है? बैटरी की। अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो फिर मोबाइल कोनो काम को नहीं रहते हैं। सबसे ज्यादा मांग, सबसे ज्यादा खपत और सबसे ज्यादा उत्पादन बैटरी को हो रहा है। जितने मोबाइल नहीं बिक रहे हैं उनसे ज्यादा मोबाइल की बैटरी की जरूरत पड़ रही है और जब जो चीज की ज्यादा जरूरत हुई है तो फिर उनको उत्पादन भी बहुत ज्यादा मात्रा में करना पड़े। मोबाइल बैटरी एनर्जी यूनिट इके लाने जो है कई तरह के जो है इक्विपमेंट यानी कि औजार है वे भी जो है बाजार में मुहैया करवाए जा रहे हैं और जब ऊर्जा की मांग लगातार बढ़त है तो ऐसे में ऊर्जा को उचित भंडारण और ऊर्जा को बेहतर उपयोग के लाने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और फिर उपयोग भी देख ले, देखो कई बार क्या होते है कि सौर ऊर्जा के साथ भी जो यूनिट को उपयोग होते हैं मोबाइल चार्जिंग में होती है, इसके संगे संगे आपातकालीन उपयोग भी होते हैं और फिर बिजली की जहां आपूर्ति नहीं होती वहां भी बैटरी की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा को जहां प्रबंधन करते हैं वहां भी जो है MBU यूनिट जो है इसकी जरूरत होती है। तो जरूरत के हिसाब से जो है इको आप अगर उत्पादन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री होते हैं, मांग होते हैं और युवाओं के लाने एक तरह से जो बड़ो अच्छो जो है व्यवसाय साबित हो सकता है। तो कोशिश करें MBU के बारे में और जानकारी लें यानी कि मोबाइल बैटरी यूनिट के बारे में और जो तकनीकें हैं वो सीखें इसके बाद में जो है बाजार में उतरें। और भैया पहल अपन सुना थे जो लोक भजन, गायक हैं बुंदेल सिंह लोधी और बिनके साथी।

भैया रो एक बहुत ही बढ़िया योजना चल रही है, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नत योजना, और जब योजना को शॉर्ट फॉर्म में PMFME भी कहते हैं। भैया रो आपको जानकारी हुई है कि हम जो खेती के उत्पाद हैं उन्हें सीधे उत्पादन करके और हम जो है बाज़ार में बेचा थे तो उनको उतना लाभ नहीं मिला थे, और अगर उन्हें प्रसंस्करण करके यानी कि खाद्य प्रसंस्करण के तौर पर उन्हें तैयार करके बेचा थे तो दुगनों तिगनों बल्कि जो है चौगुनों लाभ मिला थे। ई योजना के माध्यम से छोटे छोटे उद्यमियों, किसानों, स्वयं सहायता समूह और दूसरे लाभार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण से अपन जोड़ सकते हैं और एक नयो व्यवसाय विकसित हो सकते हैं। ई योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उद्योग स्थापित करने, आधुनिक मशीनरी लगाने, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन जैसी गतिविधियों के लाने सरकारी सहायता को प्रावधान है। और कई बार तो जो है अगर आपने लोन लेके को यूनिट लगाओ है तो उनमें सीधो सब्सिडी को प्रावधान रहते हैं। और फिर जो मसाले उद्योग है इनमें तो जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को महत्वपूर्ण योगदान है। कई किसान भाइयों ने ई योजना में लाभ लो है, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जो जिला व्यापार केंद्र हैं या फिर अपने जो उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप सीधे बातचीत कर सकते हो। और भैया रहो किसान वाणी कार्यक्रम में अब अपन सुनते हैं जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अधिकारी विशेषज्ञों से भई बातचीत पर आधारित है। जो कार्यक्रम को संयोजन करो है चंद्रशेखर शर्मा ने और रिकॉर्डिंग सहयोग दाओ है अंशु तिलेठे ने। तो अपन सुनाते हैं।

0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम आए हैं कुक्कुट विकास निगम। हमने आज यहाँ पर बातचीत करी डॉक्टर एसएन शुक्ला, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे आपके विभाग द्वारा हमारे दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं।
1: पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में कुछ योजनाएं हैं जो डायरेक्ट पशुपालकों के हित की होती हैं। इनमें से दुधारू पशु से संबंधित दो योजनाएं मुख्य रूप से हैं। एक है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम और दूसरा है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। जो पहली योजना है जिसमें कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत, इसमें दो मुर्रा भैंसें, दुधारू भैंसें पशुपालकों को दी जाती हैं। इनमें से जो सामान्य व पिछड़ा वर्ग के जो हितग्राही हैं उनको 50% अनुदान पर, और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राही हैं उनको 75% अनुदान पर ये योजनाएं फायदा दिया जाता है। इसमें जो यूनिट कॉस्ट है वो 2,95,000 है, और हितग्राही जब का अपना अंशदान दे देते हैं तो यहाँ से किसी एक जो पशु प्रदायकर्ता होते हैं जिनको हम वेंडर बोलते हैं, उनके माध्यम से पशु उनको प्रदाय किए जाते हैं। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश के जो पशुपालक हैं ये हरियाणा राज्य जाते हैं और साथ में उनके एक वेटनरी डॉक्टर जाता है। वो डॉक्टर उन जानवरों की जो हेल्थ चेकअप करता है, और पशुपालक जब उन जानवरों का दूध वगैरह देख के और हेल्थ देख के संतुष्ट हो जाते हैं तब वो उन जानवरों को सिलेक्ट करते हैं और वो जानवर इनके गृह जिले पे आता है। और इसमें जो भाड़ा है, आने जाने का खर्चा है और बीमा वगैरह, पूरा खर्च सरकार वहन करती है। अगर ये 10-12 लीटर के जानवर हमारे प्रदेश में आएंगे तो हितग्राहियों का तो भला होगा ही, इस तरह से जो हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन है ये भी बढ़ेगा, और उन हितग्राहियों से दूध खरीदने के लिए भी एक नेशनल डेयरी कोऑपरेटिव के माध्यम से उनको दूध का संकलन किया जाता है, तो उनको बहुत दूर दूध लेने की जरूरत नहीं है, ले जाने की जरूरत नहीं है, और उनका दूध उनके दरवाजे पर ही कलेक्ट किया जा सकता है। एक दूसरी योजना है, एक मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना है। ये 2022-23 में प्रारंभ की गई थी प्रदेश में। ये 14 जिलों में स्टार्ट की गई थी। इसमें से 3 विशेष पिछड़ी जनजाति जो है, बैगा, भारिया, सहारिया, इनके लिए ये योजना थी। ये योजना में 90% शासन का अनुदान रहता है, और लगभग इसमें गाय भैंस दोनों है। इसमें लगभग 80-90 हजार रुपए गाय का, 2 गायों का रहता है, और 1,10,000 के आसपास इसमें भैंस का रहता है, 2 भैंसें मिलती हैं। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी ये योजना शुरू की गई है ताकि वो लोग भी दूध के प्रति आकर्षित हों, दूध का खान पान खुद का और अपने बच्चों का करें, और साथ में दुग्ध उत्पादन में अपना योगदान दें। तो ये योजना भी अच्छी है, और इसको आगे फ्यूचर में हो सकता है कुछ और जिलों में इसको बढ़ाया जाए। और अभी तक दुधारू पशु प्रदाय योजना में करीब 2,408 पशु प्रदाय किए जा चुके हैं, और करीब डेयरी प्लस योजना में 6,000 से ज्यादा जानवर प्रदाय किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना है, इसमें हम ऐसे हितग्राही चयन करते हैं जो वास्तव में बैगा, भारिया, सहारिया के ही हों, और दूसरी बात यह है कि उनको कम से कम पशुपालन से संबंधित थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि कम से कम पशुपालन का थोड़ा ज्ञान हो उनको, दूध कैसे निकालते हैं, खाना कब खिलाते हैं जानवर को, और थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। डेयरी प्लस योजना है, हर जिले में है। दुधारू पशु प्रदाय योजना केवल 14 जिलों में है लेकिन विशेष जनजातियों के लिए है। तो उन जिलों को यहाँ से पत्र भेजा जाता है, और हर जिले में उप संचालक का ऑफिस होता है, और वहाँ सभी को पता रहता है, और वहाँ के हितग्राहियों का चयन उस जिले के जो संचालक है उसके माध्यम से किया जाता है। तो जो हितग्राही अगर ऑफिस में पहुँचते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होता है, तो ऐसा होता है। अगर नहीं पहुँचते हैं तो ब्लॉक के जो डॉक्टर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अपने ब्लॉक से उनको चयन करते हैं, और चयन करके डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में ले जाते हैं, और वहाँ से भी सूची बन के भोपाल आती है, और जब उनका सूची और हितग्राही अंशदान आ जाता है तो उसके बाद हम उनकी लिस्ट बना के सप्लायर को देते हैं और उसकी जानकारी उप संचालक को देते हैं, तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, इस हिसाब से आगे उसका काम करते हैं।

0: अब हमारे साथ डॉक्टर गौरव थोरात, आप कार्यपालिक अधिकारी हैं मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पशुपालन और डेयरी उत्पादन के लिए योजनाएं हमारी सरकार चला रही है, उस योजना के अंतर्गत क्या क्या हमारे पशुपालकों को दिया जाता है, सामग्री क्या क्या दी जाती है?
1: नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम मध्य प्रदेश की क्रियान्वयन एजेंसी है पशुपालन विभाग की। उसके अंतर्गत हम लोग जो भी शासन द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं हितग्राही मूलक, जिसमें कि हमें हितग्राहियों को खास करके पशु प्रदाय करते हैं, उसका काम मैं देखता हूँ यहाँ पे। और इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में मेरे पास चार योजनाएं हैं शासन की। पहली है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, दूसरी योजना है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, तीसरी है समुन्नत मुर्रापाड़ा योजना, चौथी है नंदीशाला योजना। ये सभी योजनाएं हितग्राही मूलक योजना है, इनके अंतर्गत पशुओं का प्रदाय किया जाता है हितग्राहियों को। इसमें अनुदान और अंशदान राशि का प्रावधान है। अनुदान राशि शासन द्वारा निर्धारित है और दी जाती है, अंशदान राशि किसान द्वारा या पशुपालक द्वारा समय समय पर मांग अनुसार जमा की जाती है।
0: अब हम आपसे जानना चाहेंगे इन योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे किसान भाई या हितग्राही कैसे करे या सरकार द्वारा कैसे किया जाता है?
1: हमारी सभी योजनाएं के फॉर्म और उनकी जानकारी हमारे ब्लॉक स्तर के पशु चिकित्सालय और हमारे जिला स्तर के उपसंचालक कार्यालयों पर उपलब्ध रहती है। जो उनका फॉर्म रहता है, फॉर्म जिला स्तर और ब्लॉक स्तर से ही भर के भरा जाता है और वहीं पे सब्सिडी जमा होती है। और वहाँ से जो नाम होते हैं जो हितग्राहियों के पशुपालकों के लाभान्वित जिनको किया जाना है, उनके नाम हम लोगों के पास आते हैं और उसके बाद हम वेंडर के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले पशु उनको प्रदाय करते हैं, घर पहुंचाकर देने का प्रावधान। अनुदान राशि सभी योजनाओं में अलग अलग है
0: जी।
1: इसलिए मैं योजना वाले इनको बता सकता हूँ। जैसे मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना है, यह पूरे प्रदेश में संचालित है। इस योजना अंतर्गत दो दुधारू मुर्रा भैंसे हितग्राहियों को 50% सामान्य और मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को और 75% अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर प्रदाय की जाती है। इस योजना अंतर्गत सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो हितग्राही होता है वह स्वयं एक जिला या ब्लॉक स्तर के पशु चिकित्सक के साथ हरियाणा राज्य जाता है। वहाँ पे जो हमारे निर्धारित वेंडर्स हैं उनके पास हम वहाँ उनके रहने रुकने की व्यवस्था रहती है और वो लोग उनको वहाँ पे पूरे क्षेत्र में अच्छे अच्छे फार्मों पे और उनके आसपास भी जो एनिमल है उनको सामने देख के चयन करवाते हैं। उसके चयन करने पश्चात पशु चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाता है, उनका दुग्ध मापन किया जाता है चार समय, फिर हितग्राही अपनी स्वेच्छा से उनको मतलब बोल देता है हाँ हमें ये पसंद है तो फिर वो उसके घर पे पहुंचा के दी जाती है। तो उसका फिर 3 वर्ष के लिए बीमा कराया जाता है। जब वो घर पे उतरती हैं उसका 3 साल के लिए बीमा भी कराया जाता है और उनका हितग्राहियों का आने जाने का रुकने ठहरने का पूरा व्यय शासन द्वारा ही वहन किया जाता है। मतलब जो अंशदान दे रहे हैं वो लोग उसी में सबको समाहित है, उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं। और उसमें एक प्रावधान और भी है, अगर कोई हितग्राही चाहता है कि भाई मुझे और अच्छी भैंस लेनी है ऊपर की भैंस, मतलब कई लोग होता है भाई जैसे हमारे पास 10 से 12 लीटर और 16-18 लीटर वाली और टॉप क्वालिटी, तो उसके लिए वो अपनी उसकी डिफरेंस की राशि बनती है, अंतर की राशि का प्रावधान भी है कैबिनेट के द्वारा ही है, तो वो देखे वो और अच्छी भी उस मतलब अपने हिसाब से ले सकता है।
0: अंतर की राशि से क्या समझें?
1: अंतर की राशि से आप ये समझ सकते हैं जैसे भैंसों का कोई मतलब MRP तो होता नहीं है, उनकी दुग्ध क्षमता, उनकी क्वालिटी, ब्रीड क्वालिटी पे डिपेंड करता है
0: जी, बिल्कुल।
1: और अभी जिस हिसाब से है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख मतलब अलग अलग रेट की होती है भैंसें। और जो जैसे मान लो कोई 16 लीटर वाली है और बहुत अच्छी क्वालिटी की, तो वो किसान की खुद की रेट है, वहाँ पे कोई उस पर MRP नहीं है, कोई डिसाइडेड नहीं है,
0: ठीक।
1: तो वो उसमें बार्गेनिंग हमारे जो वेंडर रहता है वो करवाता है मिनिमम, मतलब बहुत ज्यादा अंतर की राशि नहीं आती लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंस कई बार देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उच्च क्वालिटी के ले रहे हैं तो अपने निर्धारित मापदंड के लेंगे तो उन्हें कोई भी राशि नहीं देना पड़ती।
0: अच्छा,
1: वो केवल अंतर की राशि उच्च क्वालिटी के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे सोचते हैं कि हम इतने दूर जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो हम अच्छी भैंस लेके आए, इसलिए थोड़ा सा मतलब वो एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, फाउंडेशन नहीं किया है, मतलब उनको स्वतंत्र किया हुआ है। और एक चीज और भी बता दूं मैं, अगर कोई लोग आदमी नहीं चाहता लेना वहाँ जाने के बाद भी, कई बार वो लोग मना कर देते हमें भैंस पसंद नहीं आई या हमें नहीं लेना है किसी भी कारण से, वो कई बार लोग नहीं जा पाते घर में कुछ उनका, तो हम उनकी

0: राशि वापस भी लौटा देते हैं।
1: बहुत अच्छा,
0: मतलब वो बाध्यता नहीं है, मतलब हाँ, इसमें किसी चीज की।
1: हाँ, बहुत अच्छा। हाँ,
0: और
1: बहुत
0: दूसरी अच्छा। हमारी योजना है दुधारू पशु प्रदान, वो बेसिकली जो हमारे प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं, बैगा भैरिया सहरिया, उन हितग्राहियों के लिए है, जो दूध उत्पादन के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी है कि, और दूसरा उनको पशुपालन से जोड़ने के लिए है। वो पशुपालन से जुड़े हुए हैं बकरी और मुर्गियों के माध्यम से, लेकिन वो गाय भैंस के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो उनको इस धारा में लाने के लिए है। वो बेसिकली वो दूध के साथ साथ जे भी है, मतलब स्वावलंबी बने हैं, वो दूध के माध्यम इस व्यवसाय से भी जुड़े हैं।
1: अच्छा।
0: तो जी केवल बैगा बारिया एरिया के लिए 14 जिलों में, इसमें हितग्राही के पास हम गाय, इसमें गाय और भैंस दोनों हैं
1: जी,
0: तो वहाँ भी जाइए, वो एनिमल पहुँच जाते हैं, फिर अपनी चॉइस से उनके सामने चाल मिल्किंग होती है, कमेटी बनी होती है जिला की, उसमें माननीय विधायकगण, सांसद महोदय, जनप्रतिनिधि को बुलाने का प्रावधान है, उनके सबके साथों से वितरण कराया जाता है ताकि उसकी पारदर्शिता बनी रहे।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, इनका पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है?
0: वैसे भी मैम मध्य प्रदेश जो अपना है कृषि में अग्रणी है और ज्यादातर जो किसान है पशुपालक भी है, और पशुपालन एक ऐसी चीज है जिसकी क्या है, आप मतलब पूरे साल भर आय ले सकते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो मतलब रोज की आय है उससे,
1: रोज की आय, सुबह शाम की आय,
0: सुबह शाम की आय है। लोगों को एक तो मनी इन हैंड अपन जो बोलते हैं वो रहता है उससे, फसल तो क्या 6 महीने में एक बार बिकती है, फिर उससे साल भर काम चलाना पड़ता है, लेकिन ये, और फिर दूसरा पोषण स्तर तो बहुत सुधार होता है। मतलब जैसे कई लोग हैं भाई, दूध है घर में हो रहा है तो घी दूध मीठा आसपास, एक पोषण स्तर भी, जो अभी मैंने दुधारू की बात की उसमें पोषण स्तर भी मैं बोलना भूल गया, उसमें बेसिकली बच्चों का पोषण स्तर में सुधार हुआ है। जिनके घर में दूध होगा भाई आधा लीटर एक लीटर, जो जिनने कभी दूध नहीं देखा, भाई परचेज नहीं कर सकते मार्केट से, तो उनको कम से कम दूध मिल रहा है, और घी दूध और शुद्ध मिल रहा है, अपने घर का मिल रहा है। तो और क्या है, लोग अच्छे पशु लाते हैं ना, तो उनका रख रखाव भी अच्छे से करते हैं। पशुपालन में उनको पता चल रहा है कि अब क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, पशु को कैसे नहलाना है, कैसे रखना है, मतलब रख रखाव प्रबंधन भी सीख रहे हैं। खान पान के साथ प्रबंध दो चीजें बहुत जरूरी है, ये तो पशुपालक सीख जाएगा, और तो वही एनिमल जो अपने हैं वो भी अपग्रेड होंगे, उनमें अपन एआई कराएंगे, अपग्रेड होंगे, धीरे धीरे ये सुधार होगा ही पशुपालन।
1: क्या कुछ उनके पशुपालन के जो भोजन है उसमें भी कोई अनुदान है, उनके प्रबंधन में भी अनुदान है, क्या उस तरह का कोई स्कीम है सरकार?
0: मैम जो अपने दुधारू पशु प्रदाय है उसमें हम 3 माह का दाना भी देते हैं, मतलब 5 किलो पर पशु के हिसाब से उसमें दाना देते हैं।
1: बहुत बढ़िया। हाँ,
0: लेकिन डेयरी प्लस में नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब योजना की कई लागत थोड़ी सी उसमें ज्यादा है, डेयरी प्लस में नहीं है, दुधारू पशु प्रदाय में है।
1: मतलब एक योजना
0: में है
1: जिससे कि किसान भाई फायदा ले सकते हैं,
0: किसान को फायदा ले सकता है। वैसे भी किसान क्या है मैम, जैसे जो किसान है उसके घर के हाउस होल्ड प्रोडक्ट इतने हो जाते हैं कि वो उनसे काम चला सकता है, चलाना भी चाहिए, तभी वो बोलते हैं सस्टेनेबल बनेगा, मतलब पैसा तभी वापस निकलेगा, इकोनॉमी तभी निकलेगी।

0: हम आगे बढ़ेंगे और एक हितग्राही से जानेंगे उनकी सफलता की कहानी।
1: मैं श्रीमती शांति नागर, ग्राम हिनोती सड़क, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल से हूँ। मुझे पशु चिकित्सक मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की जानकारी मिली। उसके तहत मुझे 2 मुर्रा भैंस एवं अच्छी नस्ल की दुधारू भैंस खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस योजना के द्वारा मैंने 1,47,500 रुपए जमा किए थे और इतनी ही रकम मुझे सरकार द्वारा दी गई, जिसमें 2,64,000 की 2 मुर्रा भैंसे और उनका आने का खर्च एवं हमारे आने जाने का खर्च, रहने का और भोजन व्यवस्था सहित सभी खर्च सरकार द्वारा दिए गए और भैंसों का 3 साल का बीमा भी उसी में करवा कर दिया गया। पहले भी मैं पशुपालन करती थी, पर पहले हमारे पशुओं का दुग्ध 35 से 40 लीटर हुआ करता था। अब अच्छी नस्ल की भैंसे आने से वह दूध बढ़कर 60 से 65 लीटर हो गया है, जो कि 65 रुपए लीटर में घर से ही बिक जाता है, जिससे हमारी आमदनी डबल हो गई है। हम संतुष्ट हैं। इस योजना को चलाने तथा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मैं सरकार और जिन्होंने इस योजना को हम तक पहुंचाने में सहायता की गई है, सभी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।
0: ये थी शांतिबाई हितग्राही, जिन्होंने डेयरी प्लस योजना से स्वयं को लाभ पहुंचाया। हम आगे बढ़ेंगे और एक और हितग्राही से जानेंगे उनकी सफलता की कहानी।
2: मैं कमल सिंह नागर, ग्राम होती सड़क, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल से हूं। मैंने पशु चिकित्सक बैरसिया के माध्यम से डेयरी प्लस योजना की जानकारी मिली, जिसके पश्चात मैंने 1,47,500 रुपए की डीडी बनवाकर डॉक्टर साहब को दी। इनके माध्यम से मैंने 2 भैंसे खरीदी। 2 भैंसों का मूल्य मुझे 2,64,000 रुपए आया, जिसमें भैंसों का ट्रांसपोर्ट, 3 साल का बीमा, मेरा आने जाने का व्यय उसी में रहा। मैं पहले से भी पशुपालन कर रहा था, परंतु उन्नत पशु न होने के कारण मेरी आय सीमित थी। परंतु मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के माध्यम से मुझे उन्नत पशु मिले और जिससे मेरी आय में वृद्धि भी हुई। और पशु विभाग के माध्यम से मुझे एक ऐसी जानकारी भी दी गई है, जिससे पशु गर्भाधान में इसे भैंस को पड़िया ही प्रजनन होता है, ना कि पाड़ा। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के माध्यम से मेरे और मेरे परिवार की आय में वृद्धि भी हुई है, आज हम खुश हैं। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप भी मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ लें और अपने परिवार को समृद्ध बनाएं, जिससे हम शुद्ध दूध घी हम भी खा सके और दूसरों को भी खिला सकते हैं।
3: ये एक स्थल रिकॉर्डिंग थी किसान भाइयों, जिसमें हम आए थे मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे, खेती किसानी के साथ पशुपालन को भी महत्व देंगे।
4: तो भैया रहूं, आपने जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम सुनो, इको संयोजन करो थो चंद्रशेखर शर्मा ने और रिकॉर्डिंग सहयोग दो थो अंशु तिलेठा ने। और अब चलवे की बिरिया हो रही है। मनो चलवे से पहल किसान भैयारों को किसान बाणी कार्यक्रम में हम बता दें थोड़ी सी सामयिक तौर पे जानकारी। देखो ई वक्त जो है मौसम जो है आप देख रहे हो, कई जगह बारिश हो रही है और कई जगह बारिश थम गई है। ऐसे में जो है विपरीत मौसम बन रहा है और सबसे ज़्यादा खेती किसानी में अगर हमारे किसान भाई देखें तो सोयाबीन की पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो इको क्या वजह हो सकते हैं? पहली वजह तो जो है कि पानी की कमी हो रही है, दूसरी वजह जो है कि जस्ता की कमी हो रही है, और तीसरी वजह जो है कि आपके सोयाबीन में नींदा जो है आपके सोयाबीन से बड़ो हो गया हो। तो ये तीनों ही बातों को ध्यान रखें, नींदा अगर बड़ो है तो नींदा निकाल दें, अगर जस्ता की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है, तो उनकी पूर्ति जो है फर्टिलाइजर के माध्यम से करें और समय समय पर निराई गुड़ाई जरूर करते रहें। तो इन बातों को ध्यान रखें और अब चलवे की बिरिया। तो महेश सोनी को दे आज्ञा, नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: उतला बोल रहे
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। से अब पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सब यही डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच
6: है बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
9: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: तो ये था प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें। 7 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी

0: ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार बारिश और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित गांवों के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के साथ सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंक रोधी अभियान में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। अफगानिस्तान ने भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दिल्ली में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: 투하.
1: FM 102.5 MHz एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आइए आपको आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

आज 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:21 पर आप सुनेंगे मालवी गीतारी गूंज, 8 आप सुनेंगे 20th एडिशन ऑफ एशियंस गेम्स 2026 स्पेशल प्रोग्राम चीयर फॉर भारत, 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू समाचार, 9:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश, 10 आप सुनेंगे गीतों का गुलदस्ता, 10:30 पर आप सुनेंगे राग रजनी, 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 11:10 पर आप सुनेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी आपको दी जा रही है।

कल सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर आप सुनेंगे वंदरवार, 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे आप सुनेंगे महाकाल वंदन, 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:20 पर आप सुनेंगे सुप्रभात उज्जैन, 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़, 8:30 पर आप सुनेंगे उज्जैनी आरजे, 9:30 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड बीट्स, 10 बजे आप सुनेंगे उज्जैन दर्शन, 10:30 पर आप सुनेंगे महिला सभा, 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग, 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी न्यूज़ बुलेटिन, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफ़र, 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 2:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर का समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे आप सुनेंगे सखी सहेली, 4 बजे आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी, 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी, 6 बजे आप सुनेंगे भजन संध्या, 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 7 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार, 7:05 पर आप सुनेंगे 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:21 पर आप सुनेंगे माटी री बात, 8 बजे आप सुनेंगे 20th edition ऑफ एशियंस गेम्स 2026 कर्टन रेजर, 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर उर्दू समाचार, 9:30 पर खेल पत्रिका, 9:45 पर फिल्म संगीत, 10 बजे आप सुनेंगे गीतों का गुलदस्ता, 10:30 पर आप सुनेंगे राग रजनी, 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 11:10 पर आप सुनेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। तो ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही समय में अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। शाम के 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से निशुल्क रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की। सरकार ने स्पष्ट किया, आम लोगों के लिए व्यक्ति से व्यक्ति यूपीआई लेनदेन रहेगा पूरी तरह निशुल्क। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच आज दिल्ली में खेला जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है।
2: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज इंदौर में ग्रामीण आबादी में पट्टे की जमीन पर रह रहे 50 लाख से अधिक परिवारों को स्वामित्व प्रदान करने के लिए निशुल्क रजिस्ट्री अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मालिकाना हक देने के प्रयास अब धरातल पर साकार हो रहा है।
3: अपने पूरे प्रदेश के 55 जिले, 10 संभाग और 23,000 से ज्यादा गांवों के अंदर कोई अपना प्रधानमंत्री आवास बना के बैठा है या निजी मकान बना के बैठा है, अपने सारे मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए ये 1 महीना 17 सितंबर से लगाकर 17 अक्टूबर तक घर घर जाके पटवारी के माध्यम से आपकी रजिस्ट्री कराने का अभियान चालू हो रहा है।
1: स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 के तहत भूस्वामियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रदेश में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उज्जैन में आज शाम दीपोत्सव के दौरान 30 लाख से अधिक दीये जलाए जा रहे हैं। नर्मदापुरम में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जबकि मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ लोक में 51,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। ग्वालियर, सिंगरौली, जबलपुर, बैतूल, खंडवा, मुरैना, श्योपुर और रायसेन में इस दौरान रक्तदान शिविर आयोजित किए गए।

धार में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने पौधारोपण कर त्रिवेणी हरित सेतु का लोकार्पण किया। नीमच, झाबुआ, आगरमालवा और अशोकनगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नए नियमों के तहत अब सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं महिला कर्मचारियों को समान वेतन, सुरक्षा और रात्रिकालीन पाली में काम करने के समान अवसर मिलेंगे। उद्योग जगत के लिए व्यापार को आसान बनाने के लिए एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक रिटर्न की व्यवस्था भी लागू की गई है। सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश के कार्यबल को सुरक्षित, सशक्त और भविष्य के लिए तैयार बनाने को लेकर एक बड़ी पहल माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना जिले के बमोरी क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने बमोरी में 7 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित डिग्री कॉलेज भवन और 3,08,00,000 रुपए की लागत से मुद्रा हनुमान विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने सिरसी में नवनिर्मित पुलिया का भी लोकार्पण किया और फिर सहरिया चौपाल में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सिंधिया जिला अस्पताल गुना में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में भी शामिल हुए और उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। भगवान विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। शहडोल जिले में शहडोल इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI में विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया गया। वहीं जबलपुर में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती गुरुवार को जबलपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। विश्वकर्मा समाज की तरफ से प्रदेश भर के अलग अलग शहर में पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। डिजिटल लेनदेन को सरकार ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले सभी UPI लेनदेन पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे। दोस्तों को पैसे भेजने, दुकानों पर भुगतान करने या QR कोड स्कैन करके लेनदेन करने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही रुपे डेबिट कार्ड से जुड़े UPI लेनदेन भी पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक की कमाई करने वाले छोटे विक्रेताओं पर भी कोई शुल्क लागू नहीं होगा, जिससे लगभग 96% व्यापारी लेनदेन पूरी तरह अप्रभावित रहेंगे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आज से 17 अक्टूबर तक सेवा सेतु कैंप लगाएगी। ये शिविर ब्लॉक और तहसील स्तर पर आयोजित किए जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। बात खेलों की करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की क्रिकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। बता दें कि भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। ताजा जानकारी मिलने तक अफगानिस्तान ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल के मुख्य प्रशिक्षक शिव कुमार प्रसाद को ISF जिमनेसियाड 2026 के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम की चयन समिति का सदस्य नामित किया गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 3 से 8 दिसंबर तक होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए U18 बालक और बालिका वर्ग के चयन ट्रायल 6 और 7 अक्टूबर को गोवा में होंगे। श्री प्रसाद चयन समिति के सदस्य के रूप में भारतीय टीम के चयन की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

102.5 मेगाहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज।

राम राम साहब, मैं दिया उमट आज आपकी अपनी ग्राम सभा में मालवी गीतारी गुंज में आप सभी लोगाहुर को स्वागत है। सब मजा में तो हो, केसतर कई दिन काट ली रहा हो या यूं कू कैसा कई मजा चाली रहा है। मालवी गीतारी गुंज कार्यक्रम में मालवी की ने साथ ही साथ गांव की और गांवों में जैसा लोकगीत गाए है वे तो आप और हर कार्यक्रम में सुनो ही है। रोज की तरह पहला अपनी ग्राम सभा में मालवी समाचार ने उकाबाद में अपनी गाँव की ने खेती किसानी की बात करांगा, तो सुनो पहला मालवी समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दिया उमट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 सम्मेलन को शुभारंभ करियो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 50 लाख ग्रामीण संपत्ति होर की निशुल्क रजिस्ट्री योजना को शुभारंभ करियो। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने धार में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित त्रिवेणी हरित सेतु को लोकार्पण करियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली का यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 को शुभारंभ करियो। 3 दिन चलवा वालो यह सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा होर को बढ़ावा देवा को केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने बतायो कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल का बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल करी है और दुनिया को भारत पे भरोसा बढ़ी रियो है। उन्होंने बतायो कि देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुई रियो है और मजबूत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही बड़ी ताकत है। भारत सेमीकंडक्टर उद्योग का लिए पसंदीदा गंतव्य बनवा की दिशा में लगातार प्रयास करी रियो है। प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र में 50 लाख निजी संपत्ति होर की निःशुल्क रजिस्ट्री का लिए स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना 2026 को शुभारंभ इंदौर में करियो गयो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का साथ अभियान की शुरुआत करी। मुख्यमंत्री का अनुसार एकापट्टा की जमीन पे रेरिया ग्रामीण परिवार की संपत्ति को स्वामित्व मिलेगा और भूस्वामियों होर के बैंक से ऋण प्राप्त करवा की सुविधा हो सकेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित घना सारा जनप्रतिनिधि मौजूद रिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर प्रदेशवासी होन के बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा ने अपनी सृजनशीलता और कौशल से सृष्टि को सुंदर स्वरूप दियो है। उनने बताया कि राष्ट्र निर्माण का प्रति प्रधानमंत्री मोदी की कर्मठता और सृजनशीलता सभी का लिए प्रेरणादायी है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आज से 17 अक्टूबर तक सेवा सेतु कैंप से लगाएगी या शिविर ब्लॉक और तहसील स्तर पर आयोजित करियो जाएगा ताकि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लाभ अधिक से अधिक पात्र नागरिक होर तक पहुंचाया जा सके। शिविर में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगावा की प्रक्रिया, सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन और ऋण सुविधा की जानकारी दी जाएगी। पंजीकृत सोलर वेंडर भी मौजूद रहेगा जो संयंत्र की लागत पर स्थापना प्रक्रिया की जानकारी देगा। कंपनी ने पात्र और इच्छुक उपभोक्ता होर से शिविर को लाभ उठावा की अपील करी है। महिला और बाल विकास विभाग ने अधिकारी होर और कर्मचारी होर की सेवा संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण का लिए नई व्यवस्था शुरू करी है। संभाग और जिला स्तर पर हर महीना में पहला और तीसरा बुधवार के दोपहर 2 से सांजे 5 बजे तक समस्या निवारण शिविर लगाया जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से लेकर जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी तक नियुक्ति, वेतनाम, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन और अन्य सेवा संबंधी मामला का आवेदन दे सकेगा। प्राप्त आवेदन उनको रिकॉर्ड रखो जाएगा और निराकरण की नियमित निगरानी करी जाएगी। विभाग ने कर्मचारी का वेतन और अन्य देखों को सामान को भुगतान सुनिश्चित करवा का निर्देश भी दिया है। धार में सेवा संकल्प अभियान का तहत DRP लाइन में त्रिवेणी हरित सेतु वृक्षारोपण क्षेत्र को सावित्री ठाकुर ने 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित अन्य पर्यावरण वानिकी क्षेत्र को लोकार्पण करियो और पौधारोपण करियो। एक ही पहल को उद्देश्य शहर में हरित क्षेत्र बढ़ानो और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देनो है। मंदसौर में सेवा संकल्प अभियान का तहत आज शिवना नदी का घाट पे साफ सफाई और श्रमदान करियो गयो। एमें राज्यसभा सांसद बंसी लाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, कलेक्टर दिव्यांग सिंह, जिला पंचायत CEO अनुकूल जैन सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी शामिल हुआ। अन्य अवसर पर श्री गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा करता हुआ सकारात्मक बदलाव लावा की काम करियो है। उनने सभी के पर्यावरण संरक्षण और शिवना नदी के स्वच्छ रखवा की शपथ दिलाई। प्रदेश में चीता परियोजना का 4 साल पूरा हो ही गया है। 17 सितंबर 2022 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर श्योपुर का कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाया गया चीता के भारत में बसा के यानी परियोजना को शुरुआत करी थी। परियोजना का 4 साल पूरा हुआ पे आज कुनो के टिकटोली गेट पे हजारों दीप जलाया जाएगा। वर्तमान में देश में 52 चीता है। इनमें 49 कुनो और 3 मंदसौर का गांधी सागर अभ्यारण्य में है। इनमें 32 चीता भारत में जन्मिया है। मालवी समाचार समाप्त।

मालवी समाचार का बात सुनो ग्राम सभा में मालवी गीतारी गूंज में मालवी लोकगीत जिसकी शुरुआत हम हमेशा लोकगीत का साथ करा है, तो सुनो यो प्यारो सो लोकगीत।

0: आकाशवाणी उज्जैन के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में है गिरधारी लाल जी पाटीदार, जो जैविक खेती करते हैं तथा अन्य फसलों की भी खेती के नए नए तरीके अजमाते हैं। गिरधारी लाल जी पाटीदार आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने श्रोताओं को, किसान भाइयों को बताना चाहते हैं। नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार। मैं गिरधारी पाटीदार, ग्राम गिनोदा, तहसील खातरो, जिला उज्जैन। मैं विगत 10 वर्षों से गाय आधारित खेती, जैविक खेती करता, और आज मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी प्रदेशवासियों, मित्रों को मैं जो अपने फार्म पर करता हूँ वो सब आपको जो जो होगा मुझे मेरी जानकारी में वो बात शेयर करूंगा।
0: जी जी सर, आप हमें बताइए कि आप किस प्रकार की खेती करते हैं।
1: ये हम हमारे इधर परंपरागत जो फसलें होती है अपने खेत में, वही बीज पहले हमने सबसे पहले देसी बीजों का चयन किया, जो हमारे इधर अपने पैतृक समय, पुराने समय से होते आ रही है। जैसे मक्का है, मूंग है, उड़द है, चवला
0: जी
1: की फली है, मूंगफली है। ये जो पहले भी होती आई थी, उनका देसी बीजों का हमने कलेक्शन करके अपने फार्मों पर लगाना चालू किया। फिर खाद के रूप में हमने केचुआ खाद चालू किया,
0: जी
1: कंपोस्ट खाद, जो कचरा मिला हुआ गोबर, उसको 2-3 महीने में उसकी एक प्रक्रिया है बनाने की, वो बनाने के बाद में हमने अपने फार्मों पर डालना चालू किया, और
0: जी
1: उसी से हम अपनी फसलें उगाते हैं।
0: जी तो आप किस किस प्रकार की खेती करते हैं, क्या क्या फसल उगाते हैं?
1: जी हमने अभी बताया ना, हम अभी मेरे पास वर्तमान में फसल है, मक्का है,
0: जी
1: उड़द है,

0: मूंग है, मूंगफली है, कुछ मात्रा में औषधि फसल में हल्दी है, हल्दी
1: जी
0: तो ज़्यादा है 2 एकड़ में है,
1: जी
0: मगर सफ़ेद मूसली है कुछ
1: जी आपको
0: सब।
1: हल्दी और सफेद मूसली की खेती जो आमतौर पर हमारे मालवा क्षेत्र में नहीं देखी जाती है, यहाँ फसल किस प्रकार आपको आया कि आप यहाँ फसल उगाएं और कुछ नई तकनीक का प्रयोग करें, कुछ नए आविष्कार करें?
0: ये कुछ नया करने के लिए अलग में, जब हम ये प्राकृतिक खेती सीखने के लिए महाराष्ट्र गए, गो
1: जी
0: विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवला पार, वहाँ गए, वहाँ से आने के बाद में जो परंपरागत खेती है उसका जो आवक है, लाभ किसानों को, वो एक सीमित मात्रा में मिलता है हमारे इधर।
1: जी
0: यदि हम औषधि फसलों की खेती करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा।
1: जी
0: उसी में हमने फिर ये औषधि फसलें लगानी चालू करी।
1: जी अच्छा, और आपको लगा कि आप जो पहले फसल करते थे और जैसे आपने नए आविष्कार के तौर पर हल्दी सफेद मूसली की खेती करना प्रारंभ किया, तो आपको क्या चेंजेस लगे, क्या बदलाव लगे, क्या फायदे हुए, आप प्लीज हमारे किसान भाइयों तक ये पहुंचाइए।
0: हमने पहले बीज का चयन किया, बीज के बाद में फिर वही बीज हमने अपने फार्मों पर लगाया, क्योंकि
1: जी
0: सफेद मूसली का बीज थोड़ा महंगा आता है, तो
1: जी
0: पहले हमने घर का बीज कर लिया।
1: जी
0: और हम किसान भाइयों को जो भी खेती करते हैं उन सबको कहेंगे, सबसे पहले बीज अपने घर का होना चाहिए। आप कोई सा भी बीज लगाओ,
1: जी
0: 1 साल कहीं से उसका चयन करके बीज अपने स्वयं के फार्मों पर यदि उत्पादन किया हुआ होगा तो
1: जी
0: हमको जो भी उत्पादन है उसका 10% मुनाफा यहीं से मिल जाएगा, बीज से ही। हर
1: जी
0: वर्ष नया बीज नहीं खरीदे, अपने घर का बीज उपयोग करे। हमने अपने फार्मों पर यही किया। और फिर उसकी हम हल्दी की प्रोसेस भी करके पाउडर बना करके बेचते हैं।
1: अच्छा, मतलब आप पैकेजिंग करके उसको एक प्रोडक्ट, जैसे हल्दी हम जो मार्केट से खरीदते हैं वो खुद आप बनाकर बेचते हैं? जी
0: हाँ, पूरा जो आप मार्केट में पाउडर मिलता है ना,
1: जी
0: ऐसा पाउडर हम आपको अपने घर पर बना करके देंगे।
1: जी
0: मतलब हमारा जो कार्य है, सबसे पहले किसान का अपना खुद का बीज हो,
1: जी
0: फिर खुद का खाद हो,
1: जी
0: जो केचुआ खाद है, जीवामृत खाद
1: जो भी
0: है,
1: जैविक खाद है,
0: कंपोस्ट,
1: जो गाय भैंस
0: हाँ जो भी
1: या
0: है,
1: जानवरों के मलमूत्र से जो बनता है।
0: फिर कुछ प्राकृतिक आपदा कीट प्रबंधक के लिए के वो कीट नियंत्रण जैसा जो भी है, वो सब अपने फार्म पर यदि किसान लोग बनाए, जो हम बना रहे हैं, हम सिखाते भी हैं किसानों को।
1: जी बहुत बढ़िया, मतलब आप एक प्रशिक्षण केंद्र भी चला रहे हैं।
0: हाँ, उसके बाद में
1: जी
0: जब फसल उत्पादन हो जाए तो हर किसान कोशिश करे, थोड़े से प्रयास में, जितनी मेहनत हम धूप में खड़े रहकर खेतों में करते हैं ना, उसी कम मेहनत में हम उन फसलों की प्रोसेस अपने घर पर कर लेते, सीमित संसाधन में। कोई ऐसे अलग से कोई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हमने वो मूंग उड़द की दाल यदि बनाई तो
1: जी
0: छोटे से में आटा चक्की जो है, पत्थर वाली, जो आड़े पाट वाली,
1: जी
0: उसी में हो सकती है। थोड़ी बहुत टूट फूट होती है मगर चलेगा वो,
1: अच्छा
0: यदि 1-2 बार में करके वो सीख जाएंगे हर किसान।
1: जी, तो आपने
0: और
1: जब हल्दी और सफेद मूसली की खेती करना प्रारंभ किया तो इसमें आपने मिट्टी का परीक्षण करवाया, आपने कैसे खेत में इसको लगाया?
0: नहीं, हमने मिट्टी का परीक्षण तो ये कृषि विभाग की टीम जो आती है हमारे यहाँ
1: जी
0: पर,
1: जी जी
0: वो टेस्ट, सोयल टेस्ट करके हर बार ले जाते हैं। वो बताते भी कि ये है ये है, मगर
1: जी
0: उनकी रिकमेंड होती है वो केमिकल का बताते हैं।
1: जी
0: कृषि विभाग वाले या अन्य कहीं भी पर भी जाएंगे, वो
1: जी
0: मिट्टी में क्या कमी है, वो ये तत्व तो आप बाजार से खरीद कर लाइए, ये डालिए।
1: जी
0: तो हमने परीक्षण तो करवाया मगर उसकी जो रिपोर्ट आई उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि
1: जी तो आप
0: हम
1: हमारे आकाशवाणी के
0: अपने हिसाब से
1: श्रोताओं
0: चलते
1: को,
0: हैं।
1: जी, आप हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह खेती करनी चाहिए या किस तरह नई तकनीक को अपनाया जा सकता है, नए नए आविष्कार खेती के माध्यम से किए जा सकते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि आप प्रशिक्षण केंद्र भी चलाते हैं, जो मुझे अभी अभी पता चला है, और ये बहुत ही रोचक सी बात मुझे लगी कि एक किसान किसानी के साथ साथ, मतलब खेती किसानी के साथ साथ वो प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है, वो लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि उन्हें बहुत प्रकार के रोजगार मिल सके, वो अलग अलग तकनीक को अपना सके। तो आप प्लीज कृपया आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो किस तरह से नई नई खेती करके, मतलब अपनी खेती में अपनी जमीन पर कुछ अलग उगाकर, कुछ अलग आविष्कार करके रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

0: हैं और नए नए किसानों को अपने साथ जोड़ सकते हैं।
1: सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यदि हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ यदि बढ़ना है,
0: जी
1: और बढ़ना नहीं, हमको मजबूरन बढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो 4 साल बाद
0: जी
1: आना
0: बिल्कुल
1: पड़ेगा, तो अब गाय पालना चालू करें, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। फिर
0: जी
1: गाय से हमें गोबर मिलेगा,
0: जी
1: गोबर और गोमूत्र दोनों मिलेगा। फिर
0: जी
1: बीजों का अभी भी समय है,
0: जी
1: ये जो बाजार में हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, इनके पीछे नहीं भागते हुए देसी बीजों का उपयोग करें।
0: जी
1: देसी बीजों में प्रोटीन से ज्यादा होते हैं, मानव शरीर के लिए जो जो भी तत्व चाहिए वो देसी बीजों में ही अधिकतम मिलेंगे। हाइब्रिड
0: जी
1: में तो उत्पादन अधिक आएगा मगर प्रोटीन उनमें बहुत कम आएगा। देसी बीजों का उपयोग करें, अपने खेतों में बीमारियां भी कम आएगी देसी बीजों में, और जो भी अपन उत्पादन करें जितना भी हो सके अपन कोशिश करें कि हम उसकी भी या तो हम उसकी प्रोसेस कर ले या उसकी साफ सफाई करके हम डायरेक्ट मंडियों में ना बेचते हुए किसी उपभोक्ता को दे दें।
0: जी आप किस खेती, मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप किस फसल की खेती करने के लिए हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान श्रोताओं को, किसान भाइयों को प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि कौन सी फसल है जब वो प्रारंभ करें कि कुछ नई तकनीक का प्रयोग करें, तो कौन सी फसल है जो कम समय में, कम लागत में और कम मेहनत में जल्दी कुछ कर सके?
1: फसल तो बहुत सी है, एक दो फसल का क्या नाम लूँ मैं,
0: जी
1: मगर फसल का ऐसा होता है, फसल चक्र का समय, मौसम और वहाँ की वातावरण जो है, जिस फसल का हर
0: जी
1: 20-25 किलोमीटर में एक फसल के लिए वातावरण चेंज हो जाता है
0: जी जी
1: प्राकृतिक रूप से। कोई पथरीली जमीन है, कोई समतल जमीन है जहाँ किसी में जल भराव होता है, तो
0: जी
1: वहाँ अपनी जमीन के हिसाब से फसलों का चयन करे किसान,
0: जी
1: यहाँ पर कौन सी फसल ठीक होगी, या पहले जो हमारे पूर्वज वहाँ कौन सी फसल लेते आए थे,
0: जी
1: उस हिसाब से यदि फसलों का चयन करेंगे। मैं यहाँ से बता दूं कि
0: जी
1: मेरे खेत में उड़द बहुत बढ़िया होती है,
0: जी
1: मगर यहाँ से जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर बैठा किसान, वो कैसे वहाँ उड़द कैसे होगी जो
0: जी तो
1: मैंने देखी भी नहीं है।
0: एक तरह से आप कह सकते हो कि मिट्टी का परीक्षण करवाना उचित उपाय रहेगा।
1: बिल्कुल उचित उपाय रहेगा मिट्टी का परीक्षण करवाना, और वहाँ की जो रिकमेंड होती है उनको यदि हम मान करके करें, तो आजकल जो अंधाधुंध अधिकतर केमिकल का जो उपयोग हो रहा है,
0: जी
1: मिट्टी परीक्षण से ही इसका 50% उपयोग कम पड़ जाएगा,
0: जी
1: ये मेरा अनुमान है। क्योंकि हम देखते हैं अड़ोस पड़ोस में, या हम भी 10 वर्ष पहले केमिकल वाली खेती ही करते थे,
0: जी जी
1: तो मगर बिना जानकारी हम कुछ भी डाल रहे हैं खेत में, खेत को क्या आवश्यकता है, मिट्टी परीक्षण तो बहुत जरूरी है आज के समय में।
0: जी जी बहुत बढ़िया, आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है, विश्वास है कि हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं, जो भी अभी यहाँ सुन रहे होंगे, जो भी किसान भाई, सब ग्राम सभा सुनते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव संदेश है, एक सकारात्मक सोच की तरफ एक बड़ा कदम है कि वो नई नई तकनीक से हल्दी, सफेद मूसली आदि की खेती कर सकते हैं, मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं, और एक रोचक सी बात कि वो पहले सीख कर अपना प्रशिक्षण केंद्र भी चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी लाल जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें खेती किसानी से निकाल कर हमारे श्रोताओं के लिए एक संदेश देने के लिए निकाल, आप बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये धन्यवाद सभी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: मालवी कहावतों में छुपियो जीवन ज्ञान। मालवी बोली खाली बोलचाल को माध्यम नहीं है, बल्कि एमए मालवा की संस्कृति, ग्रामीण जीवन, अनुभव और लोक बुद्धि भी समाई हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई रही मालवी कहावत छोटी सी बात में जीवन को बड़ो संदेश दे है। किसान, मौसम, खेती, परिवार, मेहनत और व्यवहार, हर विषय में मालवी लोक जीवन में कहावत मिले है। जिसो बोवो वैसो काटो, बूंद बूंद सु घड़ो भरे, मनुष्य जसो कर्म करे ओको सो परिणाम मिले है, थोड़ो थोड़ो करके बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सके है। जैसा आज जो आपने गिरधारी लाल जी की बात सुनी, ओको भी यही संदेश है कि थोड़ो थोड़ो काम करके आप खेती किसानी में नई नई तकनीक आजमा सको है, जैविक खेती कर सको है। मेहनत करी तो माटी भी सोना दे, ईमानदारी से मेहनत करवा पे साधारण जमीन भी अच्छी उपज दे सके है। घर री मुर्गी दाल बराबर, घर में मौजूद चीज या व्यक्ति को महत्व को कई बार हम पहचान नहीं पावा हैं। जैसे यह कहावत रहे घर री मुर्गी दाल बराबर, वैसे मालवी की घनी सारी कहावत है जैके बोल सका अपन की रोजमर्रा की जिंदगी में भी आजमायो जाए है, घनी सारी बात रहे। एक बाद एक और मालवी गीत सुनो, फिर थोड़ी और बात, और आज टेम भी हो गई वालो है। खैर अभी तो थोड़ा घनो टेम है बातचीत को, पर टेम आप सबके याद रखनो है 7:21 से 8 बजे तक आपकी अपनी ग्राम सभा आकाशवाणी उज्जैन का केंद्र से। सुनो यो प्यारो सो मालवी गीत।

जैविक खेती मिट्टी की सेहत, किसान की समृद्धि। खेती खाली अन्न पैदा करवा को माध्यम नहीं है, बल्कि हमारा गांव और किसान का जीवन को आधार है। आज खेती में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखवा का लिए पानी की बचत करना और खेती की लागत के संतुलित रखनो घणो जरूरी है। अन्य दिशा में जैविक खेती एक उपयोगी कृषि पद्धति हो सके है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक पर निर्भरता कम करता हुआ गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और जैविक कीट प्रबंधन जैसा तरीका का उपयोग किया जा सके है। मिट्टी की जांच जरूर करवाओ। मिट्टी फसल बोवा से पहला मिट्टी की जांच करवा से यो पतो चले कि खेत में कनी पोषक तत्व की कमी है, जैका आधार पर खाद और उर्वरक को संतुलित उपयोग करियो जा सके है। खेत में जैविक खाद को उपयोग करो। गोबर की अच्छी तरह तैयार खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ावा से मदद करे है। हर साल एक ही फसल लेवा का बजाय अलग अलग फसल के चक्कर क्रम के लेवा से मिट्टी पर एक ही पोषक तत्व को लगातार दबाव कम करियो जा सके है। दलहनी फसल को फसल चक्र में शामिल करनो भी उपयोगी रहे। प्राकृतिक तरीका से कीट प्रबंधन, खेत में कीट दिखाई देवा पे तुरंत रासायनिक दवा को छिड़काव करवा का बजाय पहला कीट की पहचान करो। नीम आधारित उत्पाद, जैविक कीटनाशक और खेत की निगरानी जैसा उपाय परिस्थिति होर का अनुसार अपनाया जा सके है। पानी की बचत करो। ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई तकनीक खेत में नमी संरक्षण और उचित सिंचाई समय को उपयोग पानी बचावा में मदद कर सके है। जैविक खेती में घणो धैर्य भी रखनो जरूरी रहे है। जैविक खेत की ओर बदलाव को एक प्रक्रिया है। किसान के अपना क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और बाजार की स्थिति के ध्यान में रख के धीरे धीरे उचित पद्धति अपनानी चाहिए। तो ऐसी सारी घनी सारी जानकारी मैंने आज आपके दी। ने आपके यो भी बतायो कि आप जैविक खेती किस तरह कई कर सको है, कई कई फसल कर सको है। आपके गिरधारी लाल जी पाटीदार की पूरी उनने आपके एक संदेश भी दियो है उनका माध्यम से कि वे कैसे हल्दी और सफ़ेद मूसली की खेती करी रहा है। तो चलो एक और गीत, फिर टाइम भी हो रही हो तो सुनो यो गीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: तो सांप टेम भी हुई क्यों है, फेल एन इस टेम पे काल 7:21 से 8 बजे तक आपकी अपनी ग्राम सभा तैयार रहेगी। राम राम साहब, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मालवी की तरी गूंज FM 102.5 MHz एवं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। कुछ ही समय में एशियन गेम्स के 20वें एडिशन चीयर फॉर भारत का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

एक मैदान, एक ट्रैक, एक कोर्ट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंच

0: करता है। आईटी नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैट पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेम पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं, देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का है, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटे। जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है, पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी, तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमिना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति याराजी वापसी करी है, राष्ट्रमंडल खेलों में वो भार रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे, जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है, अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर गुलवीर है जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे, डेकाथलन में तेजस्वीन शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है, तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
0: सायंतन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया, चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें, थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाला की जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है, जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था, उसका एक्लमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है तो। लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट्स जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का, एक्लमेटाइज करने का व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहाँ जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले, उससे काफी बचा रहा है।
0: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कुशारी भी एक एथलीट हैं जो हाई जंप में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
1: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम हैं, उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे। तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
0: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
2: देखिए, अब नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस कर, तो रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे, तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाउ से, उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
0: हाई जंप में
2: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहाँ पे वो 8th आई है 1.77 मीटर। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रिटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आइची नगोया एशियन गेम्स।
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
1: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहाँ पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी, कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहाँ पार पाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं, विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहाँ पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं। लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहाँ से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
0: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
2: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पे रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना एशियन गेम्स पे। विमेंस टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे फिफ्थ आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखती हुए काफी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुलटन की जो साइड है उनको भी काफी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
1: फोर्थ प्लेस
2: फिनिश जब हम लोग हॉकी वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लेमेटाइज और भी करने में, वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
0: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से। इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम पांचवें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 21-22 साल की 11 लड़कियां। तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शोर्ड मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अन्ना एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है, लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा। सविता लेजेंडरी प्लेयर है और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी

तो सविता का अनुभव है, उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पे इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है और भारतीय टीम के पास एक पूरा

0: एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है. उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए. तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है. और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी.
1: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर. बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था. 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था. इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था. और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी. मेंस डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी. हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी. महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंह भी होंगी. मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी. मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी हैं अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है.
0: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है. और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे. लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा, चिराग और सात्विक. पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा. और लड़कियों में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का. तो यहाँ पर त्रिशा और जौली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए.
1: साइंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है, और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं. जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं. इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें. किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसे करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. मैं बोलना चाहूंगा हंजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं. और ये एशियन लेवल है तो एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स. लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोरल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग. उसके बाद मैं आऊँगा आयुष शेट्टी में. आयुष शेट्टी ने एशियन चैम्पियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में, इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैम्पियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए. तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है, एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है. एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज़ भी हमें देखने को मिल सकता है. तो देट इज़ ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन, जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आईजीनक होया में वो बाहर आए.
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है. लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर. कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है. पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था. वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था. मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है, और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है. लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
0: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण, तो पहले ये होता था कि एशियन गेम

0: में जब टीम कंटिजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का, लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हाँ, सायंतन पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली, महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
2: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत के बाद जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले PKL की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है PKL से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का PKL में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो यू मुंबा के कैप्टन भी है, तो काफ़ी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहाँ पे भी एक टीम का बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेंस टीम का, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का, स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कंपटीशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी। मुना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
0: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए, तो 4 महिलाएं वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार 3रा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है, पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और 4थे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में, और हरजिंदर कौर है 69 किलो में, तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 चीनी जोड़ी को हराकर विमेंस डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी, क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
2: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको, गुजरात में भी है, बैंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था, कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया है कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल स्टैंडिंग्स में, तो ये काफ़ी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनुषा दिया चाताले, जैसे आपने बात किया,

0: उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहा है। तो शरद कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मानुष शाह, मानव ठक्कर, दिया चिताले, इन तीनों में से काफ़ी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था, जैसे आपने जिक्र किया। तो इनसे आई थिंक मेन्स टीम, वुमेन्स टीम, काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, जी हाँ, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी उम्मीद यही है। टक्कर कहीं देखती है मोना?
2: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
1: सायंतन, कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
0: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे हैं, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग, मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे, क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते, एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पे रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहा है और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
1: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मोना पार्थ सारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया आनंद,
0: थैंक यू सो मच।
1: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, जिसे लिखा शैलेंद्र ने, धुन एसडी बर्मन की है, फिल्म काला बाजार।

कश्मीर की कली। लीजिए इस फिल्म में सुनिए एस एच बिहारी का लिखा ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे गाया मोहम्मद रफी ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 8:45 होने को है। अब समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
2: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
4: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेन देन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
2: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
1: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
8: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
7: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर

0: 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमीकॉन 2

सिफर प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वो तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा, जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल एतमाद मैन्युफैक्चरिंग

0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने, और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: वजीर आजम मोदी ने उजागर किया कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से वसी हो रहा है और इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के नए मौके फराहम कर रहा है।
0: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की, इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है, और अब ये भी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत की मईशत तरक्की कर रही है जबकि मुल्क पर दुनिया का एतमाद भी बढ़ रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबरा मीटिंग का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत ने कामयाबी के साथ इस सरबरा मीटिंग की मेजबानी की जहां नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि ये भारत पर बढ़ते हुए आलमी एतमाद का एक और सबूत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि अगला कदम सेमिकॉन 2.0 के जरिए सनत को फरोग देना है जो 6 अहम सुतूनों सेमीकंडक्टर डिजाइन, मशीनरी और मवाद, सिलिकॉन कंपाउंड, लॉजिक फैब्रिकेशन और तहकीक व तरक्की पर मरकूज है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत का मकसद सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में चिप डिजाइन के सेक्टर में कम से कम 200 स्टार्टअप्स और कंपनियों की मदद करना है। बाद में नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 2.0 इको निज़ाम के तहत अब तक तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हो चुके हैं। रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर अमरीका की जानिब से 100% महसूल आयात करने वाले कानून के मंजूर होने के बाद भारत ने आज कहा कि वो अपने माशी मफादात के तहफ्फुज़ और तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत अपने 140 करोड़ शहरियों की तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और मुख्तलिफ ज़राए और बदलती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तवानाई हासिल करने का सिलसिला जारी रखेगा। वजारत ने कहा कि हालिया महीनों में इस मुद्दे पर अमरीका के आला सतही हुकाम से बातचीत हुई है। भारत ने दो तरफा ताल्लुकात पर उसके मुमकिन असरात वाज़े कर दिए हैं। वजारत खजाना कल से नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब सफर के लिए माली एयानत के मौजू पर दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। वजारत ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में रियासत और मरकजी खितों के वजराय खजाना और खजाने के सेक्रेटरीज शामिल होंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और कई रियासतों के वज़राए आला और वज़राए खजाना भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है। उन्होंने भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे और वजीर खारजा डीएन ढुंग्याल के हमरा भूटान आने वाले भारतीय शहरियों के लिए बैन अल-अक़वामी यूपीआई के दूसरे मरहले का मुश्तरका तौर पर आगाज किया। डॉक्टर जयशंकर थिम्पू भूटान के दो रोजा दौरे पर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई के इस्तेमाल के साथ ये इकदाम भारत और भूटान के दरमियान यूपीआई पर मबनी दो तरफा डिजिटल अदायगी की कनेक्टिविटी को मुकम्मल करता है। इस मौके पर भारतीय इदारों में आला तालीम हासिल करने वाले भूटान के तलबा के लिए नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप स्कीम में तौसी से मुतालिक मफाहमतनामे का भी तबादला किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने इसे तालीम और सलाहियत साजी के शोबे में भारत और भूटान के बाहमी तआवुन को मजीद आगे बढ़ाने वाला कदम करार दिया। जनाब जयशंकर ने वजीर आजम टोबगे और भारत में तैयार करदा 54 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सौंपी। उन्होंने कहा कि भारत ई मोबिलिटी और पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भूटान

0: की पेशकदमी की हिमायत कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 76वीं सालगिरह के मौके पर एक माह तक जारी रहने वाला मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान शुरू किया। जनाब मोदी 1950 में आज ही के दिन गुजरात के महसाना जिले में वाक़ एक छोटे से शहर वडनगर में पैदा हुए थे। इस अभियान का मकसद वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अवाम खिदमत के अज़्म को उजागर करना और लोगों, खासतौर पर नौजवानों को अवाम की खिदमत के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। यह मुहिम 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के वजीर आला के तौर पर नरेंद्र मोदी के हलफ लेने के 25 साल मुकम्मल होने के मौके से भी मुंसलिक है। यह मुहिम अगले माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस मुहिम का आगाज जनाब नरेंद्र मोदी के आबाई शहर वडनगर से किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी को मुल्क मुकदम के उसूल से बेहतर तौर पर बयान किया जा सकता है। इस अभियान के पहले दिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क भर में खून अतिया करने के कैंप लगाए गए हैं। बीजेपी सदर नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया और पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के साथ खून अतिया किया। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। आज शाम आशीर्वाद का दिया प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिसके तहत खानदानों, खासतौर पर सरकारी स्कीमों के मुस्तफिदीन ने अवामी खिदमत में जनाब मोदी के 25 साल मुकम्मल होने पर तशक्कुर का इजहार करते हुए दिए जलाए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के वजीर आजम बनियामिन नेतन्याहू समेत दुनिया के कई रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को उनके 76वें यौम पैदाइश पर पुरजोश मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनकी क्यादत और ताउन के लिए भरपूर सताइश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस दौरान वो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अवामी फलाह बहबूद के पुख्ता अज़्म के साथ काम करते रहे हैं। सेवा और सुशासन के विजन से मुतासिर होकर हुकूमत जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए 2047 तक विकसित भारत के हदफ के लिए काम कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज में माई गोव प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके लिए इस विजन को अमली शक्ल देने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
1: 2014 में जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभाला तो उनके तर्ज हुक्मरानी में एक अहम तस्वुर नुमाया तौर पर सामने आया। ये तस्वुर आवाम और शहरियों के दरमियान बराह रास्त और मुसलसल राबता कायम करना है। इस नज़रिए के तहत जुलाई 2014 में भारत के शहरियों की शमूलियत के लिए प्लेटफॉर्म माई गोव का तस्वुर पेश किया गया और इसे शुरू किया गया। ये प्लेटफॉर्म हुक्मरानी और पॉलिसी साजी में अवाम की साझेदारी को यकीनी बनाने का एक अहम जरिया बन चुका है।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माय गोव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है।
1: जुलाई 2026 तक तकरीबन 6.5 करोड़ शहरी माई गोव प्लेटफॉर्म पर अपना इंदराज कर चुके थे। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: देही तरक्की व ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने अहलकारों को हिदायत दी है कि वो उन मौाक़ों की निशानदही करें कि किस तरह विकसित भारत जी राम जी स्कीम गाँवों को तरक्की याफ्ता और खुदकफील बनाने में माविन साबित हो सकती है। स्कीम से मुतालिक एक कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने जोर देकर कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ इस स्कीम को पायदार असासे कायम करने और देही बिरादरियों के लिए देरपा फायदे और देही मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए कारामद साबित होना चाहिए। जनाब चौहान ने सभी अहदेदारों से अचानक मुआयना करने की हिदायत की ताकि स्कीम के तहत शुरू किए गए कामों का जायजा लिया जा सके। कोयले की वजारत ने आज नई दिल्ली में कमर्शियल कोयला कानून की नीलामी के 16वें दौर का आगाज किया। इस मरहले में 25 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी की जा रही है जिनमें 21 काने मुकम्मल तौर पर और 4 जुजवी तौर पर दरियाफ्त शुदा हैं। ये काने कोयला पैदा करने वाली 9 रियासतों में वाक़ हैं। वजारत के मुताबिक आज की तारीख तक कुल 147 कोयला कानों की नीलामी की जा चुकी है जिससे सालाना मुतवक्का आमदनी 47,500 करोड़ रुपए से जायद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE से कहा है कि वो छठी जमात के तलबा के लिए लाजमी तौर पर 3 जबानों की पॉलिसी को 2027 के तालीमी सेशन तक मौखर करने पर गौर करे ताकि तलबा को नए निजाम में मुंतकिल होने में आसानी फराहम हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश आज पूरे मगरबी बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर खवातीन से खिताब करते हुए वजीर आजम जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अन्नपूर्णा योजना मगरबी बंगाल में खवातीन को बाख्तियार बनाने के अमल को तेज करने में अहम रोल अदा करेगी। मर्दों की क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3 मैचों की बैन अलाकवामी T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारत ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए हैं और अफगानिस्तान को जीत के लिए 222 रन का निशाना दिया है। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत शुरुआती 2 मैच जीतकर पहली ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। और अब खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिले एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वो तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयद करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम जनाब मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में 1 माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाकवामी मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है
5: सेवा संकल्प अभियान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 बरस पूरे होने पर देश और प्रदेश में चलाया जा रहा है। राजनीति और शासन में जनसेवा का सफर जब एक लंबा रूप लेता है तो वह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं रह जाती बल्कि देश के विकास का अध्याय बन जाती है। आज जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 बरस पूरे होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान की चर्चा कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ अतीत के आकलन का नहीं बल्कि भविष्य के रोडमैप का भी है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक नेतृत्व से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक शासन नीतियां और जनसंवाद के कई नए मानक स्थापित किए गए हैं। आज इसी सेवा संकल्प अभियान के विभिन्न पहलुओं, उपलब्धियों और कड़े फैसलों के पीछे की दृष्टि को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास और वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश उपाध्याय जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्ण मोहन झा जी। आप दोनों का ही हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर।
6: धन्यवाद अभिषेक।
7: धन्यवाद।
5: चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल गिरीश जी मेरा आपसे है, सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष की निरंतरता, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर होती है। इस पूरे कालखंड को और सेवा संकल्प अभियान को आप किस नजरिए से देखते हैं?
7: देखिए अभिषेक जी, यहाँ एक छोटा सा मैं फर्क करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो सार्वजनिक जीवन है वो तो 25 वर्ष से कहीं अधिक का है
5: जी।
7: हम जब बात कर रहे हैं तो वो 25 वर्ष सरकार के मुखिया के रूप में उनके कामकाज की बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जब लगभग 2.5 दशक की जो यात्रा है, ये ढाई दशक की यात्रा शासन की जिम्मेदारी संभालने की यात्रा है
5: जी।
7: और इस

0: को मैं तीन चरणों में देखता हूं। इसमें पहला चरण जो है वह गुजरात में प्रयोग का है, जहां पर कि ग्रामीण बिजली की व्यवस्था, कृषि महोत्सव, किसान की सरकार तक पहुंच, कन्या शिक्षा, शाला प्रवेशोत्सव, बालिका शिक्षा, स्वागत जैसा कार्यक्रम जो तकनीक पर आधारित संपर्क था लोगों का, और वहां पर एक तरीके से समुदाय को लक्षित करके काम हुआ
1: जी।
0: दूसरा चरण इसका राष्ट्रीय विस्तार का है
1: जी।
0: 2014 के बाद जनधन, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, ये इस तरीके के तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो पूरे देश को अपने दायरे में लेते हुए उन्होंने अपने काम को विस्तार दिया था।
1: जी।
0: और फिर तीसरा चरण है जो सेचुरेशन और विकसित भारत का है, यानी अब केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि इतने करोड़ लोगों को हमने लाभ दे दिया, इतने करोड़ लोगों तक हमारी पहुंच बन गई। सवाल यह है कि पात्र लोगों में से कोई छूट न जाए, जो छूटा हुआ है उस तक पहुंच बनाना। इसलिए सेवा संकल्प अभियान को मैं केवल 25 वर्षों की उपलब्धियों के उत्सव के रूप में नहीं देखता हूं, मैं इन 25 वर्षों के अनुभव को आगे की जिम्मेदारी से जोड़ने के अवसर के रूप में भी देखता हूं।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। अगला सवाल कृष्णमोहन जी आपसे है मेरा। अगर हम गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कई मायनों में ऐतिहासिक भी रहा है। इस पूरी यात्रा में हमारे प्रधानमंत्री की राजनीतिक शैली की सबसे बड़ी खासियत आप क्या समझते हैं?
2: देखिए अभिषेक जी, जिस समय जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बहुत जो स्थितियां थी बड़ी विकराल रूप ले चुकी थी। गुजरात की जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, कोई टिक नहीं पा रहा था। ऐसे दौर में लग रहा था कि कैसे कोई व्यक्ति वहां सर्वाइव कर पाएगा। सबसे बड़ी चुनौती वहां पे स्थायित्व को लेकर के थी, व्यक्ति के स्थायित्व की लेकर के थी। भाजपा निश्चित रूप से वहां पावर में थी, लेकिन उसको और पावरफुल बनाने के लिए बहुत गहरे निर्णय की जरूरत थी। और जब राजनीतिक अस्थिरता होती है, बहुत जिस ढंग से वहां पे आप देखे होंगे कि राजनीतिक उठापटक का दौर था, पार्टी टूट रही थी, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया 2001 में। और उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी जो प्लानिंग का ही परिणाम था कि 2014 तक वहां मुख्यमंत्री रहे, गुजरात देश में विकास के मॉडल के रूप में डेवलप हुआ। यदि इन 14 वर्षों में यदि आप देखते हैं कि 2001 से लेकर 14 तक का, तो गुजरात में जितनी नई इंडस्ट्रियां लगी, जो सीक यूनिट थी वो तेजी से बढ़ी, गुजरात का विकास बहुत तेजी से हुआ। और यही वजह है कि आज भी हम बात करते हैं तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात को आदर्श के रूप में देखते हैं। तो जब 2014 की बात भी मैं जब करता हूं, जब मोदी जी को कहा गया कि अब वो भारत की कमान संभालेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो बड़े बड़े दिग्गज थे, क्योंकि मैंने लगातार 2012 से उन पे आर्टिकल लिखना शुरू किया था, तो मेरे को ध्यान है, मैंने दो किताबें भी लिखी हैं
1: जी।
2: तो 2012 में जब उनको उनके नेतृत्व में ये हुआ कि फिर से मुख्यमंत्री बने वो, और उसके बाद ये तय किया गया कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में हुआ कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इनको चुनाव की कमान सौंपी जाएगी
1: जी।
2: जो भाजपा के तमाम दिग्गज थे, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह, जैसे राजनाथ सिंह तो खैर उनके साथ में थे
1: जी।
2: ऐसे में उनको आगे लाया गया, और आप देखिए कि उनके नेतृत्व का चमत्कार था कि 2014 में वो प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने ली 26 मई को, और उसके बाद से बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि यूपीए के शासनकाल में जिस ढंग से करप्शन लगातार उठ रहा था, रोज आए दिन कोई ना कोई करप्शन के मामले आते थे
1: जी।
2: और परिस्थितियां देश की बड़ी डावाडोल थी
1: जी।
2: अब इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि जब प्रधानमंत्री पहली बार कोई भाषण दे रहा हो लाल किले में, तो उसको ये बात करनी पड़ रही कि भैया हमें दिवाली की जरूरत नहीं है, लेकिन घरों में शौचालय की जरूरत है, बेटियों की सुरक्षा की जरूरत है, हमें दिवाली हम बाद में स्थापित करेंगे। और उन्होंने 2 अक्टूबर को उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आप देखिए कि जो स्वच्छता अभियान भारत में, क्योंकि गिरीश जी ने बहुत करीब से राजनीति को देखी है, वो समझते हैं कि किसी लीडर की मास अपील कैसे हुआ करती थी। यदि लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, मुरारजी देसाई की बात करें, तो उनकी अपील को लोग स्वीकारते थे, लेकिन एक लंबा अंतराल हो गया था कि किसी लीडर की अपील को स्वीकारना बड़ा कठिन था। लेकिन वैसे में आप देखिए समग्र स्वच्छता अभियान जब चला, तो जब आप सड़क में कचरा डालने के लिए बिल्कुल निसंकोच डाल देते थे, लेकिन जब अभियान जब चला तो आपको नैतिकता का पता चला और आप अपने दायित्वों का निर्वहन करना शुरू किए। तो उस देश की कमान एक प्रधानमंत्री के हाथ में आई जिसको स्वच्छता की बागडोर भी संभालना था, स्वच्छता की अपील भी करना था, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी परिस्थितियां क्या रही होंगी। और ऐसे दौर में उन्होंने कार्य संभाला और बखूबी निभाते हुए 2019 का चुनाव उन्होंने जीता, और 2024 में भी हमने देखा कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, कहीं ना कहीं जो स्वच्छता आंदोलन शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल से, वो एक ऐसा अभियान बनकर आया जो कि आज हम स्वच्छता को जी रहे हैं। क्योंकि इसके पहले कई सरकारों को हमने देखा, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई सारी बातें की गई, लेकिन जिस रूप में आज वो अभियान घर घर का हिस्सा बन चुका है, उस रूप में पहले कभी नहीं हुआ। अगला सवाल गिरीश जी मेरा आपसे है, अब अगर हम बात करें किसी भी देश की शासन प्रणाली की, तो शासन प्रणाली का जो तरीका होता है वो ही देश के सकारात्मक नतीजों को तय करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कार्य संस्कृति और प्रशासन के तरीकों में क्या कुछ बड़े बदलाव आए हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: अभिषेक जी, मोदी सरकार की जो शासन शैली है उसको समझने के लिए सिर्फ उनके द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं को ही देखना नहीं होगा
1: जी,
0: बल्कि सरकार काम कैसे करती है, सरकार को काम कैसे करना चाहिए, इसमें जो बदलाव आया है उसको देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला बदलाव जो मैं समझता हूँ वो है मिशन मोड पर काम करना
1: जी।
0: किसी भी सरकारी कार्यक्रम को लें अगर, तो विभाग योजना बनाकर देते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन समयबद्ध अभियान के रूप में उसको लेना। और जैसा अभी कृष्ण मोहन झा जी ने कहा भी कि स्वच्छ भारत इसका सबसे बड़ा और सबसे बिल्कुल सार्वजनिक रूप से देखे जा सकने वाले उदाहरणों में शामिल है
1: जी।
0: दूसरा है कि तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, इस समय टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों के लिए कैसे सुविधाएं जुटा सकती है, तो हम अगर देखें तो जनधन, आधार, मोबाइल यानी पूरी जैम व्यवस्था और डायरेक्ट बेनिफिट की जो स्कीम है, सीधे सहायता लाभार्थियों तक पहुंचाना, उसके खातों तक पहुंचाना, और इसमें बिचौलियों और लीकेज को बीच में से हटाना
1: जी।
0: ये एक बड़ा काम हुआ है। तीसरा है कि उसका किसी भी काम की प्रत्यक्ष समीक्षा और मॉनिटरिंग। और मैं अगर पीछे थोड़ा सा जाएं तो इसकी जड़ गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए स्वागत जैसे प्रयोग में दिखाई थी, जहां पर के लोगों की समस्याओं को सीधे सुना जाता था और तकनीक के जरिए वो नागरिकों से बात करते थे, समीक्षा करते थे। तो ये एक अलग तरीका है। आगे चल के उन्होंने प्रगति योजना केंद्र में लागू की। चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है कन्वर्जेंस, तमाम योजनाओं को एक साथ मिलाकर लोगों के हित के लिए काम करना। बहुत सारी योजनाएं समन्वित रूप से लोगों के जीवन को किस तरीके से सुविधाजनक बना सकती हैं, उनकी परेशानियों को कम कर सकती हैं, तो कुल मिला के ये। और पांचवा है कि सैचुरेशन, मतलब जो छूट गया है
1: जी,
0: उसको भी पहचान करके, उसको भी चिन्हित करके उस तक उन योजनाओं का लाभ उठाना। तो पहले सरकार की सफलता का पैमाना यह था कि उसने कितनी योजना बनाई और कितना पैसा खर्च किया, लेकिन अब उस पूरे विचार का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसका लाभ जमीन पर किसको और कितना मिला, ये फर्क है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी आपने तकनीक की बात करी, कई सारी ऐसी योजनाएं शुरू की गई जिनकी मॉनिटरिंग में तकनीक का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही जो DBT और जनधन खातों की योजना को शुरू किया, उसके परिणाम आज दिखाई पड़ रहे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि कितना दूरदर्शी कदम उस वक्त 2014 के कार्यकाल में सोचा गया था, वो आज उसके सकारात्मक परिणाम हमको प्रभावी रूप में दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण मोहन जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, ढाई दशकों के इस लंबे दौर में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए और कई चुनौतियां भी आईं, आप इस दौरान की सबसे बड़ी उपलब्धियों और चुनौतियों को किस रूप से देखते हैं?
2: देखिए अभिषेक जी, मोदी जी का जो कार्यकाल है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है
1: जी,
2: और इस कार्यकाल को किसी एक उपलब्धि के तौर पर देखना नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भारत की कमान NDA के पास आई तो उस समय भारत की वित्तीय स्थिति, हमारी विदेश नीति और हमारी आंतरिक स्थितियां बहुत विपरीत थी, बहुत अनुकूल नहीं थी। ऐसे में सबसे पहला उनका अभियान था समग्र स्वच्छता का अभियान
1: जी,
2: फिर उन्होंने जनधन की जो योजना खोली, आप देखिए कि करोड़ों जो लोग थे जिनके खाते नहीं थे, किसी और खातों में पैसे जाया करते थे, जैसे कि अभी गिरीश जी बता रहे थे कि जो डायरेक्ट लाभ की जो बात हुई
1: जी,
2: जो लाभान्वित व्यक्ति को पहुंचना करके बिचौलियों के माध्यम से जाता था, उसको रोकने के लिए जब खाते खोले जा रहे थे तो विपक्ष ने बड़ा तांडव मचाया, कह रहे इनको क्या जरूरत है, क्या क्यों खोला जा रहा है। फिर उन्होंने खातों के साथ साथ सुरक्षा की बात की, बीमा भी करके दिया, 3 लाख से 5 लाख तक का बीमा भी करके दिया। तो ये जो जनधन योजना खुला, तो पहले लोगों ने सोचा नहीं था कि इसका क्या है, लेकिन देखिए धीरे धीरे कैसे करके चीजें आपके अनुकूल होती रही। आधार को कंपलसरी किया, मोबाइल नंबर को कंपलसरी किया, उसके बाद फिर उनका जो दूसरा सबसे बड़ा जो निर्णय था वो ही निर्णय जो था गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा
1: जी,
2: कि सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि आप जब गरीबी जो थी, क्योंकि उनके खातों में पैसे जाते थे वो उन तक पहुंच नहीं पाते थे, तो उसे उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की
1: जी।
2: तो उज्ज्वला योजना में खासतौर पर आप देखिए कि ग्रामीण अंचलों में, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, परिवेश को बहुत करीब से देखा हुआ है, तो महिलाएं जो हैं लकड़ी से खाना बनाया करती थीं, उनकी आंखों में बहुत तकलीफ होती थी, तो उनको उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस टंकी

0: प्रोवाइड की गई, चूल्हे प्रोवाइड किए गए और सस्ती दरों पे गैस टंकी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।
1: जी
0: इसके अलावा देखिए कि आयुष्मान योजना, जिसमें स्वास्थ्य, क्योंकि सुरक्षा की बात हो रही है, समाज की सुरक्षा कैसे हो, तो उन्होंने 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड दिया, जिससे सरलता से स्वास्थ्य की जो सेवाओं का लाभ मिल पाया। और आप देखिए आज ये स्थिति हो गई है कि बड़े बड़े अस्पताल जो है आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को लाभ देना चाह रहे हैं, आगे आ रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके स्वार्थ भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सरकार की जो योजना, सरकार की जो मंशा थी वो बहुत क्लियर थी।
1: जी
0: नोटबंदी के बाद आप देखिए कि जिस ढंग से डिजिटल प्रयोग हुआ, लोग कह रहे थे कि भाई डिजिटल कैसे होगा, भारत में तो नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन जिस ढंग से 4G और 5G आए, एक समय आपको ध्यान होगा कि स्पेक्ट्रम का लगातार घोटाला होता, 2G 3G घोटाला हुआ, बड़े बड़े मंत्री जेल चले गए, लेकिन ऐसे दौर में 4G और 5G का उपयोग हुआ और आज हमें बड़ा गर्व होता है कि हम विश्व के सबसे बड़े देश के रूप में जाने जाते हैं जो डिजिटल पेमेंट के रूप में सबसे आगे है। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है। अब इसके बाद भी करें तो जब हम युवा अवस्था में थे, जब आपसे चर्चा भी हो रही थी, तो हम लोग जब कदम रख रहे थे 18-19 साल के थे, तब एक संकल्प लोगों के मन में था कि राम मंदिर का निर्माण हो। तो राम मंदिर का निर्माण भी करोड़ों लोगों की आस्था की बात थी, लाखों करोड़ों लोगों के मन में भाव था कि हमारे जीवित रहते हुए हमारे ग्रैंडफादर फादर ये चाहते थे कि कम से कम मंदिर तो बन जाए।
1: जी
0: तो उनकी एक आस्था को पूरा करने में भी मोदी जी का महत्वपूर्ण रोल रहा। कानून व्यवस्था के तहत सारी चीजों को उन्होंने अमलीजामा बनाया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पे भी देखिए कि जिस ढंग से उन्होंने कार्य किया, जो आपने कहा ना कि ऐसे निर्णय, ये आत्मघाती निर्णय, यदि आप देखिए नोटबंदी की बात करते हैं तो गिरीश जी जानते हैं कि जिन जिन देशों ने नोटबंदी की वहां सरकार हिल गई, लेकिन 2019 में भाजपा भारी बहुमत से अकेले के दम पे सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस बात को दे सकते हैं कि नोटबंदी करने के बाद भी वो लोगों ने स्वीकार किया उनको।
1: जी
0: ऐसी ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे वो अनुच्छेद 370 की बात हो, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और नारी शक्तियों की बात आप देखिए कि नारी शक्तियों के लिए किस ढंग से उन्होंने किया। अभी आपने देखा कि लोकसभा में स्पेशल विधेयक लाया गया, आरक्षण की बात की गई, ये बात अलग है, ये दुर्भाग्य था कि विपक्ष इसमें साथ नहीं दिया और वो विधेयक गिरा, लेकिन मेरे को लगता है कि देर सवेर सब चीजें होंगी। कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, एक व्यक्ति एक नागरिकता जो होना चाहिए, एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए, वो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो तमाम चुनौतियां थी, यानी आप जब युवावस्था में देखते रहेंगे कि चीजें ऐसा लगता था कि कभी पूरी हो नहीं सकती, ये तो स्वप्न था, लेकिन वो स्वप्न जो है धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। हमारा देश विदेश के सामने एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज यही वजह है कि आज जो विदेशी जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को अपना मित्र बताने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ट्रंप जैसा व्यक्ति वो तक कहता है कि मोदी इज माय फ्रेंड। तो आज हमारी भूमिका केवल दोस्ती निभाने की नहीं है, आज हम संधि करने की स्थिति में भी हैं। जब ईरान और अमेरिका की बात आ रही है तो उस जगह पे भी हम वहां पे कहीं ना कहीं हमारी भूमिका होती है। तो आज हम हमारी जो शक्ति है लगातार बढ़ रही है, तो मोदी जी की ये ताकत है, मोदी जी की उपलब्धि है। तो निश्चित रूप से जो सेवा संकल्प जो मनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, चाहे हम डिजिटलाइजेशन की बात करें या फिर जो चुनौतियां रहीं या कुछ कड़े फैसले हुए, कहीं ना कहीं जब कोई बीमारी होती है उसके हमें अच्छे परिणाम चाहिए होते हैं, उसका सही इलाज होता है, तो दवा का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो चुनौतीपूर्ण फैसले थे, चाहे नोटबंदी की बात हो या फिर GST जैसे फैसले हों, वो सब कहीं ना कहीं उस सकारात्मक बदलाव के लिए पीने वाली कड़वी दवाई थी जिसका हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया। गिरीश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जब हम एक अच्छे सकारात्मक नेतृत्व की बात करते हैं तो उस नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण माना जाता है उसका संचार कौशल, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संचार कौशल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद एक दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जिनके संवाद को लोग समझते हैं और अनुपालन भी करते हैं, चाहे रेडियो पर मन की बात हो या आम सभाएं, उन्होंने संवाद का एक नया मॉडल पेश किया। जनसंवाद की उनकी इस खास शैली को आप किस तरह से विश्लेषित करना चाहेंगे?
2: देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को अगर समझना है तो उनकी संवाद क्षमता को अलग करके देख ही नहीं सकते
1: जी,
2: वो उसका एक अभिन्न हिस्सा है। और मन की बात जो रेडियो पे आता है वो इसका सबसे सशक्त उदाहरण है
1: जी।
2: अब उन्होंने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही क्षमता से उन्होंने रेडियो जैसे एक पुराने माध्यम को चुना
1: जी,
2: और उसके विषयों को, उसके प्रसार की क्षमता को डिजिटल युग से जोड़ते हुए उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने का काम किया
1: जी।
2: और न सिर्फ उन्होंने इसमें लोगों से संवाद किया बल्कि सरकार की नीतियों के को भी लेकर भी बात की, उनको जागरूक करने का, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण, खेल, परीक्षा, स्थानीय उत्पाद, संस्कृति, मतलब छोटे छोटे प्रयासों को उन्होंने उस माध्यम से उठाया है।

0: दूसरे उनके संवाद की जो विशेषता है वो है कि जटिल से जटिल सरकारी विचार को छोटे और याद रख सकने वाले ऐसे सूत्रों में बदलना। वो सूत्रों में बात करते हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वोकल फॉर लोकल
1: जी,
0: एक पेड़ माँ के नाम, ये सूत्र हैं। ये सूत्र लोगों को सहजता से याद रह जाते हैं, तो वो सूत्र देकर लोगों को एक तरीके से अभियान में संलग्न करने की क्षमता रखते हैं। छोटी बात होती है लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। और तीसरा पक्ष उनका है जो उनके संवाद और संचार का, वो है कि नागरिकों को किसी भी जन कल्याण के अभियान में सहभागी बनाने की कोशिश। अब स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू उठाना हो, खादी खरीदने की अपील हो, स्थानीय उत्पाद अपनाने की बात हो, या परीक्षा पे चर्चा, संदेश उनका यह रहता है कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती
1: जी,
0: लोगों को भी भागीदार बनना पड़ेगा, नागरिकों को भी आगे आना पड़ेगा। और जब लोग आगे आते हैं तो हमने देखा है उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ही आप इंदौर का उदाहरण पूरे देश और दुनिया के सामने है
1: जी।
0: ये केवल सरकार का काम नहीं था, इंदौर के लोगों ने तय किया और इंदौर को स्वच्छता में सर्वोच्च बना दिया। तो ये जो चीजें हैं एक माहौल बनाने वाली बात है। तो मैं कहूंगा कि मोदी जी की जो संवाद शैली है उसमें संवाद और जनसंचार, उसके परंपरागत और आधुनिक दोनों माध्यमों का एक बहुत कुशलतापूर्वक समावेश करके वो चलते हैं।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर देश के सामने आने वाली चुनौतियों की अगर हम बात करें, उस दौर में भी प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई अपील की तो देश के प्रत्येक नागरिक ने उसको माना है, चाहे वो अभी आज के युद्ध के दौर में सोना ना खरीदने की अपील, कम खर्च करने की अपील, या किसी भी तरीके की हम इस तरीके की चुनौतियों से पार पाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान किए गए, उन सबको हमारे देश के नागरिकों ने उसी रूप में माना। कृष्ण मोहन जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आज के दौर में राजनीति और जनता के बीच की दूरी बढ़ रही है, ऐसे माहौल में सेवा संकल्प अभियान आम लोगों के लिए क्या संदेश देता है?
2: देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता
1: जी
2: कि जो मोदी जी का कार्यकाल मैं देखता हूँ 2014 से लेकर के आज तक
1: जी,
2: तो जनता और नेताओं के बीच दूरी नहीं, उन्हें तो बाध्य कर दिया है। यदि आपकी दूरी बढ़ रही है इसका मतलब आप राजनीति से दूर होते जा रहे हैं
1: जी।
2: ऐसे लोगों को राजनीति से वो अलग करने की तैयारी में लगे हुए हैं, आप सोशल मीडिया उनका देख लीजिए। तो आप चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे कोविड में ताली थाली की बात हो, चाहे जैसे कि अभी आपने कहा कि सोना खरीदने की बात हो, युद्ध के दौर में जो सबको एक साथ लेने की बात हो, तो देश में जनता सीधे सरकार के साथ है और उन्होंने ऐसा कर दिया है। मोदी जी का जो नेतृत्व है उन्होंने ऐसा समझा दिया है लोगों को, खासतौर पर राजनेताओं को, कि यदि आपने जनता से दूरी की इसका मतलब आप दूर हो गए। आज आपका जो टिकट का जो आधार है वो आपके कार्यों से नहीं है, आपकी कितनी निकटता है, आपके कितने फॉलोअर हैं, आप कितना कार्य कर रहे हैं, आज 5 साल का लेखा जोखा उनका पूरा देखा जा रहा है, उसके बाद उनकी स्थितियों क्लियर किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो अभी जो उन्होंने सेवा संकल्प अभियान की बात जो नितिन नवीन ने की है, जिस ढंग से आशीर्वाद का दिया, जो लाभार्थी परिवार हैं उनके घर में जो है दीप प्रज्वलित की जाए, ये बात बहुत जरूरी है कि आप काम तो करते जा रहे हैं लेकिन उस कार्य का असर क्या हुआ है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने लोग स्वप्रेरित होकर के आपके साथ आ रहे हैं, आपकी चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये ऐसी चीजों के समीक्षा का भी दौर है और उस दिशा में मेरे को लगता है कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान, कि जन भागीदारी से सेवा गतिविधियां कैसी बढ़े। इसके अलावा आप देखिए कि सेवा की कहानी, किस ढंग से सेवा की कहानियां की गई
1: जी,
2: किस ढंग से सेवा की गई, किस ढंग से समर्पण से कार्य किया गया, ये सब चीजें जो है इसमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्वच्छता एवं जन सेवा गतिविधियां, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, युवा सहभागिता, चित्रकला रचनात्मक प्रतियोगिताएं, सेवा यात्राएं, तो ये जो सब चीजें हैं कहीं ना कहीं जनता से सीधे भागीदारी की बात।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर अभियान किसी भी प्रकार की दलगत सोच से हमेशा ऊपर होता है, सिर्फ पार्टी विशेष को नहीं बल्कि पूरे देश को एक इकाई मानकर ही वो चीजें चलाई जाती हैं और जनता भी कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से हटकर ही उस अभियान को आत्मसात करती है। गिरीश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आज का युवा, आज के दौर में युवाओं को हम दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि युवा ही आने वाले देश का भविष्य है। अपने नेतृत्व से बहुत कुछ सीखते हैं ये युवा और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं, तो 25 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा से देश के युवाओं के लिए क्या मुख्य सीख निकलती है?
0: देखिए अभिषेक जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं, उनकी सीख की बात करते हैं कि वो क्या सीखते हैं अपने नेतृत्व से, तो हमको सबसे पहले तो इस बात को किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध से अलग होकर देखना पड़ेगा
1: जी।
0: जो वस्तुनिष्ठ होकर ऑब्जेक्टिव होकर बात करनी पड़ेगी, और अगर उस दृष्टि से देखें तो नरेंद्र मोदी के स्वयं के और इस सरकार के काम से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे युवा आगे अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, उसको कर सकते। पहली सीख है कि उसकी निरंतरता, किसी भी काम की कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी
1: जी,
0: उसका टिकाऊपन। तो बड़े परिणाम कभी बहुत जल्दी नहीं आते
1: जी,
0: एकदम से। 2001 में उन्होंने गुजरात से अपनी यात्रा शुरू की थी और ये इसी शासन यात्रा का विस्तार जो है वो बाद के वर्षों में दिखाई देता है। दूसरा है छोटी भी समस्या को छोटा न समझना
1: जी।
0: जैसे अभी बात कर रहे थे अभी कृष्ण मोहन जी भी, कहां से शुरू किया, शौचालय चाहिए, स्वच्छता चाहिए, लाल किले से अगर ये बात हो रही है तो अपने आप में उसके महत्व को समझा जाना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री इतनी बात कैसे कर रहे हैं। उन्होंने शौचालय, बैंक खाता, गैस, पानी, मिट्टी की जांच, बेटी का स्कूल जाना, ये सुनने में बहुत सामान्य विषय लग सकते हैं लेकिन ये आम जनता के लिए
1: जी,
0: देश को देश बनाने के लिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जब ये समस्याएं करोड़ों लोगों की है तो फिर एक तरीके से वो सामान्य राष्ट्रीय प्रश्न बन जाती है, तो ये सीख लेने की जरूरत है। तीसरा है कि तकनीक को अपनाना। ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तकनीक को हम जितना ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे, और तकनीक को अपनाने का मतलब है कि वो जन सुविधा के लिए अपनाना। हमने पहले भी बात की कि गुजरात में उन्होंने जब लोगों की शिकायतें सुनने के लिए स्वागत जैसा कार्यक्रम चलाया, राष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्ट बेनिफिट योजना चलाई, तो ये तकनीक अंततः नागरिकों की सुविधा के लिए हो, इस बात को करना। चौथा है संवाद कौशल, जिसकी अभी हमने इससे पहले भी बात की
1: जी।
0: आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना। और लक्ष्य बड़ा रखना, आप अपना लक्ष्य बड़ा रखेंगे आप बड़े परिणाम पा सकेंगे। आज हम जैसे हम कह रहे हैं कि आज इतना सब कुछ होने के बाद भी 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही, तो ये बड़े लक्ष्य हैं। और ये है कि आप उनका, अगर हम सूत्र में कहना चाहें तो उनका जो संदेश है वो है कि बड़ा सोचें, छोटे काम से शुरुआत करिए लेकिन स्थिरता के साथ करिए और परिणाम आने तक अपने आप को निरंतर बनाए रखिए।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वैसा ही हर क्षेत्र की हम बात कर सकते हैं। अगला सवाल कृष्ण मोहन जी मेरा आपसे है, 25 वर्षों की यात्रा केवल अतीत के आकलन तक सीमित नहीं है बल्कि इस पृष्ठभूमि के साथ सेवा संकल्प अभियान भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में किस प्रकार मील का एक नया पत्थर साबित हो सकता है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं सर।
2: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न विषय आपने किया है कि 2047 का लक्ष्य, आप सोच सकते हैं कि आज हम 2026 में बैठे हुए हैं और 47 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं
1: जी।
2: तो निश्चित रूप से जब लक्ष्य हमारे सामने कुछ चीज को होता है तो हम उसको अचीव कर पाते हैं। आज हमारे जो कार्य हैं, जो न्यू हमारी है, वो हमको वहाँ सफलता की ओर ले जाएगी। तो ये जो 10 संकल्प इन्होंने जो लिया हुआ है, समृद्ध और मजबूत अर्थव्यवस्था, गरीबी का उन्मूलन, ये माने कि भारत जो आज तक गरीब राष्ट्र कहलाता था वो खत्म हो जाएगा, युवा शक्ति को विकास की ताकत बनाना, क्योंकि आप देखिए कि जो युवाओं में, क्योंकि हमारी युवा जिस ढंग से आज अभी ताकत दिखा रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से उस शक्ति का अच्छे से उपयोग हो पाना, क्योंकि हमारा युवा तो पलायन कर जाता था, विदेशों में चला जाता था, उसको यहाँ रोके रखने के लिए मेक इन इंडिया जैसे अभियान चलाए गए। और मेरे को लगता है कि आने वाले 2047 तक इसको और मजबूत करने का प्रयास है। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किस ढंग से कृषि को, जो हम कहते थे कि बहुत ज्यादा लाभकारी धंधा नहीं था, उसको लाभकारी बनाया जाए, किस ढंग से जो ग्रामीण की अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि आज डिजिटल माध्यम से आप देख रहे हैं कि हम चाहे गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो हमारी जो दूरियां थी शहर की और गांव की वो सब मिट गई है। अब आप गांव में भी रह करके वही कार्य कर सकते हैं जो शहर में कार्य कर सकते हैं। महिला शक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये पूरा अभियान है, क्योंकि आपने देखा कि संसद में स्पेशल विधेयक आया, इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। और लगातार महिलाओं की भागीदारी राजनीति में और बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक क्षेत्र में हर क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और 2047 में पूर्ण रूप से महिला का जो आर्थिक सशक्तिकरण है उसका प्रयास होगा। विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, जो भारत की सबसे जो आज तक की स्थिति थी 2014 के पहले, हम देखते थे कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य में हमारे पास उपकरणों का अभाव था, हर जो छोटी जगहों से हमको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता था। टेक्नोलॉजी और AI में नेतृत्व, भारत लगातार, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हम विश्व के सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े देश के रूप में हम उभर के आए हैं। तो निश्चित रूप से AI टेक्नोलॉजी को किस ढंग से विकसित किया जाए, 2047 तक हम हर क्षेत्रों में AI के माध्यम से आगे बढ़ पाए। आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत, किस ढंग से हम जो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर और अन्य राजनीतिक क्षेत्र हो, उनमें हम जो है उत्पादन खुद कर पाएं, हमें विदेशी जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाए, ये महत्वपूर्ण चीजें। पर्यावरण के साथ विकास, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के भी सरकार बहुत चिंतित है, उसका प्रयास है कि विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलना, नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी और ऊर्जा दक्षता इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 2026 के अध्ययन में विकसित भारत के लक्ष्य को 2070 के नेट जीरो के लक्ष्य के साथ जोड़कर देखा गया है। सुरक्षित और वैश्विक नेतृत्व वाला भारत, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम सुरक्षित भी हों और विश्व का नेतृत्व भी कर पाए। मोदी जी ने बात बताई, आज विभिन्न समय पे आपने देखा कि जिस ढंग से पहले तो पड़ोसी देश जो है हमको आंखें दिखा दिया करते थे, आज वो स्थिति में नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे अन्य जो देश है, वो कहीं ना कहीं आज हमसे

0: दबे हुए हैं, आज हमारे कंट्रोल में है। तो आर्थिक शक्ति के साथ मजबूत रक्षा क्षमता, रणनीतिक स्वायत्तता, सुरक्षित सीमाएं और वैश्विक संस्थाओं में प्रभावी भूमिका, ये हमारा प्रयास है। ऐसे 10 जो हैं 2047 का रोड मैप मोदी जी ने तैयार किया हुआ है और मुझे लगता है कि 2026 में इसकी नींव रखी जा रही है और 2047 आते आते हम इसको पूर्ण कर लेंगे।
1: जी बिल्कुल ठीक, आपने जैसे अभी चर्चा की, भारत की वैश्विक साख में भी एक बड़ा बदलाव देखा गया है। अगला सवाल गिरीश जी से मेरा इसी विषय पर है। बीते वर्षों में जो भारत की वैश्विक साख है वो काफी बड़े बदलाव से गुजरी है। दुनिया के मंचों पर भारत की मजबूत स्थिति बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की क्या कुछ भूमिका रही, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए अभिषेक जी, इस पूरे कार्यकाल को हम देखें तो भारत की वैश्विक उपस्थिति हमको और अधिक मुखर और सक्रिय दिखाई दे रही है
1: जी,
2: और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत की विदेश नीति और भारत की विश्व स्तर पर उपस्थिति अपनी रीढ़ को सीधी रखते हुए है, रीढ़ को झुकाते हुए नहीं है
1: जी।
2: तो भारत ने अपने स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं किया है और विश्व में उसको मान्यता मिल रही है, दोनों स्तरों पर हुआ है। प्रधानमंत्री एक नेता के तौर पर और नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के तौर पर उन्होंने विश्व के कई नेताओं से संबंध बनाए, कई देशों से संबंध बनाए और G20 की अध्यक्षता करते हुए अफ्रीकी देशों के संघ को उसमें शामिल करना, फिर क्वाड हो चाहे SCO हो, अभी अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो नई दिल्ली में ब्रिक्स का सम्मेलन का समाप्ति हुई, विश्व के बड़े नेता भारत आए और भारत की आवाज को उसमें महत्व दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये दोनों तरह से निर्भर करता है, देश जब आगे बढ़ता है, देश जब मजबूत होता है, उसकी क्षमता होती है वो, और विश्व के नेता उसको जानते हैं कि जिसको देश का समर्थन प्राप्त है। तो इन दोनों स्तरों पर भारत की विदेश नीति को महत्व मिला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उसको मान्यता भी मिली।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, सेवा, सुशासन और संकल्प अपने आप में यही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की सफलता के परिचायक हैं। आज की इस सार्थक चर्चा से स्पष्ट है कि 25 वर्षों का यह सार्वजनिक जीवन केवल सत्ता का सफर नहीं बल्कि सेवा ही संगठन और भागीदारी की एक नई राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक है। इससे साफ है कि सेवा संकल्प अभियान आमजन के मन में कर्तव्य बोध जगाने का एक सशक्त जरिया है। 2047 के विकसित भारत का सपना हो या आज के युवाओं के लिए निष्ठा और निरंतरता का संदेश, यह यात्रा कई दृष्टिकोण से प्रेरणादायी है। आज की इस बेहद ज्ञानवर्धक परिचर्चा में शामिल होने के लिए दोनों ही अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस खास चर्चा में हमारे साथ बने रहे।
3: आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजों में, मखदूम मोइदुन ने इस गीत को लिखा, संगीत खयाम का, फिल्म है बाजार।

स्वयंवर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत पाकीज़ा फिल्म से लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। कमाल अमरोही की शब्द रचना, संगीत गुलाम मोहम्मद का।

आन मिलो सजना। यह कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हम सुनवा रहे हैं आपको, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आज सुनिए 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नेतृत्व जब विचारों से आगे बढ़कर संकल्प बनता है तो नीतियाँ केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बना देती हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। शिकायतों का सीधा समाधान देने वाला स्वागत पोर्टल हो, गांव गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाती ज्योतिग्राम योजना या फिर प्यासी जमीन तक जल लाती सोनी परियोजना, कन्या केलावणी से बेटियों का सशक्तिकरण, कृषि महोत्सव से किसानों की प्रगति और गरीब कल्याण मेले से अंतिम व्यक्ति का अधिकार, विकास की इसी सोच ने वाइब्रेंट गुजरात और गिफ्ट सिटी के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। गुजरात के इन्हीं जमीनी प्रयोगों और अनुभवों को आधार बनाकर आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जनसेवा से देश सेवा के इस 25 वर्षों के निरंतर सफर को जानने के लिए पेश है आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारिता एवं नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद जी।
2: केतन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। 2001 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, उस समय राज्य भूकंप, सूखे और प्रशासनिक चुनौतियों से गुजर रहा था। एक पत्रकार के तौर पर उस समय गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
3: एक पत्रकार के तौर पर मैंने 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का, उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को, तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 2009 में कच्छ में जो

0: बार्सिलोना या उस सभी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का, एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं आपणो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी, जिस नारे से गुजरात की एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ, गुजरात को ध्यान में रखते हुए उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ, कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेके बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही। और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद, 2000 स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है। और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001, 2002 और 2003, ये 2-3 सालों में रखा गया था। उसकी नींव है वो इन सालों में रखी गई थी।
1: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते
2: जी
1: हैं, जब देश में लोग
2: जी
1: कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे, तब गुजरात में
2: जी
1: स्वागत पोर्टल आया। सीधे
2: जी
1: मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े
2: जी
1: बताते हैं कि 6,07,299 मामले तुरंत निपटारा कर दिए गए थे। आपसे समझना चाहेंगे कि उस दौर के प्रशासनिक रवैये के बीच स्वागत जैसी योजना किस तरह का सरप्राइज था, और इसने ग्राउंड पर अफसरशाही का जो रवैया है कितना बदला और कैसे बदला।
2: जैसा कि केतन जी ने बताया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जब शासन की बागडोर संभाली, उस समय जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कच्छ की जनता और गुजरात की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय प्रशासन से उनकी उम्मीद थी कि जनता की जो शिकायतें हैं उनका निवारण तत्कालीन किया जाए, जवाबदारी के साथ किया जाए, और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी, और जो शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे, और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो हर स्तर पे, गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, ये स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे अब सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसा आपने कहा कि अभी तक 99% जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है, और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी, और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है, और प्रशासनिक ढांचे में भी कहां कमी है जिसके कारण जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन बिंदुओं को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे

0: राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको मान्यता मिली है। तो
1: जी
0: ये एक गुजरात के तरफ से पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका नेतृत्व, इसकी शुरुआत, इसका संचालन और इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
1: केतन जी, इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटें। आपको याद होगा 2000 के शुरुआती सालों में गांव में बिजली का मतलब होता था आ गई तो गनीमत, चली गई तो आदत। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए और 18,000 से ज्यादा गांव में 24 घंटे बिजली रहने लगी। एक पत्रकार के नाते जब आप उस समय गांव में जाते थे तो इस एक रोशनी की किरण ने वहां के छोटे कारोबारियों और लोगों की जिंदगी को रातों रात कैसे बदल दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योति ग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
2: पहले मैं ये जो अस्थाना जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे उसके कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गांव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है उनको कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांव में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में 4-4, 6-6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर 2 सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया, जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल रखा गया।
1: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
3: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित

0: 25वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
1: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो। कैसे देखते हैं, चूंकि आज का जमाना अलग है, आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
2: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक घोतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है। लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है, और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं, और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है, जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोड़ दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब यह क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है, उसको संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था,
1: जी
2: तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा। और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं, तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार। अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
3: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में, जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है, तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया, तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था। लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की, वो काफी हद तक बढ़ी है। और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं। 2-3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, बिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लांड एक फिनटेक सिटी है, वो फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए उनके लिए काफी कुछ। एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। जो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
4: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं, ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केटप्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहां की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
2: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मौरवी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की त्रासदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो उस समय बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति के अगर आप एक अवलोकन करें तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी के जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी, पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक, इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003, गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहर ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने, जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
3: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना में क्या हुआ, क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे। तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे, ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वनी के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरिकल कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी, लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए, लेकिन ये उपक्रम था उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या केलवनी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलवनी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ किया, जो आज पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखाग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखाग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
2: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था, इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289-094-044।
6: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
7: श्रोताओं, 90 साल हो गए, गीत, गजल, कहानियां और ढेर सारी यादें।

हर जनरेशन की धड़कन, हर दिल की पहचान, आकाशवाणी आज भी उतना ही ताजा जितना पहले दिन था। आकाशवाणी 90

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhumi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said, the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event this afternoon, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said, investment commitments worth around 1 lakh crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. He said, India will target at least 200 startups and companies engaged in chip design under the next phase of its semiconductor mission, Semicon 2.0. The 3-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment, and develop future-ready talent. India today said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said, country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics. The statement came amid the passage of a bill by the US House of Representatives that will allow President Donald Trump to impose tariffs